107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

हर सुबह होती है एक नई शुरुआत, जब हर किरण एक नई आशा लेकर आती है, और जब सुबह का ये शुभ क्षण ईश्वर स्मरण से आरंभ हो तो जीवन की हर दिशा में शांति, शक्ति और सकारात्मकता अपने आप उतर आती है। तो आइए ऐसे में हम अर्पित करें अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में भावों के वो पुष्प जो हम लेकर आए हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और इसमें आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुस्मित, 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम सुपूजित भगवान श्री गणेश की इस वंदना के साथ।

सकती है। ऐसे में श्रद्धा से भरा मन पुकारता है भगवान भोलेनाथ को, जिनके नाम मात्र से ही बंधन टूटते हैं, भय मिटता है और जीवन में आशा की रोशनी भर जाती है। तो आइए उन्हें जगाते हैं अपने प्रेम से, अपने स्वर से, और अर्पित करते हैं ये भावपूर्ण आराधना।

जब मन कहता है मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी दिखावे, किसी प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं बस सच्चे भाव अपने भक्तों से। तो आइए सच्चे मन से पुकारें ऐसे प्रभु को।

ईश्वर की महिमा जितनी अपरंपार है उतनी ही सरल है उनसे जुड़ने की राह। जिसने एक बार मन से पुकारा, प्रभु ने उसकी झोली भर दी। तो आइए हम भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें इस भजन के साथ।

मन को आत्मिक सुख देने वाले प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में आज मैं सुस्मित हूं आपके साथ। आइए जुड़ते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति से।

जब जीवन के रास्ते उलझ जाएं, जब मन असमंजस में घिर जाए और जब कोई राह न सूझे, तो ईश्वर का नाम ही सहारा बनता है। भवसागर से पार लगाने वाले, मन की पीड़ा को हर लेने वाले प्रभु नाम की महिमा ही कुछ ऐसी है जो हर बिगड़ी को संवारने की ताकत रखती है।

हम सब के जीवन में कई बार पहाड़ों जैसी विपत्तियां आती हैं और मन ऐसे में घबरा उठता है कि हम इससे कैसे पार पाएंगे, क्या होगा हमारा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब ईश्वर साथ हो तो हर शिखर एक साधना बन जाता है, हमें एक संबल मिलता है प्रभु का, प्रभु की शक्ति का, और हर अंधकार प्रकाश से भर उठता है, हमारे लिए राहें आसान हो जाती हैं। उन पहाड़ जैसी विपत्तियों से पार पाना हमें आसान लगने लगता है और हम सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए।

भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण का हृदय से किया गया अनुभव है। ये केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो आंतरिक अवस्था है जो हमें निरंतर सकारात्मकता और शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिक साधना और भक्ति का मूल उद्देश्य हमारे मन से स्वार्थ, अहंकार और कपट को मिटाकर प्रभु की कृपा और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। और इसी कामना के साथ हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का

दोस्तों आप सुन रहे थे भक्ति भाव में डूबी पुष्पांजलि, जहां इस भक्ति भरे संग में हमने अपने मन को शांत किया, आत्मा को छू लिया और उस परम शक्ति को याद किया जिसने हमें जीवन का सबसे सुंदर उपहार दिया। तो प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से। अब से थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आ रहा है ये अंतिम प्रस्तुति के रूप में भजन।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रामनगरी अयोध्या आज एक साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों की साक्षी बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रमों में श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, महंत नृत्य गोपाल दास जी का जन्मोत्सव समारोह, रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण तथा नगर निगम अयोध्या के विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद उन्नाव में विधानसभा सदर उन्नाव तथा भगवंत नगर की 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के बदले हुए परिवेश में रह रहे हैं। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। जब दुनिया पश्चिम एशिया संकट तथा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा के भीषण संकट ने सभी देशों को परेशान किया था, तब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता को इस संकट से उबारने का काम किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर नगर में हुई एक बैठक में लोक निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा फर्रुखाबाद जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर कार्य योजना शीघ्र शासन को प्रेषित की जाए। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे। रेलवे की ओर से यात्रियों को सुविधा के लिए छपरा आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस व मऊ आनंद विहार टर्मिनस उद्घाटन विशेष साप्ताहिक ट्रेन का संचालन 19 जून को यानी आज किया जाएगा। इसका ठहराव जौनपुर व शाहगंज होने से यहां के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये जानकारी गोरखपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन अखबारों की सुर्खियों के साथ 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7

जब दिल की धड़कनों में किसी की आहट बस जाए, जब लम्हे उसकी मुस्कान से संवरने लगे और जब उसकी मौजूदगी ही सुकून बन जाए, तो जिंदगी का हर पल एक गीत बन जाता है। तो दोस्तों, सुर में ढले कुछ ऐसे ही गीत लेकर मैं सुस्मित आ चुका हूं प्रोग्राम सदाबहार गीत के साथ। आइए एक प्यारे से गीत के साथ डूब जाइए मोहब्बत और खुशी के इस सुरीले एहसास में।

कभी कभी इश्क हदें नहीं पहचानता, वो ना फासले देखता है न मंजिल, बस दिल की धड़कनों के पीछे चल पड़ता है, बेकाबू बेपरवाह

दिल एक छोटा सा लफ्ज, मगर जब किसी को दे दिया जाए तो जिंदगी में संगीत, मुस्कान और मोहब्बत सब कुछ घुल जाता है। वाकई में किसी का हो जाना या किसी के प्यार में डूब जाने में जो मजा है वो कहीं और कहां।

जब प्यार में हो थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी तकरार और ढेर सारी शरारत, तो हर बात बन जाती है एक मीठा ताना, और हर ताना बन जाता है एक प्यारा तराना। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए इस गीत को।

लाखों चेहरे, हजारों मुस्कानें, मगर जो एक बार इन्हें देख ले बस देखता ही रह जाए। क्या अदा है, क्या नजाकत और क्या जलवा। ऐसा लगता है जैसे ख्वाबों की शहजादी जमीन पर उतर आई हो।

कभी कोई अदा यूं दिल को छू जाती है कि जुबां तो क्या सांसें भी थम जाती हैं। ऐसे में हर नजर ठहर जाती है, हर दिल मुस्कुरा उठता है और ये दिल दीवानगी पर उतर आता है।

जब मोहब्बत सच्ची होती है तो वक्त क्या, जमाना भी उसे झुका नहीं सकता। चाहे राहें हों मुश्किलों से भरी, चाहे जमाना करे लाखों सितम, ये प्यार कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जब दिल ने किसी को अपना मान लिया हो तो साथ निभाना बस फर्ज नहीं, इबादत बन जाता है।

तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तब से हर लम्हा एक जादू बन गया है। अब तन्हाई नहीं होती, हर साया बस तेरा ही एहसास बन गया है।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
7: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
7: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
6: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
8: मुझे बहुत खुशी

0: Paris. Men i sesat ve daure keliye swagat karke. France aur Bharat ki dosti amarai.
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं

82 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया

0: ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुँच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सी ताजा तरीन सुबह में। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और मेरे साथ है
4: सुस्मित।
3: गुड मॉर्निंग सुस्मित।
4: गुड मॉर्निंग रोली,
3: और गुड मॉर्निंग हमारे सभी सुनने वालों को, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ।
4: बिल्कुल सही कहा रोली, और इस बात के साथ ही साथ, इस चहक के साथ ही साथ रोली शामिल हो चुकी है। मैं तो आपके साथ सुबह से बना हुआ हूँ, और हम दोनों आपके साथ रहने वाले हैं पूरे 10 बजे तक। बहुत सारी बातें, बहुत सारा म्यूजिक, ये सब कुछ ले करके।
3: बिल्कुल, तो ये सब कुछ एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। जी हाँ, ऑफकोर्स आप अपने काम तो कर ही रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने रेडियो सेट भी बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम पे ट्यून किया हुआ है, तो बस आपको ये वाला पल बहुत ही ज़्यादा सूट करने वाला है, क्योंकि आज भी है कुछ खास दिन, क्योंकि हर दिन होता है हमारे लिए खास उसमें, और आज भी एक बड़ा ही खास सा दिन, तो हम उसे भी सेलिब्रेट करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और आज के प्रोग्राम का ये पहला ट्रैक आप सबके लिए,

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: मॉर्निंग मंत्र का इशारा 8:25। एक बात जो हमारे आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी, बहुत काम की हो सकती है, तो क्या है वो बात जान लेते हैं।
2: बिल्कुल, और वो बात ये है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना किसी पेड़ की जड़ों को सींचने जैसा है। जड़ें जितना मजबूत होंगी हमारी

0: चांद का आसमान उतना ही बड़ा होगा।
1: तो साहब आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आप भी अगर अपनी संस्कृति अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा आसमान आपके पास होगा, जो आप देखेंगे उसे पाएंगे, और निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ होगा तो आप एक खुशी के साथ रह सकेंगे।
0: तो अपनी ज़िंदगी के उस आसमान को आप पा लीजिए। हम यही दुआ करते हैं कि आप जहाँ जाना चाहते हैं और जिस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, हम विश करते हैं कि वो आपको ज़रूर मिले।
1: तो इस बात के साथ ही साथ एक ट्रैक आप तक पहुँच रहा है, एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: और अगर कभी कोई पूछ बैठे सुस्मित कौन हो तुम तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे जानते हैं और फिर भी पूछ रहे हैं कौन हो तुम।
1: बिल्कुल, बड़ा अटपटा सा सवाल लगेगा और बड़ी अजीब सी स्थिति होगी कि ये क्या हुआ।
0: वैसे कभी कभी ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत सालों से जानते हैं लेकिन उनके बड़े ही अनदेखे से रूप कभी कभी सामने आते हैं बहुत सालों बाद।
1: ऐसा भी होता है,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो होने को तो कुछ भी हो सकता है।
1: फिलहाल
0: अभी क्या होगा?
1: अभी क्या होगा जी? अभी होगा मुद्दा, जिससे जुड़ेंगे हमारे साथी और पहुंचाएंगे अपनी बात।
2: मुद्दा आज का
1: जी, तो इस इशारे के साथ ही साथ आइए जुड़ते हैं उस बात से, उस विषय से जिससे आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।
0: और भाई सुबह सुबह सुस्मित जब मैं आ रही थी तो चूंकि आज एक बड़ा ही स्पेशल सा डे है ना?
1: बिल्कुल।
0: और ये स्पेशल डे क्या है? विश्व एथनिक दिवस है।
1: एक बड़ा खास दिन है, बहुत कुछ बताता है हमें।
0: तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक अच्छी सी एथनिक ड्रेस पहनी जाए।
1: इसीलिए आपकी जो आज ये ड्रेस इतने बढ़िया लग रही है, बहुत अलग लग रही है।
0: बिल्कुल, सिल्क पर गोटा पट्टी और शीशे मोतियों का काम है।
1: क्या बात है, और ये बड़ा खूबसूरत आपका जो लुक है उसको बना रहा है।
0: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि आप सब भी आज अपनी वार्डरोब देख रहे होंगे कि भाई आज क्या पहने, आज कौन सा आउटफिट ऑफ द डे होने वाला है, क्योंकि ये इतना प्यारा सा दिन है आज का, अपने संस्कृति से अपनी जड़ों से जुड़ने का। हम कितने भी इस डिजिटल युग में आगे बढ़ जाएं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जड़ों में सिमटने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति की खूबसूरती को और ज्यादा अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं, क्यों उसमें?
1: बिल्कुल सही कहा रोले। तो इस बात के साथ ही साथ सीधे सीधे उस बात तक आ जाते हैं जो कुछ इन्हीं बातों को समेटे हुए आप तक पहुंचना चाहती है और आपसे आपकी बात जानना चाहती है।
0: बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं क्या आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती है, और आज की युवा पीढ़ी, जी हाँ आपके बारे में तो बात कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ सकती है हमें बताइए।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आपको करना होगा हमें ईमेल, नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपनी बातों के साथ, और फिर अगर आप जुड़ेंगे तो फिर क्या बात होगी।
0: तो जल्दी से आप हमें अपनी मेल्स भेजिए, आज कौन सा आउटफिट आप वेयर करने वाले हैं ये भी हमें बताइए हमारे मेल आईडी पर, हम कर रहे हैं इंतजार। और फिलहाल जुड़ते हैं इस ट्रैक से, इसे एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं 100.7 FM रेनबो पर। गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

0: और थोड़ी सी चाय खत्म हो गई है कप में, अब बस थोड़ी सी ही बाकी है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बात बता दी। वैसे थोड़ी सी कॉफी देख के मन और कर रहा है कि जो चाय कॉफी का सिलसिला ये थोड़ी देर और चलता रहे।
0: तो मैं कह ही रही थी कि ये जो कॉफी का कप है वो मुझे दे दीजिए, आज चाय आप पी ले, लेकिन नहीं, मैं तो, आपने तो मुझे चाय दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, आपने कॉफी इंजॉय कर ली
1: जी। अब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं।
0: और फिलहाल दिल है ना, इसे बनाना हमारा काम है और इसे बनाते रहना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर हमको जो करना होता है सही समय से करना होता है, तो उसे उस काम में अपने दिल को मना ही ले तो अच्छा है।
1: बिल्कुल सही कहा रोली, और इस दिल को समझा लीजिए कि आज साहब ऐसा होने वाला है, और ऐसे में ये दिल कैसे संभलेगा, कैसे समझेगा, ये समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो चलते हैं सिटी अपडेट्स की ओर और आपको बताते हैं हमारी पहली अपडेट क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती 2025 के 13 विषयों और सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है, और आपत्ति है तो 23 जून को 5 बजे तक बता सकते हैं।
1: यानी इसकी लास्ट डेट 23 जून है, आप 23 जून को 5 बजे तक, ये समय जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार धोखा हो जाता है, लोग सोचते हैं पूरा दिन है, रात के 12 बजे तक काम चलेगा, यानी 11:59 तक आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 23 जून शाम 5 बजे तक, अगर आपको कोई इन क्वेश्चंस में कोई अगर आपको आपत्ति लग रही है तो आप 23 जून को शाम के 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात करेंगे उन लोगों की जिनके लिए मैं दिल की बात कर रहा था कि साहब दिल को ताम लीजिए, थोड़ा अपने दिल को समझा लीजिए, क्योंकि आज कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूं क्लाइड रोड उपकेंद्र की, यहां पर आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये दिक्कत रहने वाली है, और इसके चलते सिकंदर नगर राणा प्रताप मार्ग प्रभावित रहेगा। इसके अलावा इंदिरानगर के HL उपकेंद्र में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बिजली ठप रहने वाली है, यानी ये मामला शुरू हो चुका है।
0: ये तो रही बिजली की बात, और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि भाई गोमती समता मूलक से गोमती बैराज का जो रास्ता था वो खुल गया है। 8 मई से वाहन सवारों के लिए समता मूलक और बैकुंठ धाम तिराहे से गोमती बैराज के बीच आवागमन प्रतिबंधित था, और अब गोमती बैराज के गेटों को मरम्मत की जा रही थी, इसके खुलने से अब लोगों को राहत मिलेगी।
1: ये बड़े दिन से इंतजार था। ये एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी रूट से आ जा रहे होते हैं और वो रोड अचानक से बंद कर दिया जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, और ये तो ऐसा रास्ता ही है। बहुत से लोग इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, इधर से उधर आते जाते हैं, और इसके चलते बड़ी दिक्कत थी। तो खैर अब ये दिक्कत दूर हुई है और लोगों को आसानी हुई है। आने जाने की बात चल रही है तो एक ट्रेन की बात करना चाहूंगा, कटिहार अमृतसर कटिहार वाया गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन, इसका जो संचालन है उसका जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 3 अतिरिक्त फेरों के लिए चलेगी। अब इसे

0: 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख यानी 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से और 17, 24 और 31 जुलाई को अमृतसर से चलाया जाएगा। तो ये आपके लिए एक राहत भरी खबर है।
1: और अगली खबर की ओर चले तो आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिले की पहली मेरिट सूची जारी की है और मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया 19 और 20 जून को होगी। चयनित अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन के द्वितीय तल स्थित कक्ष संख्या 245 में सुबह 10:30 से शाम 4 के बीच उपस्थित होकर काउंसलिंग में शामिल होना है।
0: और इसके अलावा एक और बात, और वो बात ये कि बीएफए बीकॉम समेत 8 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तो अगर आप इससे संबंधित हैं तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डाक विभाग की किसी बात से परेशान हैं और आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक शिविर का आयोजन, एक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए डेट रखी गई है 1 जुलाई और समय होगा सुबह 11 से। और इस शिविर में, इस अदालत में जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं और उसका समाधान भी पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं घूमना फिरना चाह रहे थे और अभी नहीं जा पाए हैं तो जुलाई में एक बढ़िया मौका है आपके पास। IRCTC ये मौका लेकर के आया है आपके लिए, दक्षिण दर्शन हवाई टूर पैकेज। 6 रात 7 दिन का ये पैकेज है। 13 से 19 जुलाई तक ये संचालित होगा और इसमें आप लखनऊ से मदुरई और तिरुवनंतपुरम से लखनऊ, ये इस रूट पर आप जाएंगे और यहाँ से वापस फ्लाइट से लखनऊ आएंगे। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो ये मौका बढ़िया है आपके हाथ।
1: ये लीजिए, उसमें आपके लिए ट्रिप भी प्लान करवा दिए और अगर आप इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। और वैसे जिंदगी में वैसे भी हंसते खेलते और घूमते रहना चाहिए, क्या कहते हैं?
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए ये ट्रैक एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं।

0: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू. आज है जिनका बर्थडे,
1: तो उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं. उनका ये दिन बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही खुशियों से भरा हो और उनकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं पूरी हो. तो साहब, इस बात के साथ ही साथ यहाँ पर हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपके बर्थडे की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी भी जिनकी एनिवर्सरी है. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: तो ये आज का जो प्यारा सा दिन है, अच्छा सा सुंदर सा दिन है, इसे ऐसे हमेशा सुंदर बना के रखिए और हमेशा ही इसी तरह से सुंदर बना रहे, क्यों?
1: बिल्कुल. तो चलिए, कुछ नाम भी हैं जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं, उनकी भी बात करेंगे और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं. और इसमें सबसे पहले नाम की बात करें तो यहाँ पर एक नाम सामने आता है और ये नाम है हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के रचयिता और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहलाने वाले पंडित माधव राव सप्रे जी की आज जयंती है. उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के लिए उपयुक्त अनेक प्रतिभाओं को परखकर उनका उन्नयन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई. इसके अलावा दूसरा नाम है भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का, उनका भी आज जन्मदिन है. उनको उनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन से काफी प्रसिद्धि मिली थी.
0: और इसके अलावा म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की जी का आज जन्मदिन है और आज 1991 में उन्हें लोकतंत्र के लिए उनके अहिंसक संघर्ष हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
1: और इसके अलावा बात करें तो भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी आज बर्थडे है. साथ ही साथ अपने खास अंदाज और खलनायकी से ऑडियंस के दिलों में डर और रेस्पेक्ट दोनों पैदा करने वाले बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता आशीष विद्यार्थी का आज बर्थडे है. 300 से ज्यादा फिल्में और 11 भाषाओं में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले आशीष न केवल एक शानदार कलाकार हैं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और फूड ब्लॉगर भी हैं.
0: बॉलीवुड में उनकी पहली रिलीज फिल्म ध्रुव काल के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. इसके अलावा 1942 लव स्टोरी, बाजी नाजायज, बिच्छू, हसीना मान जाएगी, कहो ना प्यार है और जोड़ी नंबर 1 जैसे फिल्मों में नजर आए और आपने देखा होगा बतौर विलन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस लगते थे ऑन स्क्रीन. आप सबको याद आ गया ना?
1: बिल्कुल सही. तो कल आए के सही तर एक और प्यारे से चेहरे की तरफ चलते हैं. जी हाँ, बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना, इससे डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की बात कर रहे हैं, उनका भी आज बर्थडे है. और उन्होंने अपनी शुरुआत की बॉलीवुड में क्यों हो गया ना से और इसके बाद मुंबई सागा और सिंगम जैसी फिल्मों में वो नजर आई. हालांकि बॉलीवुड में वो

0: कुछ खास पहचान नहीं बना पाई, लेकिन साउथ की फिल्मों में उन्हें काफी बढ़िया पहचान मिली।
1: तो काजल के नाम पर आपको उनका वो गाना तो याद आ गया होगा ना, कौन सा?
0: क्या बात है, तो चलिए
1: इंजॉय करते हैं ये ट्रैक और इसके बाद वापस आते हैं और सारी बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: और इस बदमाश दिल को जो मना ले वही है सिकंदर।
1: बिल्कुल सही है, और निश्चित रूप से अगर आप भी सिकंदर हैं तो क्या बात है, तो सिकंदर बने रहिए, हम तो यही कहते हैं।
0: और देखिए ये जो उड़ता उड़ता सा समय है ना, इसमें उन प्यारे से पलों को कैच करने का टाइम है, क्योंकि अभी फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ का जो फर्स्ट हाफ है वो वाइंड अप करने का टाइम आ गया है।
1: बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद हमारी फिर

0: बात होगी आपसे गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ में. तो यहां पर बस हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और एक गीत आप तक पहुंचाते हैं और मिलेंगे इसके बाद. फिलहाल चलते चलते आपको बता दें कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं. जी हां, आज का विषय हमारा क्या है ये बता देते हैं. आज हम बात कर रहे हैं क्या आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं और आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ सकती है. इस बारे में आप अपनी बात पहुंचाइए हम तक हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com के माध्यम से.
1: तो बस आपकी बातों का इंतजार और इसी के साथ लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद समाचार. समाचार के उस पार फिर से होंगे एक बार आपके साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ के मंच पर. स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, प्रातः के 9 बजे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। लखनऊ से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया, अमन का आगाज, अब अंतिम करार की प्रतीक्षा। समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने लिखा, जंग पर विराम, डील साइन। अमृत विचार इस पर लिखता है, शांति वार्ता समझौते पर हस्ताक्षर, ईरान खोलेगा हॉर्मुज, अमेरिका हटाएगा नौसेना। स्वतंत्र भारत ने इस पर लिखा,

0: एशिया संघर्ष खत्म समझौते पर हुए हस्ताक्षर। ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा मंदिर कर्मचारियों से पूछताछ के बीच विशेष जांच दल ने दान में मिले आभूषणों की चोरी की आशंका पर भी पड़ताल शुरू कर दी है। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर को लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने लिखा, एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा, दान में मिले आभूषण चोरी होने की आशंका। समाचार पत्र अमृत विचार ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा, एसआईटी मुझे बुलाए तो बता दूंगा कौन कौन है चढ़ावा चोर, दीनानाथ वर्मा। नवभारत टाइम्स ने खबर पर लिखा, सीसीटीवी फुटेज में नोट चुराते दिखा कर्मचारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर रोक को उचित करार दिया। इस खबर को समाचार पत्र अमृत विचार ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, नीट से पहले टेलीग्राम पर रोक का फैसला उचित। स्वतंत्र भारत में इस खबर पर लिखा, नीट री एग्जाम तय, समय पर ही व्यापक इंतजाम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इस खबर पर अमृत विचार लिखता है, पीएम किसान की 23वीं किश्त कल जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस पर अखबार ने लिखा, भारत बन रहा दुनिया का भरोसेमंद साझेदार, मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस पर अखबार ने शीर्षक दिया, सपराज में खरदूषण जैसे थे माफिया मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत ने इस खबर पर लिखा, प्राकृतिक खेती ही विकसित भारत की नींव। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इस खबर को स्वतंत्र भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिस पर अखबार ने लिखा, शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का नया अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव में कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलेगी। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा, लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड रेल चलेगी, योगी। एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम कर रहे दो और संदिग्ध आतंकियों को बुधवार को देर रात बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। इस खबर पर अखबार ने लिखा, बुलंदशहर से दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नक्शे और उन पर बने मकानों को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी उलझनों को शासन ने समाप्त कर दिया है। इस खबर पर अखबार ने शीर्षक दिया, जिला पंचायत के नक्शे वैध करने के शुल्क में 75% छूट। इसी के साथ ही यह बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: और ये नया सा दिन है जो प्यारी प्यारी सी सुबह है, सुबह की 9:05 हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग।
1: जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी साथियों को जिन्होंने अभी भी रेडियो से टॉन किया है, उन सभी का प्यार भरा इस्तकबाल। और यहाँ से शुरू होता है सेकंड हाफ। तो इस सेकंड हाफ में बता दें अपने साथियों को कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
0: भाई आज हम विश्व एथनिक दिवस पर बात कर रहे हैं, इससे ही जुड़ा हुआ हमने आज का टॉपिक लिया है।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि क्या आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं और आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ सकती है।
0: तो बस ये बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी ईमेल आईडी पर भेजनी है अपनी बात। और हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com।

0: नमस्कार 10 मिनट और कोई नाराजी नहीं, बिल्कुल हमारे आपके बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का बंधन है और इसी रिश्ते में बनते हुए आइए हम जुड़ते हैं आपसे और चलते हैं आपकी बातों की तरफ जो आपने बड़ी प्यार से हम तक पहुंचाई हैं। और रोली, इसमें सबसे पहला मेल जो दिख रहा है वो है महेंद्र देपन जी का, मेरे सामने है, सादर नमस्कार इन्होंने कहा है। आपको भी महेंद्र जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और आगे कहते हैं कि आज के मुद्दे पर मेरा मानना है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं बल्कि उसे सहेजना है। मैं खुद पिछले 10 वर्षों से निर्माण कार्य में आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता आज भी वही पारंपरिक जीवन मूल्य हैं जो मुझे मेरे पिता से विरासत में मिले हैं। चाहे बात मेरे खान पान की हो, जहां मैं पिज्जा बर्गर के बजाय केयर सांगरी और बाजरे की रोटी पसंद करता हूं, या फिर प्रकृति और पक्षियों के प्रति मेरी जिम्मेदारी, ये सब मेरी संस्कृति का ही हिस्सा है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि वे आधुनिक गैजेट्स और तकनीक का उपयोग अपनी संस्कृति को नई दुनिया तक पहुंचाने के लिए करें, न कि अपनी जड़ों को काटने के लिए। हम तकनीक को अपनी रफ्तार बना सकते हैं लेकिन संस्कृति को अपनी पहचान। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कला और

0: या फिर प्रकृति और पक्षियों के प्रति मेरी जिम्मेदारी, ये सब मेरी संस्कृति का ही हिस्सा है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि वे आधुनिक गैजेट्स और तकनीक का उपयोग अपनी संस्कृति को नई दुनिया तक पहुंचाने के लिए करें, न कि अपनी जड़ों को काटने के लिए। हम तकनीक को अपनी रफ्तार बना सकते हैं, लेकिन संस्कृति को अपनी पहचान। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कला और कार्य में अपनी मिट्टी की पहचान हमेशा जीवंत रखूं।
1: क्या बात है, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में महेंद्र जी आपने बहुत ही अच्छी बात कह डाली, जो कि हमारी संस्कृति को समेटने सहेजने की बात है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास राम मोहन गुप्ता जी का मैसेज आया है, लिखते हैं, आधुनिक होना कभी नहीं करता संस्कारों से दूर, सामंजस्य बनाकर रहने से खुशी मिलती भरपूर। सोच हमारी हो भले ही कितनी आधुनातन अलग, संस्कारों संग जुड़ाव रखता बनाए सदा ही सुखद। पारंपरिक रहन सहन संग चुनना आधुनिक शैली बनाए रखता है सदा ही हमें अपनों की हमजोली। पीढ़ियों के अंतर मध्य सोच का सम्मिलन सुखदाई, देता अपार सुख करके संयोजित सामंजस्य वरदाई। इसलिए कुछ भी करे रहे और जिए, चाहे जैसे भी भूले ना मर्यादाओं को, पोषित करे संस्कारों को भी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपने पंक्तियां लिखी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके मन के भाव हैं जो सामने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आज हम जिस आधुनिकता के दौर से गुजर रहे हैं उसको छोड़ भी नहीं सकते, और अपनी धार्मिक पारिवारिक सामाजिक परंपराओं और रीतियों के बगैर रह भी नहीं सकते। ये कहना है जगमोहन मिश्रा जी का। सुप्रभात कहते हुए उन्होंने अपनी बात कही है आगे। कहते हैं, मैं उन दिनों बिहार में था, पटना में एक शादी समारोह था जो हमारे सीनियर चौधरी साहब के यहाँ था। वैसे तो वो मिथिला के ब्राह्मण थे। जब मैं उनके बेटी के शादी समारोह में पहुंचा तो मैं उन्हें ढूंढने लगा, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ लोग परिचित थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ हैं चौधरी साहब। तभी मेरे कंधे पर किसी ने थपथपाया कि अरे मैं तो यहीं हूँ। मैं चौंक गया। जिन चौधरी साहब को रात दिन में सूट बूट टाई वाई में देखता था, वो आज पारंपरिक परिधान, सिर पर बढ़िया कढ़ी हुई टोपी, बड़ा सा कुर्ता, सदरी और धोती और जूतियाँ पहने हुए नजर आ रहे थे। मेरे पास ही खड़े थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने कहा, ये क्या है सर?
1: क्या बात है?
0: मुस्कुराकर बोले, इन्हीं जड़ों ने ही तो मुझे आज इतना बड़ा इंसान बनाया है। आज इस पवित्र आयोजन के अवसर पर हम इन जड़ों को भला कैसे भुला दें? यही तो मेरा सब कुछ है। सच मानिए, जब भी हमारे यहाँ कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं तो मुझे चौधरी साहब की वो नसीहत याद आ जाती है और मैं भी पारंपरिक परिधान में आ जाता हूँ, जिन्हें अपने जीवन से अलग मैं कर ही नहीं सकता, भुला भी नहीं सकता। और ये नसीहत हमारे युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक का भी काम करती है।
1: वाह, क्या बात है। और वैसे भी पारंपरिक परिधान व्यक्तित्व को एक अलग ही खूबसूरती देता है।
0: क्या बात है, और बहुत सुंदर बात आपने कही। और सबसे बड़ी बात है, आप कोई ना कोई एक इंस्टांस लेकर के अपनी बात रखते हैं तो वो और भी प्रभावी हो जाती है। बहुत सुंदर, थैंक यू।
1: हमारे पास सुनील कुमार का मैसेज आया है, लिखते हैं, आप दोनों प्रस्तुताओं को सुप्रभात। जैसे युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक साथ चलते हैं रहते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृति और परंपरा दोनों एक साथ चल सकते हैं और चल भी रहे हैं। परंपरा में नयापन होता है जो समय के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन संस्कृति चिरस्थायी होती है। ये एक कभी ना बदलने वाली व्यवस्था है जिसे बदलना उचित भी नहीं है, बल्कि कोशिश करके उसको अपनाए रहना बहुत जरूरी है, उसे अपने जिंदगी में शामिल किए रहना बहुत जरूरी है।
0: क्या बात है। और देखिए, हरदोई से अरुण कुमार कुशवाहा जी का मेल भी आ चुका है। कहते हैं, प्यार भरा नमस्कार, और हम लोगों को प्रोग्राम सुनने के साथ साथ हम अपना सारा काम भी करते रहते हैं और गीत संगीत के साथ साथ अच्छी अच्छी जानकारी भी हमें मिल रही है। आज का मॉर्निंग मंत्र इन्हें बहुत प्रेरक लगा। मुद्दे पर इनका कहना है कि हम नए और पुराने दोनों युग को साथ साथ हमें जीना ही होगा, क्योंकि हमारी पहचान हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति से ही होती है। आज की पीढ़ी को अपनी संस्कृति अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे अपना कर ही हम इससे जुड़ सकते हैं।
1: तो बहुत सारे मेल्स और भी हैं, लेकिन सुष्मिता आपको क्या कहना है, एक गाना सुन लिया जाए?
0: बिल्कुल, कुछ म्यूजिकल हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: 9:20 और हम बात कर रहे हैं जिस बारे में, जी हाँ, उसका एक खास मकसद है और वो मकसद ये है कि आज है विश्व एथनिक दिवस, जी हाँ। और इसकी बात करें तो ये एक ऐसी बात हमें बताता है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान उसकी संस्कृति होती है, ये तो हम सभी मानते हैं। उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा, उसके त्यौहार, उसकी कला, उसका संगीत और उसकी परंपराएं, यही दरअसल उसकी असली विरासत होती है। और इन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान देने और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने के मकसद से हर वर्ष आज ही के दिन विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है।
1: जी हाँ, तो आज हम विश्व एथनिक दिवस

0: मना रहे हैं और सुष्मित ने इसके बारे में दोस्तों काफी बातें आपको बता दी हैं। इतना खास दिन, इतना प्यारा दिन। और
1: अब देखिए रोली, एथनिक की बात हम कर रहे हैं, एथनिक दिवस की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल ये नहीं कि खाली पारंपरिक कपड़े पहन लिए जाएं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति को समझना और उसे गर्व के साथ अपनाना भी है। अब भारत जैसे विविधता भरे देश की बात करें तो ये दिन और भी अधिक महत्व रखता है।
0: बिल्कुल, आपने ये सही कहा। और देखिए ना, यहाँ पर हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है सुष्मित।
1: बिल्कुल,
0: पहनावा बदल जाता है और खान पान बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो क्या होता है? वो होती है हमारी संस्कृति का मूल भाव, यानी विविधता में एकता। हमारे लोकगीत, हमारे लोक नृत्य, हमारे शास्त्रीय संगीत, हमारी हस्तकलाएं, हमारे पारंपरिक वाद्य, ये केवल मनोरंजन के साधन ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता के जीवंत दस्तावेज हैं। आप क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा रोली। आज के इस दौर में जो आधुनिकता भरा है, वहाँ पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा गौरव भी।
0: तो यानी हम जो है अपनी आज हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ियों को अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपने संगीत और अपनी परंपराओं से परिचित नहीं कराएंगे तो हमारी जो अमूल्य विरासत है धीरे धीरे केवल किताबों तक सीमित होकर रह जाएगी। और विश्व एथनिक दिवस हमें यही संदेश देता है, आधुनिक बनिए लेकिन अपनी पहचान मत भूलिए।
1: बिल्कुल सही बात है, नई तकनीक अपनाइए लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलिए, क्योंकि जिस समाज की जड़ें मजबूत होती हैं उसी समाज का भविष्य भी उज्जवल होता है।
0: तो आइए हम सब मिलकर आज संकल्प लें कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे, अपने लोकगीतों और शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे और अपनी संस्कृति को केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और इसी बात के साथ ही साथ विश्व एथनिक दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए, यहाँ पर वक्त हो चला एक और ट्रैक का, मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: कश्मीर से वापस आ जाइए
1: और कश्मीर
0: से अगर कन्याकुमारी पहुंचे तो वहां से वापस आ जाइए।
1: क्या बात है, कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से वापस लौट आए हैं, थकावट दूर कर चुके हैं,
0: वापस लौट के आना ही पड़ता है
1: जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल, वापस लौट के अपनी जगह
0: आना ही पड़ता है,
1: जड़ों तक पहुंचना ही पड़ता है। बहरहाल अगर आप लौट आए हैं तो एक बात रुली आपके लिए भी है, आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती हैं?
0: जहाँ तक कोशिश हो सकती है अपनी सेहत का सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर ख्याल रखती हूँ, उसके बाद बाकी चीजें रखती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। बहरहाल मैं ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि हम अक्सर अपने स्वास्थ्य का महत्व तब समझते हैं जब कोई बीमारी हमें या हमारे अपने किसी प्रियजन के जीवन को प्रभावित कर देती है। और ऐसी ही एक बीमारी की बात करने वाले हैं हम, जिससे जागरूकता के लिए एक खास दिन मनाया जाता है आज। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे सही समय पर जानकारी और जांच के माध्यम से गंभीर परिस्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है, और सिकल सेल रोग ऐसी ही एक आनुवंशिक बीमारी है जिसकी जागरूकता के लिए आज मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस।
0: जी हाँ, सिकल सेल की आपने बात सेल रोग की बात की, तो सिकल सेल रोग में हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाएं अपने सामान्य गोलाकार के स्थान पर दरातिया हंसी जैसी हो जाती हैं, राइट सुष्मित?
1: बिल्कुल,
0: और इससे रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है और जो रोगी है उसको तेज दर्द, एनीमिया, बार बार संक्रमण और बहुत ज्यादा थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
1: तो यानी कुल मिला के अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है आपको। आपको ध्यान रखना है कि सिकल सेल कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए समय पर जांच और चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आज आधुनिक चिकित्सा और नियमित देखभाल की मदद से इस रोग से प्रभावित व्यक्ति भी एक स्वस्थ, एक्टिव और सम्मानजनक जीवन जी सकता है।
0: तो आइए इस अवसर पर हम संकल्प करें कि हम सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, समय पर जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और इस रोग से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार भी अपनाएंगे।
1: बिल्कुल, एक जरूरी बात थी ये और इस जरूरी बात को आप जरूर ध्यान में रखिए, और अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। फिलहाल बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है और उससे पहले एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक आप तक पहुँच रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.

0: Delhi-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सुबह के हो रहे 9:36 और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर जो है धड़कन
1: लखनऊ की
0: और आपके साथ सुबह से है दो आरजे सुबह से सुष्मित जी बने हुए हैं आपके साथ और मैं हूं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला और हम लोग बात कर रहे हैं आज ढेर सारी और खास तौर पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व एथेनिक दिवस को। तो सुष्मित आपका क्या कहना है?
1: मेरा कहना यही है कि जो हमारे साथी कह रहे हैं मैं कहीं ना कहीं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं और मैं भी ये सोचता भी हूं और चाहता भी हूं कि हम अपनी जड़ों से दूर कभी ना जाएं। और कुछ ऐसा ही कहना चाहा है सिमरन ने भी अपने मेल के थ्रू और इनका कहना है कि परंपराएं हमें हमारी जड़ों और मूल्यों से जोड़कर रखती हैं जबकि आधुनिकता हमें गतिशीलता और विकास देती है। इनका संतुलित मिश्रण ही एक प्रगतिशील और सुखी समाज की पहचान है। हम पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों जैसे बड़ों का सम्मान और पारिवारिक एकता को बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीकों जैसे स्मार्टफोन इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने सिमरन जी, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए।
0: और हमारे पास वारिस अली खान का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग रोली सुष्मित, गुड मॉर्निंग टू यू टू। लिखते हैं आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और ये लिखते हैं मेरा मानना है कि फास्ट फूड के दौर में हम अपने पारंपरिक और पौष्टिक भोजन को भी महत्व दें। हम हर संडे को फास्ट फूड लेते हैं, बाकी दिन अपने पारंपरिक पौष्टिक भोजन को बनवाते हैं और खाते हैं। जहाँ तक परिधानों की बात है, मैं अगर पैंट पहनता हूँ तो उसके साथ चिकन का कुर्ता भी पहनता हूँ और इसे कहते हैं आधुनिक परिधान और पारंपरिक वेशभूषा की खूबसूरत मैचिंग।
1: और यह खूबसूरत मैचिंग जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है,
0: बहुत बढ़िया,
1: सही एग्जांपल आपने दिया है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपके मेल्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े प्यार से अपने मेल हम तक पहुंचाए हैं। और इसके साथ ही साथ अगला साथी हमारा कौन है?
0: विनीत कुमार है और ये ग्राम अर्थपुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से हैं और लिखते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रस्तुत करने वाले सुष्मित और रोली जी को गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग आपको भी।
0: और ये लिखते हैं कि आप लोगों की बोली, आप लोगों का अंदाज बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम करने का। और ये लिखते हैं कि आज गर्मी बहुत है, मौसम में हवाएं भी चल रही हैं, इससे हमारे भाई बहनों को दिन में 4-5 बार चेहरे को जरूर धोना चाहिए ऐसे में।
1: तो थोड़ा सतर्क रहने की बात इन्होंने कही है मौसम को देखते हुए। चलिए एक मेल और देख लेते हैं, मोनू सेठ जी का मेल है, कहते हैं हमारे मुद्दे से जुड़ते हुए इनकी बात, हमने मुद्दा पूछा था कि क्या आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती है, तो इनका कहना है बिल्कुल आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। परंपरा हमें जड़ों से जोड़े रखती है जबकि आधुनिकता हमें आगे बढ़ने की गति और दृष्टिकोण देती है। एक संतुलित जीवन के लिए इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है, मूल्यों और नवाचार का मिश्रण। और कुछ ऐसी बातें आगे भी है। बहुत बहुत आभार आपका मोनू जी, थैंक यू सो मच।
0: सुधांशु जी का मैसेज आया है, लिखते हैं भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों लोगों की आवाजें बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम का पहला गाना जबरदस्त बजाया आप दोनों ने, टॉपिक पर बहुत अच्छा टॉपिक लिया, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि आधुनिक युग में आधुनिकता और संस्कृति बिल्कुल साथ साथ चल सकती है, आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं बल्कि नए विचारों के साथ अपने मूल्यों को निभाना है। आज की तकनीक और सोशल मीडिया का सही उपयोग करके हम अपनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने, जैसे कि पुरानी कहानियां रीति रिवाज सीखना इसका सबसे आसान तरीका, इसके अलावा अपने पारंपरिक खान पान को अपनाना और स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना भी अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिकता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और संस्कृति हमें सही राह पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना बनाए रखती है।
1: यहाँ पर एक और मेल प्रवीण जी का और ये कहते हैं हमारी जितनी भी परंपराएं हैं वो सभी हमें आपस में जोड़ती हैं और प्रकृति की रक्षा करती हैं और आधुनिक सतत विकास से परंपराएं और आधुनिकता साथ साथ चल सकती हैं। हमें आधुनिक तकनीक अपनाना चाहिए जिससे हम सब आपस में प्रेम से जुड़े और प्रकृति की रक्षा हो। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, अगर अपनी जड़ों का ख्याल रखेंगे तो अपने आप ही हमें रंग बिरंगे फूलों से सजा पेड़ मिलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर बात,
0: बहुत ही प्यारी बात है। और ये देखिए कि कहते हैं ना कि आधुनिकता और परंपरा का जो मेल होता है, जो उसका सम्मिलन होता है, वो आप देख सकते हैं कि ये घड़ी, ये ब्रेसलेट्स के साथ और ये गोटा पट्टी और का सिल्क जो समय पहना हुआ है, जब इस तरह से अच्छे से कपड़े पहन कर जब हम सामने आते हैं तो दिल

0: यही करता है ना कि बस कोई ऐसा हो जो कि सामने हमें मिल जाए और हमारी फोटो वोटो ले ले भाई, फोटो शोटो ले ले, और उसके बाद हम देखें कि हाँ कितना अच्छा, कितने अच्छे लग रहे हैं हम.
1: तो साहब ये नेक काम कर लीजिए, अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, कोई अपना है जो आपको देख के अच्छा लग रहा है, कुछ पारंपरिक कुछ एथनिक है, तो बड़ी अच्छी बात है. और इस बात के साथ ही साथ हमारे कुछ और साथी हैं रोली, जिनकी बातों को हम शामिल जरूर करेंगे आगे. फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम मौसम की अपडेट लोगों तक पहुंचाएं, तो उसका भी प्रयास रहेगा. एक छोटा सा यहाँ पर कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं और इसके बाद ये सफर जारी रहेगा. आप जुड़े रहे 100.7 FM रेनबो पर.
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है.
1: और हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि आप तक मौसम की क्या ताजा अपडेट है उस तक भी आपको ले चलें. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद दानिश जी, जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं. करते हैं उनका स्वागत. बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी 100.7 FM रेनबो पर.
0: गुड मॉर्निंग
1: जी. तो मौसम क्या कुछ करने वाला है, क्या अपडेट रहने वाली है, हमारे साथियों को बताएं और इस अपडेट से हमें अपडेटेड कराएं.
5: देखिए मौसम की बात करें तो जैसे कि गर्म पछुआ हवाओं का चलन बरकरार है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो गर्मी का असर है ये पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है. और अगर हम उम्मीद करें तो अगले अभी 3-4 दिन तक मौसम इसी तरीके से रहेगा
1: जी.
5: और गर्मी का असर हमको दिखता रहेगा. तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो, और इसमें साथ ही में थोड़ा उमस भी है, तो कहीं ना कहीं उमस वाली जो गर्मी है वो भी बरकरार रहेगी. तो कुल मिलाकर 4-5 दिन हमको तैयार रहना चाहिए गर्मी के लिए.
0: और जिसे कहते हैं कि लू वगैरह जो गर्म हवाएं तेज हवाएं होती हैं, तो उनसे भी बच के रहने की जरूरत है, राइट?
5: जी बिल्कुल, उससे भी बचाव रखने की आवश्यकता है. और कहीं ना कहीं एक तरीके से बीच में हल्के फुल्के बादल आएंगे, लेकिन जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो थोड़ी गर्मी को और थोड़ा बढ़ा दे रहा है. तो कुल मिला के अगले 4-5 दिन हमको बचाव रखने की आवश्यकता.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी अपडेट के लिए. थैंक यू सो मच. दोस्तों ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि 4-5 दिन फिलहाल ऐसा ही मौसम रहने वाला है. थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बादल दिखेंगे तो लेकिन कुछ राहत नहीं पहुंचाएंगे.
0: बिल्कुल, आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा तो कहीं से एहसास ऐसा हो जाए कि ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अभी गर्मी कम नहीं होने वाली है. तो सो अपना जो भी आपको इंतजाम करना है वो इंतजाम करके चलिए. मोटी सी कोई भी चादर टाइप या जो कोई मोटा दुपट्टा उसे लेके ही बाहर निकलिए, और साथ में पानी जरूर होना चाहिए. हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल सही बात है. तो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़े
3: का अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं 100

0: 7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। ये लीजिए
1: 9:51 मिनट हो गए रोली।
0: हाँ, मुझे भी लग रहा था कि आप टाइम ही बताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आप घड़ी की ओर देख रहे थे और आपकी आंखों में जो दिखाई दे रही थी ये खुशी जाने का टाइम है।
1: दरअसल समय इतनी तेजी से भाग जाता है कि पता ही नहीं चलता, और उसके बाद जब अचानक घड़ी पर निगाह पहुंचती तो लगता है कि अरे बस इतना समय बचा।
0: अरे इतनी जल्दी, आज तो सारी बातें कह भी नहीं पाए, अपने जो भी बातों का पिटारा था उसको ठीक से खोल भी नहीं पाए, और ये लीजिए मतलब टाइम अप।
1: जी हाँ, तो कोई बात नहीं, इस समय के साथ हम कदम ताल बनाए रखते हुए आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आराधना मिश्रा जी का मेल मेरे सामने है, कहती हैं आई थिंक बोल्डनेस एंड मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड पॉजिटिवली। कुल मिला के इन्होंने ये जो बात कही उसमें इतनी बात हमें समझ में आई, क्योंकि आपका जो मेल हम तक पहुंचा है आराधना जी, उसमें जो आपने मेल भेजा है उसमें ब्लैक बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से आपका मैटर हमें विजिबल नहीं है।
0: तो बहुत ज़्यादा कायदे से तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बस हमें इतना समझ में आ रहा है कि आपने आज के मुद्दे पर जो बात भेजी है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल और सामंजस्य बनाने की बात कही है आपने।
1: बिल्कुल, और देखिए मुनेश कुमार राज क्या कह रहे हैं, आज के लिए खाली गुड मॉर्निंग सभी को, आपको भी गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ ब्रजेश सिंह दीपू ने कहा है कि समय के साथ आधुनिकता भी जरूरी है और अपनी परंपरा को भी नहीं छोड़ना है, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। कैसरगंज बहराइच से इनका ईमेल आया।
0: तो साथ ही साथ और भी जो लोग हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है, जैसे कि विराज सैनी जिन्होंने हाय लिखकर भेजा है, योगेंद्र कुमार और कोमल तिवारी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए।
1: बिल्कुल, निधि चौरसिया का भी मेल, गुड मॉर्निंग कहा है इन्होंने सभी को, थैंक यू सो मच। घनश्याम सिंह जी ने अपनी बात हम तक पहुँचाई, कहते हैं इनके घर की तरफ ट्यूबवेल खराब हो गया है जिसके चलते पानी की बहुत समस्या है, और ऐसे में पानी का महत्व कहीं ना कहीं समझ में आता है, जब कोई चीज़ कम पड़ती है तब हमें उसका महत्व समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें, पानी बर्बाद ना करें।
0: तो फिलहाल सुस्मित, ये कहते हैं ना कि जो फैशन है, आज का दिन याद दिलाता है कि फैशन आते जाते रहेंगे, पर हमारा जो एथनिक लुक है, जो हमारी परंपरा है, वो हमेशा हमेशा एवरग्रीन रहेगी। आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही बात है, निश्चित रूप से समय आता जाता रहता है, लेकिन जो हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, जो हमारी अपनी परपाटी है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, वो कहीं दूर नहीं हो सकती, वो वैसे ही रहेगी। तो आप इसको समझिए और इसको बनाए भी रखिए ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और देखिए कुछ मेल्स और भी हैं जो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, इसमें आर्यन मिश्रा जी का मेल है शाहबाद हरदोई से,
0: कहते हैं
1: आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। आधुनिकता हमें नई तकनीक, नए विचार और विकास का मार्ग दिखाती है, जबकि परंपरा हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और पहचान से जोड़ कर रखती है। क्या बात है, यदि हम आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपनी भाषा, रीति रिवाज और नैतिक मूल्यों को बनाए रखें तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उदाहरण के लिए आज लोग ऑनलाइन माध्यम से त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन त्योहार मनाने की परंपरा को भी जीवित रखते हैं, यही आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है। बहुत अच्छी बात
0: कही आपने, और बहुत ही सुलझे शब्दों में आपने बात का जो अर्थ हमें समझाया है वो बहुत अच्छा लगा, और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी श्रोता हमें इस समय सुन रहे होंगे तो उनको ये जरूर पता चला होगा कि जो हमारी जो परंपराएं हैं उन्हें हमें बनाए रखना ही रखना है, चाहे क्यों ना आधुनिकता के कितना भी बड़ा दौर आ जाए, पर हमें अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए अपनी जो आधुनिकता है उसे अपनाना है।
1: बिल्कुल, और रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से रामराज जी ने अपना मेल भेजा है, सभी को प्यार भरा नमस्कार कहा है, ताली भंसारी जी ने गुड मॉर्निंग कहा है और बड़ा प्यारा सा कार्ड भी भेजा है। विराज सैनी जी की बात आप कर चुकी, योगेंद्र कुमार जी का भी मेल है, इन्होंने सुबह कहा था कि मैं भी इधर पार्क में ऑनलाइन आपके साथ हूँ, बेहतरीन चल रहा है कार्यक्रम, बढ़िया बढ़िया गीत, वाह भाई वाह, क्या बात है,
0: बहुत अच्छा। हमारे पास रामराज का मैसेज आया, इन्होंने लिखा है कि सदाबहार गीत इन्हें बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हुए हैं, जैसे कि बंटी यादव, पप्पू मनीष, ये कहते हैं कि हमारी तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार है और आपका कार्यक्रम सुपर हिट है।
1: क्या बात है, कोमल तिवारी जी ने अपना मेल भेजा और उन्होंने गाना सुना था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, और बाकी सारे गाने इन्होंने सुने, उसी के साथ इन्होंने जुड़ते हुए सभी को गुड मॉर्निंग कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जनवेश कुमार जी का मेल, इन्होंने भी सबको गुड मॉर्निंग कहा है और कहते हैं कि आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल जी, हम भी अच्छे हों और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। तो ये वो साथी थे जिनकी बातें आज हम तक पहुंची हैं, और आप सभी की इन बातों के लिए बहुत बहुत आभार, आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और दोनों बातों का ध्यान रखिए। विश्व एथनिक दिवस है तो यानी हमें जुड़े रहना है अपनी संस्कृति से,

0: और साथ ही साथ सिकल सेल दिवस यानी ये बताता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सजग रहना है। तो इन बातों के साथ ही साथ अब मुझे यहाँ से लेना होगा अनुमति आपसे, तो मैं कहता हूँ टाटा बाय बाय। रोली आपके साथ रहेंगे अगले प्रोग्राम में भी, आप जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो से। जो
1: बाय सुस्मित,
0: बाय रोली।
1: और हमारी तरफ से यही कहना है कि इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। फिलहाल मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, अगले घंटे भी आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे गाने, और उसके बाद 11 से 12 के बीच में फिर से आपके साथ रूबरू हो जाऊंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। बुंदेलखंड के बांदा जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और

40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहे तापमान को लेकर शासन ने गंभीर पहल की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी के अनुरोध पर शासन स्तर से 6 वैज्ञानिकों की एक टीम गुरुवार को बांदा पहुंची। ये टीम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये पता लगाएगी कि जिले में लू और भीषण गर्मी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों की टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करेंगी। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के 6वें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। और अंत में मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
4: भाई। अब मैच का क्या होगा?
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
7: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
8: इस ऑसम से डे और ऑसम से सुबह में एक बार फिर से आपके साथ मैं आ चुकी हूँ, आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आप सबके बीच, और अच्छे अच्छे ढेर सारी सॉन्ग्स लेकर आई हूँ मैं अपने पिटारे में, तो बस इसे एंजॉय करने के लिए आप तैयार हो जाइए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों सुपर हिट म्यूजिक यहीं पर सुपर हिट सॉन्ग्स यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है और अगले प्रोग्राम में बस कुछ ही देर बीच में होगा समाचार और उसके बाद आ जाऊंगी आपका हिट प्रोग्राम लेकर. संदेश आपके गीत हमारे सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद उन्नाव में विधानसभा सदर उन्नाव तथा भगवंत नगर की 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बदले हुए परिवेश में रह रहे हैं। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। जब दुनिया पश्चिम एशिया संकट तथा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा के भीषण संकट ने सभी देशों को परेशान किया था, तब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता को इस संकट से उबारने में देश को इस संकट से उबारा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर नगर में हुई एक बैठक में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा की बैठक की। बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा फर्रुखाबाद जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर कार्ययोजना शीघ्र शासन को प्रेषित की जाए। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और

उद्यमी हिस्सा लेंगे। और अंत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह के अंतर्गत आज सुबह अमरोहा में नगर पालिका परिषद परिसर में आयुष विभाग के मास्टर योगा ट्रेनर योगाचार्य नितेश भारद्वाज द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों एवं आम जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम विभिन्न योगासन प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

और इस प्यारी सी म्यूजिक के साथ एक बार फिर से आगाज करते हैं। इस घंटे का 11:04 हुए हैं और आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, और ये प्रोग्राम लेकर आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर है कौन, आपके आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और हम लोग करेंगे ढेर सारी चिटचैट और साथ ही साथ आपके मैसेजेस का इंतजार है मुझे, क्योंकि आप हमें अपने संदेश भेजते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी करते हैं। तो बस जल्दी से आपकी बातों का इंतजार करते हुए ये ट्रैक आप तक पहुंचा रहे हो, सुन रही है 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की।

0: भाई सीधे पॉइंट पे आ गई हूँ मैं, और पॉइंट ये है कि आप सब अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर कौन सा है? नंबर वही है अपना जाना पहचाना, जिसमें आप लखनऊ का कोड लगाएंगे 0522, ये लखनऊ का कोड, और नंबर क्या है 2238 45 2238 652। और फिलहाल हमें किसी ने कॉल लगाया है, देखते हैं वो कौन है। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बताइए आप कैसी हैं?
0: थैंक यू, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं शमा जी?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे ने फोन रिसीव कर लिया, हम और अच्छे हो गए, और फोन रिसीव करने के लिए इसके लिए थैंक यू।
0: यू मोस्ट वेलकम। और देखिए फोन रिसीव हो गया है तो ये खुशी जो है ना आपके आपकी बातों से झलक रही है ना?
1: हम बहुत खुश हैं जब फोन रिसीव हो जाता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं।
0: ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। तो कहिए आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं आज हमारे प्रोग्राम में?
1: आज संदेश हमारा ये है कि गर्मी, बस यही संदेश है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है,
0: बहुत ज्यादा हो रही है,
1: अपना ख्याल रखें, और यही बहुत बड़ी बात है जो अपना अपना सब लोग ख्याल रखें, और अपने घर में जैसे पशु पक्षी हैं उनका ख्याल रखें, बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, बस जिंदगी में यही है तो और है क्या जिंदगी में।
0: बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए, साथ साथ दूसरों का ख्याल रखिए, और जिंदगी को मस्त जीते रहिए, है ना? थैंक यू सो मच शमा में कॉल करने के लिए।
1: मैम अपने भाई बहन का नाम लेना चाहते हैं।
0: नाम ले लीजिए जल्दी से, एक सॉन्ग बिल्कुल रेडी है आपके लिए।
1: वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, सत्यम कुमार भाई, साहिब अंसारी, गुलाब साहब की, रिंकी पिंकी, अकबर अंसारी, मोहम्मद फैज अंसारी।
0: ओके, थैंक यू सो मच शमा में कॉल करने के लिए।
1: ओके बाय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: जी हाँ, आपको अपडेट भी रखता है रेनबो और आप तक एंटरटेनमेंट की एक बहुत प्यारी डोज भी पहुंचाता है रेनबो। तो यानी जानकारियों का सिलसिला और साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक का सिलसिला पूरा पूरा मिलता है। तो ये फुल डोज आप तक पहुंचती है 100.7 एफएम रेनबो के माध्यम से। और एक मेल पहुंची है fmakashwani@gmail.com के माध्यम से हम तक। और ये क्या लिखते हैं, विनीत कुमार बेचते हैं हमें, लिखते हैं ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से संदेश। आप एक गीत हमारे प्रस्तुत करने वाले रोली जी को गुड आफ्टरनून, आप प्रोग्राम सुपर हिट करती हैं, थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, ये हमारी खुश नसीबी है। और ये लिखते हैं कि शिक्षा के लिए अपने बच्चों को ज़रूर भेजें, स्कूल काम मत करवाया करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता काम करवाते रहते हैं अपने बच्चों से, शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का अधिकार है, सबसे पहला अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका कहते हैं कि हमारी जो पहली शिक्षा होती है, हमारा जो पहली कक्षा होती है, हमारा परिवार होता है, लेकिन उसके बाद हमें विद्यालय में भेजना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को। मुनीश कुमार राज जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं रोली जी को राम राम, आपको भी राम राम। और ये कहते हैं कि हर कार्यक्रम बेमिसाल है और सुनते सुनते हो गए कई साल है। संदेश लिखते हैं कि जब फ़ोन कॉल लग जाए तो ज़्यादा देर तक बात ना करें, और अगर ज़्यादा कहना हो तो एक हफ्ते बाद फिर से फ़ोन मिला लें। क्या बात है, वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ना फ़ोन से बड़ा कटते हैं, कुछ लोग जो बहुत टॉकेटिव होते हैं ना, उनके फ़ोन आते ही लोग घबरा से जाते हैं, अरे इतना लंबा बात करेगी अब ये, मतलब यह बात करेगा कोई भी हो सकता है, क्योंकि टॉकेटिव तो दोनों ही होते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, लेकिन ऐसे लोगों से कभी कभी कुछ लोग कटने लगते हैं। सही कहा आपने। और ये लिखते हैं कि ईमेल हमेशा अपने नाम से ही भेजें, दूसरों के नाम से ना लिखें, अगर लिखना ही है तो एक व्यक्ति का नाम लिखें या फिर श्रोताओं लिखें, बाकी आप खुश रहें, आबाद रहें, चाहे दिल्ली रहे या अमीनाबाद रहे। वाह क्या बात है। हमारे पास एक और मेल आया है, किसका आया है, ये है राजकोट से कौशिक जी हैं, और कौशिक जी वडवाड़ा परिवार से हैं। हेलो नमस्ते रोली जी, कैसी है, मैं अच्छी हूँ। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी पंखुड़ी भेजी है जिसमें से बूंद टपक रही है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास एक और मेल आया है, ये लिखते हैं हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी, लिखते हैं मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरा संदेश ये है कि सब मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, रेडियो से जुड़ जाएं तो जीने का ढंग ही बदल जाए। मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ और कुछ काम है तो आज जो है ये अच्छा, इन्होंने कुछ लिसनर्स के नाम भी लिए हैं रिंकी पिंकी जी। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर फ़ोन से दूरी हो जाए ना तो हम लोग वापस से उसी जो हमारा

वाला आ रहा था जिसमें हम बस रेडियो को कान से चिपकाए सुनते रहते थे, कभी म्यूजिक, कभी समाचार, तो कभी कोई बात, तो ये सारी बातें हम तक पहुंचती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक है जो आपको सुनाना है और इसके बाद एक फोन कॉल लेकर के जल्दी हाजिर होती हूँ। देखती हूँ नेक्स्ट हमारा लकी कॉलर कौन है जिसका कि आज कॉल लगने वाला है। सुनते रहिए संदेश आपके गीत हमारे ओनली 100.7 FM रेनबो विद योर आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला।

0: और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: निर्मल बोल रहा हूँ।

0: निर्मल जी, आपका नाम बहुत अच्छा है. गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग.
0: आपका स्वागत है. कहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आज हमारे प्रोग्राम में?
1: सभी के सुनना अच्छा लग रहा है, बाकी बहुत खुशी हो रही, कुछ कहने का मन ही नहीं.
0: ओहो, आपको खुशी इतनी हो रही कि कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं.
1: अरे 10-15 साल से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, कभी फोन लगा नहीं, आज लग गया तो खुशी तो होगी.
0: आपको 10-15 साल बाद पहली बार फोन लगा है?
1: जी
0: कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए तो आज क्लैपिंग वाला डे है.
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका आज पहली बार कॉल लगा है एफएम पर.
1: क्या बताऊं, पास में होते तो खुशी बताते.
0: हाँ, मतलब आप सामने होते तो जता देते. कोई बात नहीं, आप जहाँ पर है ना वहीं पर एक बार घूम जाइए जोर से और क्लैपिंग कर लीजिए. यही तो मतलब, आप 10-15 साल से आप ट्राई कर रहे थे फोन यहाँ पर?
1: 10-15 साल से नहीं, जब तब जब मर्जी आ जाती तो लगाते, तो लग ही नहीं रहा था. आज पता नहीं किस्मत सही थी तो लग गया.
0: आज आपकी किस्मत का तो सेलिब्रेशन बनता है, तो चलिए आज कुछ अच्छा सा किचन में बनवा के खाइएगा. ओके और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ. थैंक यू, बाय बाय.

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय हमारे पास एक मेल है वकील अहमद जी का, और ये लिखते हैं, नमस्ते नमस्ते, आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू। ये लिखते हैं संदेश ये कि रोड पर मोड़ पर जो घनी झाड़ी हो जाती है, वन विभाग हो या कोई, उसको साफ़ करवाना चाहिए। और मोड़ पर एक्सीडेंट में एक ही मौके पर मौत हो गई कुछ लोगों की और कुछ लोग घायल हो गए। तो इस दिन मोड़ पर बहुत से ज़्यादा हादसे होते हैं इस तरह से उस मोड़ पर, तो इनका कहना है कि वो उसकी जिम्मेदारी ली जाए और इसका तरीका खोजा जाए कि भाई कैसे सही हो सकता है। ठीक है वकील जी, आपकी बात बहुत अच्छी है। और इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, जैसे कि साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी बिंकी, इन सब के नाम आपने लिखे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और आराधना मिश्रा का हमारे पास मैसेज आया है, और ये है आराधना मिश्रा पांडे, और ये सृष्टि अपार्टमेंट लखनऊ से मैसेज लिख रहे हैं, और ये लिखती है इन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी सी, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनना चाहा है। खैर ये रिक्वेस्ट शो तो नहीं है, लेकिन आपका सॉन्ग ज़रूर बजेगा किसी और प्रोग्राम में। और ये साथ साथ लिखती है कि मैं अपनी मॉम श्याम लली को और अपनी सिस्टर रचना और अपने हस्बैंड गौरव और मासी निशा और आशा मौसी को, मैं और डॉटर आर्मी को, अकाल आरंभी अकाल लिली को ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। आपका ये जो प्यार और ये जो क्यूटनेस है ना, आपने बड़ी क्यूटनेस के साथ ये मेल लिखा है आराधना मिश्रा जी, थैंक यू सो मच हमें मेल भेजने के लिए। मेरा ख्याल है कि आपका मैसेज पहली बार आया है, तो अब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमारे पास किसका मैसेज आया है, ये है कौशिक जी। कौशिक जी ने हमें बड़ा अच्छा सा पोस्टर लिख करके भेजा है और लिखा है कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ये बात तो आपने सच कही है कि रोज़ रात में जो लोग सोच कर सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, वो सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाते, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। वैसे जिनकी सुबह की नींद नहीं खुलती है ना, उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप आँख खुलने लगती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है सुबह उठने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि रात में जल्दी बेड पर जाया जाए और जल्दी सोया जाए, तभी आप जल्दी उठ भी सकते हैं। यकीन मानिए इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सुबह जल्दी उठने का, मुझे जैसा लगता है। इसके साथ ही हमारे पास मोहम्मद आसिफ का मैसेज आया है। मोहम्मद आसिफ हैदराबाद तेलंगाना से हमें मेल भेज रहे हैं, और ये लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, रोली नाम, थैंक यू। लिखते हैं संदेश ये है कि नियमित योग करें और सुबह जल्दी उठें। सादिया अंसारी और सहबा अंसारी, समा अंसारी का नाम लिया है इन्होंने, बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू भाई आप लोगों के इतने सारे बातें और इतनी अच्छी अच्छी बातें, और ख़ास तौर पर आपके जो संदेश हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचते हैं, और लिसनर्स तैयार हो जाते हैं वो बातें दोहराने के लिए या उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए। अच्छा ये बताइए कितने लोग अपनाते हैं, वो भी अपना मेल हमें लिखकर भेजें भाई, ये बातें कितने लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। और अब बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक है, इस पर थोड़ा सा झूम लीजिए। 11:31 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला के साथ।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल सही बात है, मिलना और बातें करना ये दो शौक जिसको हो तो बस समझ लीजिए दोस्तों में उसका नाम बहुत ऊंचा होता है। और अगर आप बातें करने के शौकीन और बातें बना लेते तो भाई क्या बात है। इसके बारे में तो कुछ और कह ही नहीं सकते। हमारे पास एम के राज का मैसेज आया है और ये लिखते हैं कि ये गांव भानपुर हरावा जिला लखीमपुर खीरी से लिखते हैं हम हैं एफएम रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज़ से हमें हर कोई जाने। और ये लिखते हैं कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें तो साथ में गमछा या रुमाल और पानी की बोतल लेकर ज़रूर निकलें। अगर लंबे सफ़र पर हैं तो गाड़ी को भी आराम दें और वाहन चेक कर लें, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईयरफोन की जगह हेलमेट लगाएं, फ़ोन पर बात करते समय गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, थोड़ा साइड में लगा कर बात कर लें। और अगर ये आप मान लें तो इससे अच्छा क्या है, अगर जो लोग इसे मानते हैं और फॉलो करते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, यकीन मानिए। तो दोस्तों संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम

0: मैं आपके ईमेल्स में शामिल कर रही हूँ और इसी तरह से आप और मेल्स भी भेज सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक गाना और उसके बाद वापस आते हूँ आपके साथ आपके प्रोग्राम में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो। फिर से

0: धड़कन लखनऊ की।
1: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट। सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

11:51 संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ आपकी आरजे रोली शुक्ला और आराधा मिश्रा का मैसेज आया है हमारे पास और ये लिखती है कि हेलो मैम बहुत अच्छा लगा और मैंने मेल भेजा था रिक्वेस्ट का बट आपने फिर भी मेरा मेल पढ़ा. थैंक यू सो मच. थैंक यू आराधना जी. और ये लिखती है कि एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि टेढ़ी पुलिया पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, किसी के पास सिविक सेंस नहीं है. अगर सब ध्यान दें तो सब अच्छा हो सकता है लेकिन ध्यान कोई नहीं देता. छोटे छोटे मेन होल ओपन है, डाइवर्जन और कंस्ट्रक्शन से केयरलेसनेस से कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बुरा लगता है और बहुत दुख होता है. इसलिए प्लीज़ सब ध्यान दें, दो लोग ही बाइक पर बैठें और दोनों हेलमेट लगा कर चलें और कार में सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं. बाकी कान्हा जी साथ हैं, जान है तो जहान है. बिल्कुल सही कहा आपने आराधना जी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है.

थोड़ा सा फॉलो कर ले, थोड़ा सा ध्यान दे ले, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हमारे पास महेंद्र दीपन जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले के गांव रूट से आपका कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे बड़े अच्छे से सुन रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, आपका कार्यक्रम वाकई बहुत बेहतरीन है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं, आज मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथी श्रोताओं और वाहन चालकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा संदेश साझा करना चाहता हूं। कृपया इसे अपने कार्यक्रम में शामिल करें। हमने कर लिया है ऑलरेडी महेंद्र जी, और हमेशा की तरह इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा पोस्टर बना करके भेजा हुआ है और उसमें लिखा है कि बारिश के मौसम में सुरक्षित सफ़र करें, जल्दबाजी नहीं करें, जिम्मेदारी दिखाइए, सुरक्षित घर पहुंचिए, घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी सुरक्षित यात्रा ही आपके परिवार की खुशी है। और साथ ही लिखा है कि गाड़ी की गति नियंत्रित रखें, अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हेडलाइट्स का सही उपयोग करें, ब्रेक सावधानी से लगाएं ताकि गाड़ी फिसले नहीं, और फिसलन भरी सड़क पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें। अगर आपकी बातें ये जो भी सुन रहे हैं और उन्होंने अगर इसे अपना लिया अपने ज़िंदगी में, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करेंगे और साथ ही साथ उन्हें सेव करेंगे जो कि और लोग सड़क पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपके मैसेजेस हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ही सतर्कता और बहुत ही गंभीरता के साथ आप अपने जो पॉइंट्स हैं उन्हें रखते हैं। थैंक यू सो मच हमें मैसेज भेजने के लिए। हमारे पास वारिस अली खान जी का मैसेज आया, लिखते हैं, रोली जी प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है और थैंक यू सो मच। ये साथी लिखते हैं कि गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन आपके लिए औषधि बनकर काम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने वारिस जी, और थोड़ा सा जो लोग कड़वा बोलते हैं हमें बुरा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वे लोग हमारी भलाई देखते हैं हमारे कामों में, हमारी ज़िंदगी में, और जो हर वक्त मीठा बोले उसके बारे में क्या कहेंगे, उसे थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता सच्चा है तो हमेशा मिठास नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगा ज़रूर।

0: और यूं महकते हुए अंदाज में और चटकती मटकती आ गई है हमारे स्टूडियो में. हाय तरन्नुम.
1: हेलो रोली.
0: गुड मॉर्निंग.
1: मतलब चटकते मटकते समझ में नहीं आया कुछ.
0: हाँ
1: चटक तो आप रही हैं.
0: सही बात है.
1: सही बात है. बहुत अच्छा सा सूट पहने हैं.
0: चमकीली. आज वर्ल्ड एथनिक डे है ना.
1: अच्छा इसीलिए आज आप पहन के.
0: और क्या और क्या.
1: नहीं ये कलर आप पे सूट भी बहुत कर रहा है पता है.
0: थैंक यू. वैसे रोली अब कहती है आपसे टाटा बाय बाय. मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दिन किसी और शो में. तब तक के लिए यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए. अब आगे कुछ घंटे आपके साथ रहने वाली है तरन्नुम. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की. स्टे ट्यून्ड स्टे म्यूजिकल.

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। मुख्यमंत्री अयोध्या धाम और रुदौली विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वहां पहुंच गए हैं। अपने दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन से कर रहे हैं। इसके बाद वो मणिरामदास छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी सहभागिता करेंगे। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यहां वीरांगना झलकारी बाई कोरी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा, साथ ही 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित 70 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि प्राप्त करते हुए सभी 70 पात्र ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण कर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों, मनरेगा श्रमिक परिवारों, खाद्यान्न योजना के लाभार्थियों एवं अन्य पात्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। प्रशिक्षण का संचालन कुई करौंदी कला चित्रकूट स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह के अंतर्गत आज सुबह अमरोहा में नगर पालिका परिषद परिसर में आयुष विभाग के मास्टर योगा ट्रेनर योगाचार्य नीतीश भारद्वाज द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:03 हो चुके हैं. प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर हाजिर है तरन्नुम, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी लेडी लिसनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और चुस्त दुरुस्त भी होंगी. और दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम उन महिलाओं को शामिल करेंगे जिन्होंने योग के क्षेत्र में ना सिर्फ अपने आप को सिद्ध किया बल्कि वो ना जाने कितनी महिलाओं के लिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, संवारने के लिए एक इंस्पिरेशन बनी, प्रेरणा स्रोत बनी. तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी की ताल को योग के मेल के साथ अच्छे से बिठा लिया, यानी तालमेल बिठा लिया, तो लाइफ का जो तालमेल जुड़ेगा ना वो कमाल का रिजल्ट देगा. तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये ट्रैक पहुंचाते हैं आप तक. और ये जो योग सप्ताह चल रहा है इसको आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और इसी से जुड़ी हुई बात करेंगे हम आज. और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बारे में बताएंगी और योग के बारे में क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं आपके लिए वो भी हम शेयर करेंगे. सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो रेनबो, तरन्नुम के साथ.

0: जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है योग को जान लेना, और आप जब उसको दिल के करीब कर लेंगे, अपने दिल के पास कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका दिल, दिमाग, तन, मन, सब कुछ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ लाइन पे हैं योगा अर्चना वर्मा, योगाचार्य हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं योग को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर। हेलो हेलो जी मैम, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी मैम।
1: हाँ
0: मैम, आपका प्रोग्राम स्वयं सद्धा में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद परंगम जी, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: मैम, सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगी क्या?
1: मैं अर्चना वर्मा हूँ, योगाचार्य हूँ, प्राणी कीलर, और अपनी संस्था को चला रही हूँ, इस पे कार्य कर रही हूँ।
0: जी जी।
1: उसके अलावा आध्यात्मिक कार्य में, अपने गुरुदेव के कार्य, सेवा के कार्यों में मैं जुड़ी हुई हूँ।
0: ओके, तो मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की लाइफ में योग कितना काम का है?
1: महिलाओं की लाइफ में योग का जो है बहुत अच्छा रूप है, और महिलाओं का पूरा जीवन जो है बहुत तरह के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो जो प्रारंभिक जीवन काल होता है, जब किशोरावस्था होती है, तब भी एकदम से हॉर्मोन्स के परिवर्तन से उतार चढ़ाव आने लगते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो उस समय भी अगर योग अभ्यास प्रारंभ कर दिया जाए तो एक अच्छी सी नींव बन जाती है, और उस बीते पूरा जीवन अच्छे से जिया जा सकता है स्वस्थ रूप में। तो योग जो है नारी को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये पूरा स्वास्थ्य पूरे जीवन अंतराल में प्रदान करता है। इसलिए योग की बहुत बड़ी भूमिका है, प्रारंभ से लेके जब मेनोपॉज होता है और जब ये पीरियड्स का अंत होता है, वो जो काल है उसमें भी पूरे जीवन काल में अगर योग अभ्यास नारी करती रहे तो मानसिक रूप से, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगी और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए कौन सा योगासन सबसे ज्यादा लाभदायक है?
1: देखिए, योग अभ्यास में जब हम प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, जब टीन एज की बात करते हैं, उस समय योग अभ्यास में हम लोग आसनों के तौर में पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कराते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा बच्चों को धामरी प्राणायाम अवश्य कराते हैं, जो मन के और भावनाओं को संतुलन में लाता है। आपका अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इसके अलावा योग निद्रा और छोटे छोटे ध्यान के पैकेज कराते हैं।
0: अच्छा।
1: फिर जैसे जैसे विकास की आयु होती है, जब उनका विवाह होता है, उस समय जो परिवर्तन का काल है, एडजस्टिंग करनी पड़ती है लाइफ के साथ और नया जीवन प्रारंभ होता है, तब बहुत से आसन जैसे भुजंग आसन है, केतुबंध आसन है, इन आसन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा ध्यान और प्राणायाम, योग निद्रा बेसिक तौर पे अवचेतन मन की ग्रंथियों का निवारण करती जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का दोष जो है ना अंदर संचित नहीं होता है और बिल्कुल समग्रता से जीवन जीते हुए उन्नति करते जाते हैं। और फिर इसी प्रयास से आगे बढ़ते हुए जब ये रजो निवृत्ति का काल आता है, वो भी 10-12 साल चलता है महिलाओं के जीवन में, उस समय जैसे नींद के इश्यू आ जाने लगते, नींद नहीं आती है, हॉट फ्लैशेस है, या स्मरण क्षमता है, या शरीर की सारी जो आंतरिक क्रियाएं, सारा सिस्टम डल होने लगता है, उस समय योग की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें भी आसन बहुत अच्छे से करे जाते हैं, तो इसमें भी हमारे चक्की चाल आसन है, पूर्व तितली आसन है, भुजंग आसन है, सेतुबंध है, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग प्राणायाम में प्राणाकर्षण कराते हैं,

0: उच्चाई कराते हैं, ये सब बहुत अच्छी भूमिका है जो पोस्ट स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और जो सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म कारण शरीर पे इसका पूरा पूरा प्रभाव आता है।
1: अच्छा मैम, महिलाएं जो हैं, जो लोग वर्किंग हैं या जिनके बच्चे स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, आजकल तो चलिए छुट्टियां चल रही हैं, और ऐसे में उनको बहुत जल्दी होती है, टिफ़िन भी बनाना है, उनको अपने घर के भी काम करने हैं, अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो क्या योग सिर्फ सुबह ही हो सकता है या किसी भी टाइम आप कर सकते हैं?
0: देखिए, योग जो सुबह करने का सर्वोत्तम काल है।
1: अच्छा,
0: उसके अलावा अगर योग सुबह नहीं आप कर पा रहे हैं तो खाना खाने के 4 घंटे के अंतराल पर आप योग अभ्यास कर सकते हैं।
1: 4 घंटे के अंतराल?
0: हाँ जी हाँ। तो उसके बाद आप जो है 20 मिनट 25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के
1: जी
0: शाम को भी कर सकते हैं अच्छे से।
1: तो मैम, अगर हम आपसे आपकी लाइफ में पूछें कि आपने कैसे, किससे प्रेरणा ली योग में जाने के लिए, योग करने के लिए, कितना टाइम आप दे पाती हैं अपनी फैमिली को, और ये जो योग के आप बता रही हैं ना कि क्रम चलता है, एक प्रोसेस चलता है कि अगर

0: बाद आप जो है 20 मिनट 25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के
1: जी जी
0: आप शाम को भी कर सकते हैं अच्छे से।
1: तो मैम अगर हम आपसे आपकी लाइफ में पूछें कि आपने कैसे किससे प्रेरणा ली योग में जाने के लिए, योग करने के लिए कितना टाइम आप दे पाती हैं अपनी फैमिली को, और ये जो योग के आप बता रही हैं ना कि क्रम चलता है, एक प्रोसेस चलता है कि अगर आप सुबह आपके पास टाइम नहीं है 4 घंटे के बाद आप योग कर सकती हैं, या जो और आपके घर में कुछ कभी काम वाम होता है तो कैसे कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे तालमेल बैठा पाती हैं आप?
0: बहुत अच्छा प्रश्न। तो योग हमारे जीवन में तो प्रारंभ से ही था, शुरुआत में मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की थी।
1: अच्छा।
0: और ईश्वर की शक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित थी। तो जीवन में फिर गुरु दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया।
1: अच्छा।
0: और उन्हीं की उसके बाद जो एक नियम निष्ठा मिली तो वो अभ्यास प्रारंभ कर दिए, और धीरे धीरे उन अभ्यास से क्या हुआ, योग जीवन में बिल्कुल उतर गया।
1: अच्छा।
0: और उससे पता चला कि ये आत्म विकास का साधन है, ये आत्म जागरूकता का साधन है, ये हमें होलिस्टिक अप्रोच पे हमारा डेवलपमेंट करता है, ये पता चला। फिर धीरे धीरे इसी क्षेत्र में शिक्षण भी प्राप्त कर लिया, बहुत से प्रशिक्षण करे, शिक्षा इसी में प्राप्त करके फिर सिखाने के मतलब तौर पे आ गए, और सबको सेवा के रूप में प्रशिक्षण देने लगे। और धीरे धीरे इसी प्रशिक्षण के माध्यम से खुद का भी विकास होता गया, और ये सारे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो समय निकालने की बात है, जीवन शैली बन गई, सुबह जागृति हो जाती है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक ही सेट हो गई अभ्यास के माध्यम से। तो पूरा 8 घंटे के समय पे भोजन कर लेते हैं, समय पे सो जाते हैं, सुबह प्रातःकालीन 3:30-4 बजे तक जाते हैं, और पूरा सब काम सिस्टमैटिक समय पे हो जाता है।
1: क्या बात है। तो, क्या क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को जो ये प्रोग्राम सुन रही है योग को लेकर?
0: संदेश तो बस यही है कि अगर आप जीवन को प्रफुल्लता के साथ जीना है, समग्रता के साथ जीना है, सब कुछ प्राप्त करना है, उन्नति करनी है, तो फिर योग को जीवन में अपना लें। थोड़ा ही सा समय दें, 20 मिनट 25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के करें और निरंतर करते रहें सब चार।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपने एक जैसे कहता ना कि कोई चीज सोई हुई थी अंदर, उसको आपने जगा दिया, और जो हमारी लेडी लिसनर्स हैं वो सुन रही होंगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ चलो अब नहीं सही, आज से ही शुरुआत करते हैं, योग को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद।
1: और फिलहाल 12:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धांत अरुण भाई आपके साथ, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, योग को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर चुकी हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो भी योग की तरफ ध्यान दें, यानी ध्यान से ध्यान की तरफ जब हम लेकर जाते हैं किसी को तो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। फिलहाल वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक, और नेक्स्ट हमारे साथ कौन रहेंगी इसको जानने के लिए सुनते रहिए रेनबो द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

0: जी हाँ बिल्कुल, शहर की लड़कियां ऐसी ही हैं हमारी, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल्दी हैं और कह सकते हैं कि एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। 12:22 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और 2 दिन बाकी हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपके पास सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपके पास है। और अब जो आजकल की जो थीम है, यानी इंटरनेशनल योगा डे की 21 जून वाली जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो अगर आप चाहती हैं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहें, एकदम लड़की की तरह लगें, तो इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल करना होगा। फिलहाल हमारे साथ अगली जो हमारी कह सकते हैं कि वो योग के लिए प्रेरित करने वाली हैं, योग टीचर हैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में।
1: जी धन्यवाद
0: मैम, थोड़ा सा अपने बारे में आप परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: जी मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ में।
0: मैम सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है, और जैसा कि ये जो प्रोग्राम है ये हम योग को अपनी ज़िंदगी में आप कैसे शामिल करके अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं को जो अभी बहुत ही कम एज में हैं?
1: जी उन महिलाओं को जो बहुत ही कम योग एज में हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा वो सेडेंट्री लिविंग एक जगह हो जाती है, रह के बैठ करके कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या लैपटॉप वगैरह पे, एक का आजकल चलन चला है जिसमें कि आप अगर बैठे हो लंबे समय तक काम कर रहे हो, जैसे ज्यादातर इंजीनियर्स वगैरह हैं या फिर जो भी आप लोग में से कोई भी जो सिटिंग वाला काम ज्यादा करता है वो 45 मिनट्स में एक हल्का वॉक ले ले, 10 मिनट्स का वॉक ले करके आके फिर अपनी सीट पे बैठ जाए, या फिर बैठे बैठे जो आप अपने रिलैक्सेशन, जो आप शरीर में जो जकड़ाहट होती है उसको रिलैक्स करने के लिए वाइब्रेट करके एक योगा का अभ्यास है जो कि 10 मिनट्स का है, आप सीट पे अपने बैठे बैठे काम करते हुए, जिससे कि फ्रोजन शोल्डर या फिर जो आजकल फिंगर्स से काम करते हैं उस पे, तो फिर ये सारे जो फिंगर्स के लिए रिलैक्सेशन, गर्दन

0: और आंखों के लिए रिलैक्सेशन के जो एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैठे बैठे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ज्यादा सेडेंटरी लिविंग, बैठ बैठ के खाना, और इसकी वजह से पीसीओडी वगैरह का चलन आजकल गर्ल चाइल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर एडोलेसेंस में भी है, या फिर यंगर जैसे फीमेल ग्रुप में भी बहुत ज्यादा है। उसके लिए योगा का अभ्यास जो है वो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ अगर डेली वो 30 मिनट से 45 मिनट तक अगर योगा का अभ्यास करते हैं मॉर्निंग में उठकर एक रेगुलर टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उस समय उसके आधे घंटे बाद करते हैं या उसी समय करते हैं, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है और जो मेंटल रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, वो उसकी वजह से उनकी पूरी साइकिल गड़बड़ हो रही है।
1: अच्छा, मैं
0: जो साइकिल डिलेड हो रही है।
1: अच्छा मैम, एक चीज़ है कि क्या आप योग भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं? आप योग क्रियाएं भी करते हैं लेकिन साथ ही साथ आप पैकेट बंद जो फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, उनको अगर आप खाते रहें और योग भी करते रहें तो क्या इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा?
0: नहीं नहीं, इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? जो जीवन शैली में परिवर्तन करना है ना, उसमें आपका डेली रूटीन, आप जैसे आयुर्वेद बताता है दिनचर्या रात्रिचर्या का पालन करना है, फिर इसके अलावा आपके भोजन का जो खाने का ट्रेंड है उसको भी टाइम पे खाइए, और नेचुरल फ्रूट्स लीजिए। नेचुरल मतलब जो भी नेचुरल फल सब्जी है सब कुछ आप प्राकृतिक चीजें लीजिए, पैक्ड चीजें या बंद जो है वो सब में प्रिजर्वेटिव्स है और उसमें ट्रांस फैट्स है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी, ओबेसिटी बढ़ाती हैं। तो फिर आपका जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपका हार्मोन भी इम्बैलेंस होगा। तो सिर्फ आपका योग करने से ही नहीं होगा, और फिर ज्यादा मोटे लोगों को योग करने में भी तकलीफ होती है। तो आप जो है अपने डाइट को भी रूटीन में लाना है, स्लीप पैटर्न को भी अपने ठीक करना है, टाइम पे सोना। आजकल बच्चे रात में 2-2, 3-3 बजे रात में सोते हैं, उससे बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो फिर वो कॉर्टिसोल फिर ओबेसिटी को ही बढ़ाता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, तमाम जो आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है। योग निद्रा का पालन करें, टाइम पे सो जाएं, 10 से 2 बजे की नींद बहुत आवश्यक है। 10 से 2 के बीच में जो लोग सो लेते हैं उनकी उनके में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है। सिर्फ योग करेंगे ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ करेंगे तभी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से उनको मुक्ति मिल पाएगी।
1: अच्छा, एक चीज मैम पूछना चाहेंगे कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको फोन की कह सकते हैं ऐसी आदत पड़ी है कि मम्मी कितना भी कह लें, पापा कितना भी कह लें, लेकिन उनकी जो आदत है वो कहती है कि अगर हम फोन रख भी देते हैं तब भी हमें नींद वही आती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, 1 बजे आती है। तो क्या कोई ऐसी योग क्रिया है जिससे इस चीज पे जो कह सकते हैं एक लत बन गई है, गलत आदत पड़ गई है, क्या उससे दूर हुआ जा सकता है? क्या ऐसा कोई योग है जो हम रात में सोते टाइम बच्चों को प्रेरित करें कि ये जो योग क्रिया है उसे कर लो तो तुम्हारी नींद जो है वो अच्छी हो जाएगी? क्या ऐसा कोई एक योग क्रिया है?
0: जी, आप जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा मोबाइल की लत है, तो पहले तो पेरेंट्स ही छोड़े मोबाइल का।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल का यूज पेरेंट्स छोड़ेंगे, पेरेंट्स को कम देखेंगे ना बच्चे की, कम कर रहे हैं ये यूज, तो बच्चे अपने आप छोड़ देंगे। फिर सबसे पहली बात है उनका एक सोने का टाइम फिक्स करो। अगर वो 10 बजे रात को सोते हैं तो 8 बजे तक उनको स्क्रीन से अलग कर देना है, ना टीवी देखना, ना लैपटॉप, ना फिर मोबाइल, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट होती है ना, ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन जो होता है, जो कि स्लीप हार्मोन होता है, उसको हैम्पर्ड कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। तो आप 2 घंटे पहले आप उनको अच्छे से खाना वाना खिला करके उस समय आप सोने को। अब जब वो सोने जाता है बच्चा, मान लीजिए 10 बजे बेड पे जाता है, तो उसको फिर आप थोड़ी देर के लिए ओम चैंटिंग करने के लिए कहिए, भ्रामरी प्राणायाम करने को कहिए, है ना, और थोड़ा सा मेडिटेशन, मतलब अपने आप में शांत बैठने को करे। दिन भर में उसने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सारी सोच डेवलप करने को उसको बोले, और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर योग निद्रा थोड़ा सा अगर वो सीख पाए बच्चा, तो योग निद्रा से उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। और 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है, बिना ब्रेक के, जिसमें कि आप एक बार भी यूरिन करने के लिए भी ना उठे, तो वो अच्छी नींद मानी जाएगी। फिर उसका हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा, फिर वो उसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितनी चिड़चिड़ाहट है, वो सब खत्म होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस बच्चे का।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
1: और 12:29 हो चुके हैं और हमारे साथी योगा आचार्य डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, और उन्होंने बताया कि अगर आप

अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहती हैं, फिट रखना चाहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम से आपको जो दूरी है वो बनानी होगी, स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, तभी आप एक खूबसूरत परी की तरह नज़र आ सकती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और आपको वक्त बता दें, 12:36 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं अपने ज़िंदगी में योग को शामिल करके एक अच्छी और बेहतर लाइफ को जी सकती हैं। बहुत सारी योगाचार्य हैं जिनसे हमने आपसे बात कराई, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ेंगी इस प्रोग्राम में। आपको सुनते रहना होगा रेनबो।

0: 12:40 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और अभी हमने डॉक्टर ऋचा निगम से हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने बात करी योगाचार्य जी डॉक्टर अर्चना वर्मा थी, उसके बाद हमने बात करी डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी थी, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में योग को शामिल करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे चमत्कारी फ़ायदे होते हैं जिनको हम और आप हज़ारों करोड़ों रुपये की दवाएँ खा कर भी नहीं पा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर और हैं, और वो जो हैं वो भी योग इंस्ट्रक्टर हैं, और उनका नाम है डॉक्टर ऋचा निगम जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार। मैं सभी श्रोतागणों को अपना नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मानना ये है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सबसे पहले योग के लिए जागरूक होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: ठीक है। तो मेरा नाम योगिनी ऋचा निगम है
0: जी।
1: और मैं लगभग 25 साल के रिसर्च लेडीज हेल्थ पे करने के बाद में 2013 से अपना सेंटर बालागंज लखनऊ में चला रही हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो जो निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर के नाम से है, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम सभी पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो लेडीज के हेल्थ पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा मानना रहता है कि अगर एक नारी शिक्षित है, अगर एक नारी स्वस्थ है, तो वो तीन पीढ़ी को स्वस्थ करती है और तीन पीढ़ियों को आगे अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए वो पूरी तरह से अग्रसर हो सकती है, क्योंकि उसी को आगे चल के बच्चे को जन्म देना है, तो फिर वो आगे और भी पीढ़ी जो आएंगी वो भी स्वस्थ करने के उनको शिक्षा दे सकती है।
0: तो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसा कि महिला कहती है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो जो कह रही है कि हम स्वस्थ हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे जानेगी वो महिला?
1: देखिए, हम लोग होलिस्टिक योग सिखाते हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो थ्री डायमेंशनल अप्रोच का जो है वो विधा लेते हैं, जिसमें कि हमारा ये मानना है कि एक नारी तभी स्वस्थ कहला सकती है जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और इमोशनली बैलेंस हो। अगर ये तीनों चीजें एक नारी में है तो वो अपने आप को स्वस्थ कह सकती है, क्योंकि कोई भी योग की बात करता है तो आजकल इतना भ्रांति फैल गई है कि किसी को अगर योग के बारे में बोलो तो बोलेंगे अरे मैं तो पतली हूँ, मुझे योग की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ कह रही हैं अगर आप पतली हैं? क्योंकि आप ये समझिए कि पतला होना, मोटा होना, ये आपके स्वस्थ होने का पैमाना नहीं होता है। आपके स्वस्थ होने का पैमाना है कि आप किसी भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा नहीं रही हैं, चीजों को जो भी है उसके रिएक्शंस को सोच समझ करके आप लोगों को दे रही हैं, या फिर आप अपनी डाइट जो ले रही हैं वो संतुलित आहार हो, आपका जो भी सात्विक भोजन है वो आप कर रही हैं, तो घर पे आप जो भी एक्ट कर रही हैं, बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं, उनके उनसे आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, या हस्बैंड के साथ में बेचारा जो थका रहा दिन भर के बाद आता है, आप उनके साथ बात करने के बजाय शिकायत का पिटारा खोल के बैठ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब खुद में संतुष्ट होंगी तो ही आप दूसरे को संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहना क्या संशय यहाँ पर कि अगर आपके बैंक बैलेंस में जीरो है तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते या किसी को बांट नहीं सकते।
0: बिल्कुल,
1: तो जो खुशियां आपको बांटने के लिए आप सोच रहे हो कि लोग परिवार में सब मुझे प्यार करे, सब मुझे सम्मान दे, तो क्या आप वो कर पा रही हैं? आप खुद को सम्मान दे पा रही हैं? आप खुद को प्यार कर पा रही हैं? यहाँ पर

0: ये समझना जरूरी है कि हर लेडी को सेल्फ लव सीखना चाहिए, और सेल्फ लव वो तभी सीख पाएगी जब वो अपने ऊपर थोड़ा फोकस करेगी, क्योंकि नारी परिवार में सबके ऊपर तो ध्यान दे देती है, पर अपने बारी जब आती है तो अपने को सबसे पहले इग्नोर कर देती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारी ये मुहिम बस इसीलिए है कि हर नारी जागरूक हो कि वो अपने लिए ध्यान देना शुरू करे, और इसी के उस पर हम लोग मेंटल पे भी ध्यान देते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं लोग लेडीज की, उनके पर्सनल मैटर्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इवन हमारे पास जो लेडीज आती है उनको बच्चे कैसे पालने हैं उनको भी सिखाते हैं, ताकि वो बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे पाए। पालने का मतलब चूचू पोटी वगैरह साफ करना नहीं, इवन वो बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, जो बात वो कह रही है वो किस वे में कहना चाहिए, अपनी बात को रखने का एक तरीका। फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस जो भी आती है उसमें आपका योग में हम लोग अष्टांग योग को लेके चलते हैं, इसमें कि आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग जो है वो कवर करते हैं, और बहुत ही इजी वे में कि आप दिन भर घर में जो काम कर रही हैं उसी में ही आप योग को धारण कर लीजिए। आपको पता भी नहीं चले कि आप एक योग मैट बिछाएंगे तभी आप योग हो, ऐसा नहीं, आप योग करिए नहीं, योग को धारण कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये हमारा होलिस्टिक योग जो है थोड़ा वाइड लेवल पर है, जिसमें कि हम लेडीज को धीरे धीरे करके मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिससे कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उससे वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रही हैं। तो अभी तो यही हमारा उद्देश्य है इस योग संस्था को चलाने का।
1: तो मैम, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एजिंग शुरू हो जाती है महिलाओं में 35 के बाद, कहा जाता है डलनेस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, और जो तेज होता है चेहरे पे, जो एक स्पार्क होता है, जो नूर जैसे कह सकते हैं, वो कम होने लगता है, क्या योग करके वो चीज़ों को मेंटेन रखा जा सकता है?
0: बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन योग करके नहीं, योग को धारण करके रखा जा सकता है। आप ये सोचिए कितना भी आप मेकअप कर लीजिए या कितना भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके स्ट्रेस है माइंड में आपके चेहरे पे वो नूर आ ही नहीं सकता है।
1: बिल्कुल
0: जब
1: सही।
0: आप रिलैक्स होंगी तब आपके बॉडी के ऑर्गन सही से काम करेंगे, आपके हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रेट होंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो माइंड तक जाएगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो रहेगा आपके अंदर तो आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, और आप स्ट्रेस भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं जो स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो चेहरे पे नूर जो अंदर से आता है, ना कि फेशियल करा करके या कुछ से, तो योग को जब आप धारण करती हैं, यानी कि आप अपने जो भी शब्द कह रही हैं वही सोच रही हैं और वही उसका जो है हो रहा है, तब आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल केवल योग से ही आ सकता है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी, पर जिम जाने पे आपकी फिजिकल फिटनेस बन सकती है, वॉक करने से आपके जो है वो एक्टिवनेस आ सकती है,
1: मेंटल
0: पर योग को, हाँ जी बताइए,
1: मेंटल फिटनेस जो है वो आपको योग के माध्यम से ही,
0: एग्जैक्टली अब फिजिकल फिटनेस आप मेंटल फिटनेस भी आपको योग के साथ मिलेगी, और जब आपके आप मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट करेंगे आप अपने इमोशंस पे अपने आप ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे।
1: मैम
0: ये तो है,
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर महिलाएं चाहती हैं खूबसूरत दिखना और खूबसूरत लगना तो वो ये फेशियल और ये सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि वो ना करें, लेकिन नेचुरल तरीके से करें, लेकिन अगर आप योग अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो फिर आप ऑलरेडी खूबसूरत लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: इसके लिए हम लोग इस समय एक कैंप भी चला रहे हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका 23 तारीख तक चलेगा, हमारे सेंटर पे भी है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो किसी को अगर संपर्क करना है हमसे तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, लेडीज केवल सिखा रहे हैं, जिसमें कि आपका नंबर ये नोट कर लीजिए कि 8577827023, ये हमारे निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर का ऑफिशियल नंबर है, 8577827023। आप इस पे संपर्क करके और इस कैंप में इनरोल करा सकते हैं।
1: निशुल्क है ये? निशुल्क है ये?
0: बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है, केवल आपको हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना होगा, ये व्हाट्सएप पे भी नंबर अवेलेबल है। अब जिसने नहीं नोट किया वो एक बार फिर मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, 8577827023।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, और योग के बारे में
0: धन्यवाद, आपके जरिए हमारी बात भी बहुत सी महिलाओं तक पहुँच पाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस उद्देश्य में सभी महिलाएं आगे आए, ताकि सभी जागरूक हो, सभी स्वस्थ हो, सबके परिवार खुशहाल रहे, और सबके बच्चे एकदम अपनी माँ को एक आइडियल रूप में देखे जैसे वो चाहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, और हमारे साथ ऋचा जी थी और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप चाहती हैं वाकई अंदर से खूबसूरत होना, वाकई नूरानी होना, तो फिर आप अपनी जिंदगी में योग को धारण कर लीजिए।

0: जी हाँ, अगर आप इसी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं, खूबसूरत लगना नहीं बल्कि दिखना चाहती हैं, तो फिर आप अपने ज़िंदगी में योग को शामिल कर लें, योग को धारण कर लें, तो आप ज़िंदगी को बहुत ही हेल्दी तरीके से जी सकती हैं। और फिलहाल हमारे साथ लाइन पर हैं प्राची जैन जी, जो इस बारे में और ज़्यादा बात करने वाली हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन बात ही इतनी विस्तार की है और ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है योग के बारे में, इतना विस्तार है इसमें कि अगर इसमें घंटों बातें की जाएँ तो भी कम है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक छोटी सी छोटी योग क्रिया को अपनी लाइफ में शामिल कर लेती हैं, तो फिर आपकी लाइफ एकदम वाह बन जाती है, कमाल की बन जाती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सद्धा में। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए।
1: जी, मेरा नाम प्राची जैन है और मैं एक योग प्रशिक्षिका हूँ। पिछले 10 साल से योग सिखा रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, और महिलाओं को, बच्चों को खासकर जागरूक कर रही हूँ योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति।
0: तो मैम, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाएं परिवार में सबका ख्याल रखती है, अपने पति का, बच्चों का, सास ससुर का, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं, अपने आसपास के माहौल को खुश रख सकती हैं, और अपने परिवार का और अपने बच्चों का

0: बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती है।
1: और मैम दो मिनट आपको रोकना चाहेंगे, दो सेकंड के लिए बल्कि, जो महिलाएं 50 क्रॉस कर चुकी हैं, 50 की उम्र पार कर चुकी हैं, उनको कौन से ऐसे योग हैं, योग क्रियाएं हैं जो अपनी जिंदगी में जरूर धारण करना चाहिए?
0: तो जो 50 से ऊपर की महिलाएं हैं, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में प्राणायाम को जरूर उतारना चाहिए। प्राणायाम हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और उसके साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं हैं जो हमको करनी चाहिए। बहुत इंटेंस वर्कआउट में, योग आसन में अगर हम ना जाएं 50 से ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। सूक्ष्म व्यायाम है उनको जीवन में उतारिए, और सूर्य नमस्कार को अगर हम जिंदगी में ला सकते हैं, अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार 12 आसन को मिलाकर बना है और इन 12 आसन में हम हर तरह के आसन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, सारी तरह के पोस्चर्स ऐड हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार अगर हम कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें। और सूर्य नमस्कार को करने की भी कई विधियां हैं, जैसे अगर आप मैट पे नहीं कर पाते हैं तो आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन है सूर्य नमस्कार के, और जो कि एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस में ही हम लोगों को सीखनी चाहिए।
1: अच्छा, तो मैम इसमें योग क्रियाओं के साथ साथ खान पान पे कितना ध्यान दें वो महिलाएं जो 50 प्लस हैं?
0: खान पान पे तो देखिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, पूरा पोषण लीजिए, अपने भोजन में फाइबर को इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन एक हमारे जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रोटीन को ऐड करना है। हेल्दी फैट्स को ऐड कीजिए, बहुत सारे लोग फैट को छोड़ देते हैं, फैट नहीं लेना है, नुकसान करता है, लेकिन हेल्दी फैट जैसे हम नट्स खाते हैं, नट्स के रूप में थोड़ा हमको देसी घी खाना चाहिए, तो हेल्दी फैट्स को लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोड़ देते हैं पतले होने के लिए, मोटापे से बचने के लिए, तो एक लिमिट में कार्ब्स भी बॉडी को बहुत जरूरी है। तो पोषित आहार लीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, ज्यादा चिकना तेल मत खाइए, और जो चीजें बेसिक प्रिकॉशंस है भोजन में कि चीनी, प्रोसेस शुगर नहीं खाए तो बेहतर है, मैदा का सेवन ना करें तो बेहतर है। बाकी आप पूरा पोषण लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, फलों को जरूर इंक्लूड कीजिए अपने भोजन में। और समय भोजन क्या खाना है इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि किस समय पर भोजन करना है वो अपने एक रूटीन को सेट करना जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि दिन ढलने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, तो अगर पॉसिबल है तो ऐसा फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप शुगर के पेशेंट है या किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित है तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये टाइम डिसाइड करना चाहिए।
1: मैम बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और 12:57 हो चुके हैं, प्रोग्राम स्वयं सदा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और आज का सवाल आपसे ये है कि जिंदगी में आपको पहली खुशी कब मिली थी? आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। अयोध्या में निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान वीरों वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारी डबल इंजन की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना ऊदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएससी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने गठित की। तीनों बटालियन में केवल बेटियां ही भर्ती होंगी, ये भी सरकार ने तय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है। मैं कह सकता हूं SIT जांच दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। मैं सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी अनर्गल टिप्पणी व बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हों। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो SIT को उपलब्ध करवा दे, SIT जांच करके देगी। उन्होंने कहा कि लोग अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस चालक को नींद आने के कारण पलट गई। जानकारी के अनुसार बस में करीब 100 यात्री सवार थे। हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस बनारस से दिल्ली जा रही थी, सुबह चालक को नींद आने से यह हादसा हो गया। घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भेज दिया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
2: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: जी 1:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम हो टू पर तेरी बात लेकर हाजिर है तरन्नुम। और सवाल आज का ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में पहली खुशी कब मिली थी। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यानी 1:10

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मराद तकसीम करेंगे। वो अमली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाज़ाफ्ता अफरादी क़ुव्वत में ज़िम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत रियासत के 17 अजला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कवरेज को बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौलिया से मिली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वजीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौलिया से मिली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी न करें। वजीर आला ने कहा,
2: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक की तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इकदाम पर रोशनी डाल रहे हैं।

0: 80 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यूपी एटीएस ने बुलंदशहर जिले से दो मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 2-3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

जी एक बजकर 16 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम होटो पे तेरी बात तरन्नुम में आपके साथ और मेरे साथ बहुत सारे मेल हैं पढ़ेंगे और आपसे पूछा हमने कि आपको लाइफ में सबसे पहली खुशी कौन सी मिली, आप हमसे शेयर कर सकते हैं।

1:23 हो चुके हैं और अब जल्दी से मेल पढ़ रहे हैं. और आज हमने सवाल ये किया है कि कौन सी खुशी, मतलब लाइफ की पहली खुशी आपको कब मिली थी. और इसके साथ हमारे पास बहुत सारे मेल आ चुके हैं. विवेक शर्मा जी का मेल आ गया है, केशव नगर नेरा आशीष मिष्ठान भंडार दुदौली मार्ग लखनऊ से लिख रहे हैं कि मुझको सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी जब मेरी शादी हुई थी. क्या बात है. और दूसरी इनको खुशी जब मिली जब इनकी धर्म पत्नी को बेबी हुआ था. अच्छा, मतलब इनको हुआ था और धर्म पत्नी को हुआ था. और लिख रहे हैं आई लव हर. और इतना अच्छा ये लगा हमें मेल जब आपने ये बताया कि आपकी खुशी आपको पहली जब मिली जब शादी हुई, दूसरी जब मिली जब आपको बच्चा हुआ बेबी हुआ, और तीसरी खुशी आपने लिखी है आई लव हर. और ये जो लाइन आपने लिखी है ना कि आई लव हर, इससे ये साबित होता है कि आप अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं. और ऐसी ज़िंदगी जो है ना, बस ऐसी ही आपकी ज़िंदगी कटती रहे पत्नी के साथ, आपके प्यारे से बच्चे के साथ. मेरी यही आपको शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं. नेक्स्ट मेरे पास जो मेल आ गया है, रामराज जी का मेल आ गया है. होटो पे तेरे बाद, ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से लिख रहे हैं रामराज राजू भानु.

शंकर भैया, बंटी यादव, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से तरुण बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। रामराज जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, क्या बात है। आपके जो आशीर्वाद है ना, बस ऐसे ही बना के रखिएगा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। रामराज जी आगे लिख रहे हैं कि हमको पहली बार खुशी तब मिली थी, वैसे तो बहुत सारी खुशियाँ उनको मिली है, लेकिन पहली खुशी उनको जब मिली थी जब इन्हें रेडियो पर पोस्ट कार्ड भेजते थे। अब पोस्ट कार्ड मिल नहीं रहे हैं, जब रेडियो पर ईमेल की अब सुविधा हो गई है। अच्छा, पहली बार इनको खुशी तब मिली थी जब इन्हें रेडियो पर अपना लेटर भेजा था, पोस्ट कार्ड भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और मेरे पास शिवपूजन लाल जी का भी मेल आ गया था। हेलो तरनु मैम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं शिवपूजन लाल जी। और विलेज सानी गावा लखीमपुर खीरी से हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। टॉपिक पे बोल रहे हैं कि मुझे पहली खुशी मेरे स्कूल टाइम में मिली थी। अच्छा, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, कितना अच्छा दौर होता है वो कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, मम्मी बहुत अच्छे से उसको ड्रेसअप करती हैं और कभी कभी बालों में तेल वे लगा के भी भेजा जाता था और कहा जाता था देखो अच्छे से बोलना, गुड इवनिंग करना, गुड मॉर्निंग करना टीचर्स को, और जाके सबको अच्छे से हाय हेलो करना। और वो जो डर था, वो जो एक हिचकिचाहट होती थी, वो शायद सोच लो तो लगता है कि अरे कितने, मतलब कितने सीधे साधे लोग थे हम लोग। लेकिन फिलहाल आपने हमें भेजा, आपने बताया कि तब आपको अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें भेजा। और जॉन डिकेस्ट्रो जी का मेल आ गया है सहारनपुर से। इतनी जल्दी इन्होंने मेल कर दिया है ऑटो पर तेरी बात के अलावा हॉट मेल के लिए। और आपसे यही कहना चाहेंगे जॉन डिकेस्ट्रो साहब कि आप इस प्रोग्राम में अगर हमें मेल भेजते और आज का जो टॉपिक है उस पर अगर आप हमें आंसर करते तो बहुत अच्छा लगता। और आज का जो टॉपिक है वो हमने ये लिया है कि आपको लाइफ में पहली खुशी कब मिली थी, अगर आप इस पर हमें भेजेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। विवेक शर्मा जी का भी मेल आ गया है मेरे पास और इनका मेल हम शामिल कर चुके हैं। रोशनी रावत जी का मेल आ गया है और लिख रही हैं नमस्ते तरन्नुम दीदी, आप कैसी हैं? और नमस्ते रोशनी, हम अच्छे हैं। प्रोग्राम इनको लाजवाब लग रहा है, बिंदास लग रहा है और ये सुबह से मैं याद कर रही थी वैसे मैं आपको हमेशा सुनती हूँ मगर आज स्पेशल लग रहा है कुछ। अच्छा, स्पेशल लग रहा है, मतलब क्या स्पेशल लग रहा है ये आपने नहीं बताया। चंडीगढ़ में हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं, लिख रही हैं ज़िंदगी में पहली खुशी इनको तब मिली थी जब इनका 12th का रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरे नंबर मेरे चाचा की लड़की से ज़्यादा थे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लड्डू बंटवाए थे। लड्डू तो बटेंगे ही भाई, नंबर आपके अच्छे आए थे। और होता भी यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और मेहनत का जब फल मिलता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है उसको आप जो वर्ड्स हैं ना, उसको जो अल्फाज हैं उनमें आप पिरो नहीं सकते। वो जो खुशी का एक एहसास होता है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मेल किया। और महेंद्र दीपन जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मेल करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से अपने जो मेल हैं हमें भेजते हैं। लिख रहे हैं कि राजस्थान के नागौर ज़िले के गांव रूड़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज का विषय इनको भावुक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। आपने पूछा कि ज़िंदगी में पहली खुशी कब मिली, तो मेरा जवाब यही है कि मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मेरी प्यारी बिटिया ने इस दुनिया में कदम रखा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी है। उसके आने से मेरा घर खुशियों से भर गया और मेरे जीवन का हर संघर्ष उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हल्का हो जाता है। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरे जीवन की असली खुशी है। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया महेंद्र दीपन जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप दुनिया में अपने जैसा किसी को देखते हैं, आपका एक हिस्सा जब इस दुनिया में आता है, एक अंश इस दुनिया में आता है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके कदमों में ला कर रख दें। और बिल्कुल आपने सही लिखा कि सच्ची खुशी आपको तब मिली होगी, बिल्कुल हम ऐसा मान सकते हैं। अब मेल आ गया है नीलू शर्मा जी का और लिख रहे हैं कि थोड़ी सी शेर व शायरी इन्होंने की है और पूछ रही हैं कैसी हो तनु। बिल्कुल अच्छे हैं नीलू जी। और आगे लिख रही हैं कि मुझे पहली बार खुशी तब मिली थी जब हमारा फ़ोन जीमेल में लगा था। अच्छा, आपका फ़ोन जीमेल पे लगा था। और अनुपमा जी से बात हुई थी और दोबारा मुझे तब खुशी मिली थी जब मैं अपने प्रिय दोस्तों से मिली थी, वंदना और पीहू जी से, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और सच में ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, खुशी आपको तब भी मिल सकती है जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अगर उसका पूरा हिस्सा नहीं पा सकते तो कुछ हिस्सा आपको ज़रूर जो ईश्वर है वो आप तक पहुंचा देता है। अगर ऐसा आपने महसूस किया हो तो आप ज़रूर सोचिएगा कि तरन्नुम ने जो बात

ही है, उसमें कितनी सच्चाई है। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ में शिद्दत से लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर हासिल कर लेते हैं, और ऐसा होता है 101%। सतीश अनिजा जी का मेल आ गया, बहुत ही प्यार से मेल करते हैं। सतीश जी लिख रहे हैं, नमस्कार तरन्नुम बैना जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी कैसे हैं आप? लिख रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी की सबसे पहली खुशी तब मिली थी जब मैं 10वीं की क्लास में टॉप पर रहा। क्या बात कर रहे हैं आप, टॉप किया आपने। और 15 अगस्त को स्कूल में तिरंगा फहराने के बाद मुख्य अतिथि ने मुझे 100 रुपये देकर सम्मानित किया और दूसरे बच्चों को मेरा नाम लेकर मुझे प्रेरणा स्रोत बताया। घर में भी शाबाशी मिली और गांव में हर तरफ मेरी चर्चा हुई। भाई जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े आपके पास काम है कि आपने टॉप किया और साथ ही साथ आपने 15 अगस्त में जब तिरंगा फहराया तो मुख्य अतिथि जो भी आए हों उन्होंने आपको सम्मानित किया। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। और ऐसा होता है जब हम अपने देश को सम्मान करते हैं, हम अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको सम्मान देते हैं तो फिर हमें भी सम्मान ही मिलता है, क्योंकि लाइफ का यही नियम है, वाइस वर्सा होता है। जब आप कहते हैं ना कि एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, तो हमेशा क्यों ना हम अपनी लाइफ में लोगों को रिस्पेक्ट देना लगातार बस शुरू ही कर दें। मतलब रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं से भी इग्नोर ना करें, भले ही कोई हमसे कैसे भी बात करे, लेकिन अगर हम अपने रिस्पेक्ट को बरकरार रखेंगे और जो खुशियाँ हैं उनको अगर बांटते चलें तो फिर जिंदगी में हमें भी रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, इज्जत मिलती रहेगी और खुशियां भी हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। सुधाकर जाधव जी का है मेल मेरे पास, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सांचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। और लिख रहे हैं कि मेरे को खुशी जब हुई क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस को लगा, जब मेरे घर में टाइम आए और बहुत इनकी जो मैसेजेस होते हैं, इनका जो मेल होते हैं इतने खूबसूरत होते हैं क्योंकि इनको हिंदी उतनी नहीं आती है और टूटी फूटी जो लैंग्वेज आप लिखते हैं ना सुधाकर जी, इतना अच्छा लगता है, सच मानिए इतनी दिल को खुशी मिलती है कि आप हमसे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं रेनबो के साथ और इतनी प्यार से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, मेल करते हैं, आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जाफराबाद में क्या बोला जाता होगा, कैसे हो आप ये तो मैं नहीं पता, किम छो बोलते होंगे या फिर आप कैसे हैं ये बोलते होंगे या फिर काजसला ऐसे बोलते होंगे। तो जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने मेल किया है और इनका कहने का जो मेल मेल का जो लब्बो लो आप जिसे कहते हैं जो विस्तार है वो यही है कि इनको खुशी जब मिली जब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी और जब इनको घर में बहुत ज़्यादा खुशी आई और बहुत ज़्यादा आनंद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से हैं, लिख रहे हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, आपको भी प्यार भरा प्रणाम। विजयपाल जी कैसे हैं आप? और लिख रहे हैं कि हमें सबसे पहले खुशी जब मिली थी जब हमने अपने दोस्त की मुसीबत में मदद की थी, वास्तव में वो हमारी सच्ची खुशी थी। ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विजयपाल जी, खुशी असली तभी मिलती है जब आप किसी को कुछ देते हैं और वो जो खुशी होती है ना उसको मतलब सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि चेहरे से महसूस करते हैं, उसको आप दिल से महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ बांटते हैं तो वो जो खुशियाँ होती हैं ना उसका आंकलन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमेशा दूसरों की मदद करके जो खुशी हासिल होती है उसको तो अल्फाजों में पिरोना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हैं, सादर प्रणाम कर रहे हैं। पिंकू सोनी जी हैं, आपको भी प्यार भरा प्रणाम। और लिख रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपनी खुद की शॉप खुलने में मिली थी। मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ, मैं कुछ नाम लेता हूँ, कुलदीप जी, उधौली, आकाश जी, मुरारपुर, रिंकी पिंकी जी, गुलाबशाह जी और सभी लिस्टनर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अब वक्त हो गया है कि एक बहुत सा सूदिंग सा ट्रैक आप तक पहुंचाएं या फिर एक बहुत सा ढिंचक सा ट्रैक आप तक पहुंचाएं। एक काम करते हैं, एक जो सूदिंग नंबर है वो बाद में प्ले करते हैं और जो ढिंचक ट्रैक है वो अभी प्ले कर देते हैं, ठीक है?

0: We miss you, Katrina.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: If you're sleeping in a position like this.
1: और 1:43 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होटो पे तेरी बात, और तरन्नुम आपके साथ है, और मेरे साथ बहुत सारे मेल हैं जो बिल्कुल पढ़ने के लिए हम मतलब क्या कहें उतावले हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जो सच में दिल को छू जाते हैं। जैसे कि ये जो मेल हमें भेजा है चंद्रमोहन मिश्रा जी ने, लिख रहे हैं नौरंगपुर लखीमपुर से, सबसे पहले आपको इस कड़कती धूप में आपकी मेहनत को नमस्कार है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना एहसास किया उसके लिए। और साथ ही साथ आज का मुद्दा बहुत ही प्यारा है।

मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में जो पहली बार इनको खुशी मिली वो वही होती है जो बिना मांगे और बिना किसी उम्मीद के अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अक्सर हम जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके मिलने पर उतनी खुशी नहीं होती जितनी उस वक्त होती है जब अचानक जिंदगी हमें कोई खूबसूरत तोहफा दे दे, जब किसी बेहद ख़ास इंसान का निस्वार्थ साथ मिल जाए या फिर किसी मोड़ पर कोई ऐसी कामयाबी हाथ लग जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो, तो सच मानिए दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे जीवन में भी ऐसी ही एक अनपेक्षित खुशी आई थी, उसने मेरी पूरी दुनिया को सकारात्मकता से भर दिया। वो पल आज भी जब जब यादों में आता है तो चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखेर जाता है। ना कोई उम्मीद थी ना कोई सवाल था, जिंदगी का वो पल सचमुच बेमिसाल था। और चंद्रमोहन मिश्रा जी, इतना खूबसूरत आपने में मेल किया है कि जब हम पढ़ रहे थे आपने में मेल किया तो उसकी जो गहराई है उसको हमने एक बार नहीं बल्कि तीन बार पढ़ा और इतनी अच्छी आपने बात लिख के भेज दी कि जिस बात को हम अपने लिसनर से कहना चाह रहे थे वो सारी बातों का वो आपने इसमें समावेश कर दिया। और आपने हमें जब मेल किया तो सच मानिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुँच गई। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया है, और जब इनका मेल आता है तो पता नहीं क्यों जहन में जावेद अख्तर साहब याद आने लगते हैं जो हमारे लिरिसिस्ट हैं और बहुत अच्छे उन्होंने गाने लिखे हैं। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, लिख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आगे लिख रहे हैं कि 12 बजे से आपकी आवाज़ को सुना था, उसके बाद ये कहीं चले गए, उसके बाद आए तो होठों पे तेरी बात कार्यक्रम से ये जुड़ गए सीधे आके। और सबसे ज़्यादा इनको पहली खुशी तब मिली जब मेरे बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे मिल गया। मुबारकपुर आज़मगढ़ से हैं, शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार साहब के साथ इन्होंने हमें मेल किया है। सच में बिछड़ा हुआ दोस्त अगर मिल जाए तो अल्फाज से पहले आंसू आंखों से बाहर आते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था इंसिडेंट कि एक मेरी दोस्त थी और वो बहुत सालों से बिछड़ गई थी और अचानक कहीं ना कहीं से उसको मेरा नंबर मिला, उसने मैं कॉल करी और जब एक हेलो उसने बोला तो आप यकीन मानिए कि वो बचपन की जो आवाज़ थी वो भले ही बचपना था लेकिन उस हेलो ने ऐसा लगा कि उसको बस हम पहचान गए उसको। और जब मिले तो यकीन मानिए कि अल्फाज से ज़्यादा आंसुओं ने साथ दिया उस वक्त, और हम दोनों, वो भी बड़ी खुश थी हम भी बड़े खुश थे, और बड़ा अच्छा लगा कि चलो बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया। और बबीता राव जी हैं, बहुत ही प्यार से हमें मेल करती हैं, बहुत ही कलर का इस्तेमाल करती हैं, ग्रीन येलो ब्लैक ब्लू और इमोजीज़ बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं इन्हें, हार्ट का स्माइली और बुके भेजे हैं, सब कुछ इन्होंने भेज दिया है। और सच में लिसनर इतना चाहते हैं रेनबो को कि उनका बस नहीं चलता कि वो किस तरह से अपने प्रेम का जो भाव है उसको उजागर करें, पहुँचाएँ हम तक। और आप यकीन मानिए कि हम लोग समझ जाते हैं कि आपकी क्या मंशा है और आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी आप मोहब्बत करते हैं रेनबो से। और अब जो मेल मेरे पास आया है, बेली कला गुसाईगंज से, नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से है। मैम जी, हमेशा की तरह आपकी प्यारी सी आवाज़ और प्रोग्राम करने का अंदाज़ प्लस सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता। लिख रही हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मुझे 9th क्लास में थी और मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलवाई थी। उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था हाई स्कूल पास करने में। और आपको फर्स्ट टाइम मैंने 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ के प्रोग्राम में ईमेल किया था। इत्तफाक की बात यह थी कि उस दिन भी आप आई थी, मुझे बस नाम याद था। और 10 नवंबर 2024 को इनका फर्स्ट, मतलब हम ही ने इनका फर्स्ट ईमेल शामिल किया था और मेरा सॉन्ग भी बजा था। मेरे भैया और पापा खेत में काम कर रहे थे, मैं जल्दी से जाकर उनको बताया कि तरन्नुम मैम ने मेरा ईमेल पढ़ा और सॉन्ग भी बजाया था। और सॉन्ग के बोल थे, ये रेशमी जुल्फ़ें ये शरबती आँखें, और मुझे बहुत खुशी मिली थी। और बाकी खुशी तो मुझे दुआ में मिलती ही रहती है, तब से लेकर आज तक मैं बस डेली एक चैनल है 100.7 उसे सुनती रहती हूँ। अब बहुत अच्छा लगा, और सच में आपको इतना सब याद रहता, आप लोगों को इतना, मतलब क्या कहें, अल्फाज नहीं मिलते हैं आप लोग जो इतनी मोहब्बत देते हैं रेनबो को। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग जब आपके मेल पढ़ते हैं और हम लोग आपस में जब बात करते हैं कि भाई देखो फ़लाँ ने ऐसा मेल किया फ़लाँ ने ऐसे किया, तो आप यकीन मानिए कि जो उस वक्त मोहब्बत है वो इतनी दिल में उठती है कि उसको अंदाज बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप तक 1:48 प्रोग्राम होठों पे तेरी बात तरन्नुम में आपके साथ सुनते रहिए रेनबो।

और अगर आपका दिल सच में ऐसे ही बोलता है कि उसको पसंद करता है जिसका दिल में मोहब्बत और उनसियत भरी होती है. फिलहाल 1:54 हो गए, आप लोगों ने मेल किया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अब जो मेल की बौछार होने वाली है, बरसात होने वाली है, उसको तो मतलब ऐसे करके हम लोग हाथों में लेना की कोशिश करते हैं कि अच्छा अच्छा ये वाली भी बूंद भी इस हथेली में आ जाए, अच्छा अच्छा अच्छा ये वाला भी जो मेल है ना इसको जल्दी जल्दी हम शामिल कर लें. लेकिन वक्त जो है ना इतनी तेज़ी से भागता है, अगला जो एक घंटा होगा वो इतनी तेज़ी से भागेगा कि समझ में ही नहीं आता कि कब उसको हम कैच कर लें, कैसे उसको पकड़ के रखें और आप लोगों के इतने खूबसूरत से जो मेल हैं उनको हम शामिल कर लें. लेकिन फिर भी आप लोगों के जो मेल आते हैं उनको शामिल करना हमारा फ़र्ज़ है और हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि उन मेल को हम शामिल कर लें. फिलहाल प्रोग्राम हॉट मेल का अब इंतज़ार आप करिए और होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत. तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल. सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो.

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रुदौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मां कामाख्या धाम में वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ की लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की अमर वीरांगना को जिसने 1857 के स्वतंत्र समर में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: जी 2:03 हो चुके हैं और बस जल्दी से मेल पढ़ने का जो सिलसिला शुरू करेंगे स्ट्राइक के साथ। सुनते रहिए हॉट मेल और मेल करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

और 2:05 हो चुके हैं और सबसे पहला मेल जो इस वक्त हम शामिल करते हैं वो है जय का। और जय को बड़ी जल्दी होती है, मतलब जय 2 है और जय इतने हैरान हैं, इतने परेशान हैं, बस यही कहते हैं हमारा नंबर कब आएगा जी, हमारा नंबर कब आएगा। होली चौक उत्तम नगर से मेल कर रहे हैं जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन खुरवाल, दीपांशु खुरवाल और गाने की इन्होंने फरमाइश की है। जय देखिए 2 और आपने हमें मेल करना शुरू कर दिया और आपका मेल देखिए हमने शामिल भी कर दिया, इसलिए प्लीज़ अब आप इस प्रोग्राम में आज हमें मेल मत कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे मेल हमें कर दिए हैं। हरजिंदर शिंदा जी का मेल आ गया है, रिस्पेक्टेड होस्ट जी प्यार भरा आदाब, आपको भी प्यार भरा हमारा आदाब। और लिख रहे हैं किसी भी सदा बहार गीत में हमें शामिल करें, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीतल गीता, खुश रहो और खुशियां बांटो। क्या कमाल का आपने हमें मेल किया है, मैसेज किया, बहुत दिल खुश हो गया। दीपेश वर्मा जी का मेल आ गया है, हमेशा ये कहते हैं जय जोहार, आपको भी जय जोहार। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गाना भी बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया आजकल के मौसम में, गर्मी के मौसम में उस गाने में जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी काम की हैं, बड़ी फ़ायदे की हैं। राजेश वर्मा जी का भी मेल आ गया मेरे पास, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद जी कि आपने हमें मेल किया। यासीन अनजान जी का मेल आ गया है, प्यार भरा आदाब कबूल करें, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन जी आपने हमें मेल किया। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकमल यादव जी का मेल आ गया है, ग्राम बरैया पोस्टर सूरतगंज बाराबंकी से, नमस्कार मैम जी कैसी हैं आप, प्रोग्राम की शुरुआत धमाकेदार हुई है, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए सन्यासी। अच्छा और हमारे साथ रमज़ान मास्टर, सावन कुमार यादव, संगीता यादव जी हैं, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया। और मेल आ गया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज लिख रहे हैं, डियर प्रोग्राम एंकर, ग्रीटिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज़ इंक्लूड आर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन इन द सब्जेक्ट और यू कैन इंक्लूड दिस मेल इन एनी सुटेबल सॉन्ग। और हमेशा आप यही लिखते हैं और हमेशा बड़ा दिल को छू जाता है आपका मेल कि आप इतने प्यार से मेल लिखते हैं और बिल्कुल हम आपका जो गाना है उसको हम किसी भी मतलब जो मैसेज आपका सूटेबल सॉन्ग में ज़रूर शामिल करेंगे। सुनील पाठक जी का भी मेल आ गया है और लिख रहे हैं होस्ट मैडम आपका हर पल खुशियों से भरा हुआ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, गाने की फरमाइश के साथ मेल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। ताज मोहम्मद साहब का मेल आ गया है, गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं और हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जितने सारे अभी हमने मेल पढ़े हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आप लोगों के ट्रैक में से एक ट्रैक

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
6: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
7: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
8: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

और 2:18 हो चुके हैं। अब मेल जल्दी से पढ़ लेते हैं, किन किन के मेल मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं। राधे श्याम जी का मेल आ गया मेरे पास कासगंज से, सलाम अलैकुम। राधे श्याम जी ने लिखने की कोशिश की है सलाम अलैकुम, आपको भी प्यार भरा वालेकुम अस्सलाम और प्रणाम मेरा राधे श्याम जी। तरन्नुम जी और आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं राधे श्याम जी। लिख रहे हैं कि मैं इस समय ससुराल में हूँ और प्रोग्राम इंजॉय कर रहा हूँ, प्रोग्राम मस्त लग रहा है और साथ ही साथ गाने की फरमाइश की है। अच्छी बात है, ससुराल में ही रहिए, बहुत आवभगत होती है वहाँ पर, बहुत जो भी आप वहाँ पे ऑर्डर करेंगे वही ये ले आओ, चाय ले आओ या जूस ले आओ, आम काट के ले आओ, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर पूरी होती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मेल कर, आपका मेल पढ़ के। और आफ्ताब अंसारी साहब का मेल आ गया है, नमस्कार आदाब, इनी सॉन्ग बहुत अच्छी बात। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। सतीश नेजा जी का मेल आ गया है, प्रोग्राम में पुरखलूस सलाम भेज रहे हैं और इस्तकबाल करते हैं, आप हमारी बहुत अच्छी बहनें हैं, आप भी तो मेरे बहुत अच्छे वाले भाई हैं इसलिए आपको इतना अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, धन्यवाद भेजा इन्होंने हार्ट बना के, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। दिग्दर्शन गौर जी का मेल आ गया है, मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता गौर, कर्ण, रिया, जया और दर्शन भाई, सादर प्रणाम, आपको भी प्यार भरा प्रणाम। और गाने बहुत सारे लिख लिख के भेजे इन्होंने, 5-6 गाने हैं और इनमें से एक गाना में सेलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इससे पहले कि हम जल्दी मेल पढ़ लेते हैं। और संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से मेल कर रहे हैं। और

रोजी डी कैस्ट्रो, यस आपने मेल किया था 12:50 पे और कोशिश की थी कि आपके जो रिक्वेस्टेड नंबर हैं उनको हम प्ले कर दें, लेकिन अब सही टाइम पे आपने मेल किया है सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पाल वेलस डी कैस्ट्रो गाने की फरमाइश। और इतने सीधे हैं ये लोग कि किसी भी गाने में शामिल करने को कहते हैं, मतलब कितने अच्छे लोग हैं कि किसी भी गाने में आप लोग कहते हैं ना तो एक जो हाथ हम लोग के बंधे हुए होते हैं एटलीस्ट वो खुल जाते हैं। साहिब आलम जी का मेल आ गया है, मैं रोशनी था मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो मुझे चिराग समझते रहे, क्या बात है। और समीर अहमद हैं, अवरेडित रहा, अम्बेडकर नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं, गाने की फरमाइश कर रहे हैं ये। और संतोष भाकरे जी का मेल आ गया, शाहजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, और संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए, और आपका गाना हम ज़रूर कोशिश करेंगे प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ जो मेरे पास मेल आ गया है वो आ गया है प्रमोद यादव जी का, चंद्रकला जी प्रोग्राम बहुत बढ़िया है इनको चंद्रकला की याद आ रही है या फिर इनको मेरी आवाज़ चंद्रकला से मिलती आ रही है। प्रमोद जी, तरन्नुम मैथर और चंद्रकला जी से आपकी मुलाकात किसी दिन जल्दी हो जाएगी, फिलहाल अब बिना देर किए आपके गानों को पहुँचाते हैं हम आप तक।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 2:30 बज चुके हैं, यानी 2:30 हो चुके हैं. बहुत सारे हमारे पास मेल हैं जो आ रहे हैं, और सबसे पहले इस वक्त जो मेल है उसे शामिल कर लेते हैं. और जो मेल आया है वो आया है अहमद बागवान जी का, और लिख रहे हैं, आदरणीय होस्ट बहन जी सादर नमस्कार, किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए. बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा राबिया परी आशु जूही सदा फारजू बागवान और समस्त बागवान परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. जितेंद्र नामदेव जी का मेल आ गया है. बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, नमस्ते. आपको भी प्यार भरा नमस्ते पूरे नामदेव फैमिली को मेरी तरफ से. लिख रहे हैं, तरन्नुम जी कैसी हैं आप, और गाने की फरमाइश की है, बहुत अच्छा सा गाना आपने पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. चंदन तुरेहा का मेल आ गया है रामपुर से. चंदन तुरेहा, राम राम जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी राम राम मेरा प्यार भरा. और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो शुक्रिया, आप लोग मेल करते हैं तो जब मेल आप लोगों के आते हैं तो प्रोग्राम खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाता है. मल्होत्रा टीडी मोहाली से मेल आ गया है, और आपका जो मेल है वो हम शामिल कर चुके हैं. मल्होत्रा टीडी मल्होत्रा जी, मल्होत्रा फैमिली की तरफ से मेल है. कालका से शुभचंद्र बजाज जी का मेल है, ये मेल हम शामिल कर चुके हैं. कुमार किशन जी का मेल आ गया है, उधौली बाराबंकी से हैं. लिख रहे हैं, सलाम वालेकुम मैम जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन गर्मी और धूप बहुत तेज़ है, आप सभी ये अला गाना जो है वो प्ले कर दीजिए. बहुत बिल्कुल सही है ये गाना, बिल्कुल आज के मौसम के हिसाब से आपने पसंद किया है, इसको हम ज़रूर प्ले करेंगे. इसके अलावा दिलावर खान जी का मेल आ गया है. दिलावर साहब, आप एक मेल को ही आप भेजें तो मेहरबानी होगी. अभी तक आपने कम से कम 8 मेल हमें कर दिए हैं श्रीराम में. और गाने की फरमाइश की है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, लड्डू भी कोई हैं उन्होंने फरमाइश की है. उत्तम कुमार भगत जी का मेल है, क्या बात है तरन्नुम जी, मेरा मेल का क्या हुआ, आपके मेल का कुछ नहीं हुआ, आपका मेल जैसा था वैसा ही है, ना उसका हमने कोई करी बनाई है, ना उसको हमने ऐसे करके लड्डू की तरह खा लिया है. ऐसे ही जो मेल है ना वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है. पाकुड़ झारखंड से मेल कर रहे हैं. उत्तम कुमार जी, क्या हो गया आपको, आज थोड़ा सा आप अलग अंदाज में मेल कर रहे हैं. हमेशा आप बहुत प्यार से मेल करते हैं लेकिन कोई नहीं, हमेशा सवाल आप लोग करने का पूरा राइट है, आपको पूरा हक है कि आप पूछ सकते हैं कि आपका मेल क्यों नहीं शामिल हुआ. और साथ ही साथ श्वेता भगत, किसु तासु, अर्डम आनंद, सत्यम आनंद है, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. दिलीप कुमार जी का मेल आ गया है, मुंदी चक भागलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी, गाने की फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद. नरेश जी का मेल आ गया, नमस्कार जी आपको, मान योग्य आरजे जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार. और लिख रहे हैं कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ देर हुई है, अभी 33 मिनट ही तो हुए हैं, और आप लोग इतनी उजलत करने लगते हैं, इतनी जल्दी करने लगते हैं. ख्याल बाजार पानीपत से है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. और कुमार किशन जी का मेल एक बार फिर से आ गया है, और आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं. शमसुल कमर राही जी का मेल आ गया है, प्रोग्राम इनको मस्त लग रहा है, अच्छा होता हमारी पसंद का सॉन्ग भी चल जाता. और शमसुल कमर राही, शाहीन फातमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और गंज डुडवारा से मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी. और अब क्या करना है, अब एक गाना है जो एक नहीं बल्कि 3 लोगों ने इस गाने की फरमाइश की है. अच्छा, ये गाना है बहुत पुराना लेकिन लाजवाब गाना है, इसके बोल लाजवाब, इसकी जो म्यूज़िक है वो भी लाजवाब. गाना कौन सा, ये वाला.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब,
6: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
7: जोर का झटका है जोरों से लगा,
5: अंदाज है सबसे निराला,
6: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
5: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और देखिए घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी एक दूसरे को बहुत जल्दी छूने वाली हैं, यानी 3 बजने वाला है और इससे पहले कि 3 बज जाए आप लोगों की जो मेल है उनको जल्दी जल्दी हम शामिल कर लेते हैं। कौशिक वाधवान जी का मेल आ गया है फ्रॉम राजकोट गुजरात से हैं कौशिक। अस्मिता मम्मी पापा महेश वडवाड़ा परिवार लिख रहे हैं हेलो नमस्ते तरन्नुम जी केम छो माजामा और गुड आफ्टरनून भी लिख रहे हैं। सॉन्ग जो आपने कहा था वो देखिए हमने प्ले कर दिया है और साथ ही साथ डीके यानी न्यू दिल्ली से हैं कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु और गाने की फरमाइश की है इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया। रविंद्र मोहन दास जी का मेल आ गया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी कोई भी गाना सुनवा दीजिए। बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है हम रह गए अच्छा आप रह गए कहाँ रह गए और लिख रहे हैं तरन्नुम पप्पी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक है मुझे ये गाना सुनवा दीजिए और गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं साथ ही साथ गाने डेडिकेट करते हैं रेडियो दोस्त कुलदीप गुप्ता महेंद्र दीपन फैज अंसारी गौस मोहम्मद अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल आ गया लाजवाब प्रोग्राम इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं गाने की फरमाइश। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर प्रकाश बोरगांवकर प्रांजलि सोहम बोरगांवकर सदानंद विराज अंशुमन ओवी आपका दिल से शुक्रिया आपका भी दिल से शुक्रिया बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया। हीरामणि वर्मा जी का मेल आ गया दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा कोई भी गाना चलेगा कोई भी गाना सुनवा दीजिए। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हैं और टिकैत नगर से हैं यशोदा का नंदलाल गाना इनको सुनना है और ये गाना जो है वो ज़रूर प्ले करेंगे हम। अहमद भाई पुरवाले जी का मेल आ गया भाई आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। कमलकांत गुप्ता जी का है तरन्नुम जी हमें भी याद कर लेना पिप्रिया से कमलकांत गुप्ता।

श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, बिल्कुल आपको याद करते हैं हम और आप हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। साई गायकवाड़ का मेल आ गया है। हॉटमेल सादर प्रस्तुत करने वाली तरानू दीदी को प्यार भरा राम राम जी, आपको भी प्यार भरा हमारा राम राम। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून जी दीदी, कैसी हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और गाने की फरमाइश की है नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ जी, बिल्कुल गाना प्ले होगा। और साथ ही साथ राधे कुमार विद्यार्थी जी का मेल आ गया है, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन बुल्की वाली और फलाना फलाना झा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ गया है, नमस्कार और गाने की फरमाइश के साथ गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन जी। जी बिल्कुल आपका मेल शामिल हो गया है। देखिए दिनेश वर्मा जी का गाना रिंगनी छत्तीसगढ़ से है, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। साथ ही साथ मुजम्मिल अहमद साहब जी का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश की है कुर्सट नाव से। इसके अलावा जो मेल आ गया है वो आया है पूनम गगनेजा जी का, तरन्नुम बहन राम राम जी प्लीज एनी सॉन्ग, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रियादिशानी और निमित, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और एम के राज का मेल आ गया है और शुभ दोपहरिया कर रहे हैं और गाने की फरमाइश की है भानपुर हरावा लखीमपुर खीरी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। साथ ही साथ बोधराज खुरवाल जी ने देखिए 8 मेल कर दिए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जब ड्रैग कर रहे हैं। मुकेश कश्यप जी का भी मेल आ गया है, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। शाहरुन नूर अंसारी का मेल आ गया है, हरहरपुर मटकली जिला बरेली से है शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार जी का मेल आ गया है, किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, रिस्पेक्टेड आरजे जी, तरन्नुम जी नमस्कार जी, और गाने की फरमाइश सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, कितने सारे आम भेज दिए आपने, स्ट्रॉबेरी भेज दी है और कुछ उसमें बोल में भी रख के भेजा, दिखाई नहीं दे रहा है कि वो है क्या, लेकिन बड़ा कलरफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधौली बाराबंकी से हैं कुमारी क्षमता, सादर प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम आपको भी कुमारी क्षमता जी, गाने की फरमाइश की है तेज बहादुर यादव जी का मेल आ गया है, प्यार भरा सलाम नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा बहुत जल्दी आपको आनंद आने लगा और मेल आपने जल्दी से किया और जल्दी से देखिए हमने आपका मेल भी शामिल कर लिया। और कोई फरमाइश नहीं कर रहे हैं तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव, बेबी वानिका, गाँव मऊ शर्की, ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और इस टाइम हरियाणा गुरुग्राम में हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों ने हमें मेल किया। और 2:53 हो गए हैं, इसी के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत, तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है सतरंगी दुनिया, स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026

0: 26 निर्धारित है।
1: नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रुद्रौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मां कामाख्या धाम में वीरांगना झलकारी बाई की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ की लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की अमर वीरांगना को जिसने 1857 के स्वातंत्र्य समर में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वाराणसी में पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, सुशासन, जन कल्याण और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन DCID पहल के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल तथा विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला रहे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 91 78 27 98 02 87 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जाँच कर लें। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित होने वाले एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। डिजिटल रूप से हेरफेर किए गए स्टूडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये की एक मुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय के तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। इकाई ने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म या योजना का समर्थन नहीं किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: और 3:03 हो गए हैं। सतरंगी चैनल पर सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर है। तरन्नुम सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो FM रेनबो।

अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को जब गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो लोग कहते हैं अब बस गुस्सा आ गया. कुछ लोग होते हैं जो साइड में होते हैं, वो और गुस्सा दिलाते रहते हैं. मतलब अगर आपने कहा बस हमें जब गुस्सा आ जाता है, तो लोग कहते हैं ना थोड़ा अपनी शान बढ़ाने के लिए कहते हैं, अच्छा तो फिर गुस्सा आता तो फिर क्या करते हो? तो लोग कहते हैं जब गुस्सा आ जाता है ना तो फिर हम कुछ देख नहीं पाते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देता, बस इतना गुस्सा आता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें. तो लोग जो साइड में होते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा और हाँ देखो, अच्छा इतनी बड़ी बात उसने कह दी. और अक्सर लोग कह देते हैं सामने वाले को, देखिए फिर वही गुस्से की बात आएगी कि गुस्से में कह देते हैं कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, एक कीड़े की भी नहीं है, एक कीड़े के बराबर भी तुम नहीं हो. अगर आप कोई गुस्से में आपको ये कहे कि तुम्हारी हैसियत एक कीड़े की जैसी भी नहीं है, तो आप खुश हो जाइए कि उसने आपको कीड़ा कहा. और अगर उसको ये नहीं पता है कि कीड़े कितनी हैसियत रखते हैं, तो आप उसको बिल्कुल बता दीजिएगा और बिल्कुल दिल खोल के बताइएगा कि अगर उसने आपको कीड़ा कहा है तो 100% उसने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है. क्योंकि दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है जिसकी कीमत, अगर आप जो गुस्सा कर रहा है उसको आप बता दें या आपको अगर पता चल जाए, तो आप सोचेंगे कि काश ऐसे कीड़े होते, उनका कितना अच्छा होता. और वो जो कीड़ा है, पहले आपको उसका नाम बता दें, स्टैग बीटल नाम का ये कीड़ा है. और इसकी बहुत ही ख़ास तरह की बनावट होती है और बहुत रेयर, मतलब ये दिखाई देता है दुनिया में, बहुत रेयर है और सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है. पैसे आपको पता है कितने, इसकी जो कीमत है ना वो करोड़ों में है, मिलियंस में है इसकी कीमत. और इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारी कीमत एक कीड़े की जैसे भी नहीं है, तो उसको बता दिएगा कि भाई जो कीड़े की अगर तुमने बात कही है, तो मेरा जो नाम है ना किस कीड़े का है, वो है स्टैग बीटल. और जब आप उसको ये बताएंगे, तो जो उसका गुस्सा है ना, पहली बात तो ये कि वो नरम पड़ जाएगा, दूसरी बात है कि वो सोचेगा कि क्या मैंने सोचा और ये इंसान क्या निकला.

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: सपने बड़े हैं,
2: स्टाइल अलग है,
1: तो ये शो है आपके लिए।
2: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
1: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
2: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और 3:24 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगे दुनिया, और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों दुनिया में कि जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता था तो पहले फिर कैसा होता था। मतलब जैसे कि बहुत पहले हमने बात करी कि अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता था तो एक लेटर, एक जो मैसेज होता था ना, वो हफ्तों में महीनों में पहुंचता था। उसी तरह किसी को अगर आवाज़ सुननी होती थी तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता था जब वो आपके घर आता था, या आप उसके घर जाते थे तभी आप सुन पाते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की और काफ़ी कामयाबी हासिल करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चुटकी बजाती

में हो जाती हैं। इसलिए जब ध्यान दिया हमने कि जो पेट्रोल पंप है, देखिए आप कितने बढ़िया से मॉडर्नाइज हो गए हैं। और पहले कई ज़माने पहले ऐसा कैसे हुआ होगा, पहला पेट्रोल पंप कहाँ बना होगा, कहाँ से कैसे पेट्रोल आया होगा और उसको रखा गया होगा। और पहले तो हम यही सोचते थे कि ये ज़मीन खोदी जाती थी, उसके अंदर से पेट्रोल निकलता और लोग अपना पेट्रोल पंप खड़ा कर लेते हैं और वो जो बचपना था वो फिर बाद में जब जहन पर जोर डाला और लोगों ने बताया तो पता चला कि भाई इस तरह से जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया का, भारत का पहला पेट्रोल पंप कहाँ था, कब बना था? तो आपको बता दें 1928 में बना था मुंबई में, और वो जगह थी हुगेस रोड, वहाँ पर शुरू किया गया था। और ये हाथ से चलाया जाता था, यानी जो डिस्पेंसर होते थे वो हाथ से चलाने वाले होते थे, और जैसे ही हैंडल को घुमाया जाता था तो ड्रम से सीधे पेट्रोल निकल कर ऊपर के शीशे में आता था, और वहाँ से निकलने के बाद उसको नापा जाता था, और फिर जो गाड़ियाँ होती थी जो भी जितने का पैसे का लेता था उतना भरवा लिया जाता था। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं तब हुआ करती थी। फिलहाल अब एक और ट्रैक आ रहा है आप तक, और सतरंगी दुनिया को वाइंड अप यहीं पे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम है स्पॉन्सर्ड। सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वक्त, अगले कुछ घंटे अलका रहने वाले हैं आपके साथ। बाय, टेक केयर, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@CIET.NIC.IN है हमारे

0: ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you.
4: How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you,
6: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine!
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?

0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
1: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
2: सब कुछ ठीक तो है ना?
1: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
2: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
1: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
1: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
2: नहीं नहीं,
1: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
2: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन।

0: में होती है।
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। '85 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
10: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
11: आग का गोला?
10: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दो प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
11: सूरज।
10: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
11: बहुत आसान पूछते हो।
10: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
11: कि अगली बार में बहुत मुश्किल
10: हाँ मैंने सोचा तो था लेकिन क्या करूं मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना

0: इतनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
2: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
4: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ। जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, जैसे लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देख लें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
4: नहीं करता।
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
5: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
5: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
5: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
5: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
5: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
5: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
4: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: और
0: से डर जाती हूँ तो
1: कोई मिला के
0: 70
1: हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा।

नमस्कार, चार बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजिटल पहल की है। एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत अब छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों पर अनुपालन का बोझ कम करना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे छात्रवृत्ति का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि G7 सम्मेलन में भारत की भागीदारी इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के प्रमुख देशों का विश्वास लगातार जीत रहा है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूर्ण सदस्य न होते हुए भी भारत को इस मंच पर आमंत्रित किया गया था और उसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने कनेक्टिविटी और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी साझेदारी का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी देशों ने अपनी रुचि व्यक्त की। पीलीभीत जिले के गांधी स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मिलेट्स मेला और प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी कृषि शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मेले का शुभारंभ करके स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर श्री औलख ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने जो अभियान शुरू किए थे, उन्हें पूरा किया गया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद बिजनौर के इंदिरा पार्क में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। सुबह से ही अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और छात्र छात्राओं ने आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो माय डियर लिसनर्स, 4 बज चुके हैं और आ गई है आपकी रेडियो साथी अलका आपके साथ। पूरे 4 घंटे आपका साथ रहेगा मेरे साथ और 100.7 FM रेनबो पर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को करने वाले हैं एंजॉय, जैसा कि आप काफी देर से कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे आप मेरे साथ रहेंगे। सो यूथ वेव में आज होगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। एक बार फिर से स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

वैसे अगर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी की बात की जाए तो इस भागदौड़ भरी लाइफ में अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा कठिन काम है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया हो लाइफ में करने के लिए, और कई बार अगर हम बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसला करके ये बीड़ा उठा भी लेते हैं तो ऐसी हेल्थ हैबिट्स के साथ एक लंबे समय तक टिके रहना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत मुश्किल भरा काम हो सकता है। ऐसे में छोटी छोटी आदतों की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतों की मदद से आप अपने सेहतमंद भविष्य की नींव जरूर रख सकते हैं। क्योंकि छोटी आदतों को जो अपनाना है वो थोड़ा आसान होता है। अब यूं ही देखिए, एक कप चाय बनाना थोड़ा सा आसान होता है, कंपेयर करें अगर आपको 10 कप चाय बनानी है या फिर और बहुत ज़्यादा कप चाय बनानी है तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो छोटी छोटी जो आदतें होती हैं उनकी शुरुआत करके आप बड़ी आदतों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर नियमित रूप से बात की जाए, रूटीन की बात की जाए, तो उन्हें आजमाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा लगती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आप अपनी हेल्थ और अपनी हाइजीन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे खूबसूरत से गाने को इंजॉय करने के बाद। पहले आगे बढ़ते इस ट्रैक की तरफ, फिर वापस आते हैं और करेंगे बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड 90.7 FM रेनबो।

जनरली जब बात स्वास्थ्य की और हेल्थ की आती है तो सबसे पहले दिमाग में कैलोरीज आती हैं। जी हाँ, कैलोरी पर नहीं, थोड़ा सा पोषक तत्वों पर, आपके न्यूट्रिशंस पर आपको ध्यान देना होगा। कैलोरी की गिनती करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि आपका जो भोजन है, आपका जो खाना है, वो कितना पौष्टिक है, आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए कितना पौष्टिक है। क्योंकि रिसर्चेस की बात करें तो ज़रूर ये चीज़ सामने आई है, और एक नहीं कई बार आई है, कि जो सब्जी

हैं, फल हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, बीज हैं और लीन प्रोटीन है, इन जैसे जो संपूर्ण खाद्य पदार्थ होते हैं इनको खाने से आपका जो खाद्य पदार्थ खाने की तुलना में एक बैलेंस डाइट लेने की तुलना में स्वास्थ्य लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मत सोचिए कि आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल रही है, आपको अपनी स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा लेने, यानी कि आपको पोषक तत्व ज़्यादा लेने, भले ही कैलोरी की संख्या इक्वल आ जाए या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, उससे कोई भी फर्क आई थिंक पड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे चेंजेस आजमा कर भी हम बहुत सारे बड़े बेनिफिट्स हाथ लग जाते हैं हमारे, तो अपनी

यहाँ तक कि टमाटर वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। तो रंगीन सब्जियों को शामिल करना, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो भोजन है उसको करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कोशिश कीजिए कि बाजरा, ब्राउन राइस जैसे जो साबुत अनाज हैं उसमें आप कन्वर्ट करते चले, इनको इनमें भी चेंजेस करते चले। और अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को या फिर अपने पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर दिन आपको कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर किसी भी रूप में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फाइबर है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर देता है।

0: अब से कुछ ही देर में 4:25 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर।
1: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय श्री विजयपुरम कार्यपालक अभियंता सिविल के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट andamannicobar.gov.in या apwd.and.nic.in। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव पद के लिए 1 सदस्य की रिक्ति भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निहित पात्रता शर्तें और अन्य विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर dopt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। महाप्रबंधक AHL, प्रबंधक विधि, फार्मासिस्ट दवा खरीद, इन सभी पदों के लिए आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष। सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.upmsc.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मरीन इंजीनियर पायलट अनुबंध पर तथा योजना 1 अथवा 2 के तहत पायलट अनुबंध के आधार पर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT संस्कृत के 1 पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, नियम और शर्तों के लिए देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट sschittorgarh.edu.in। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कैंपस निदेशक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.imu.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, 4:30 और 44 सेकेंड अलका है आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर, और इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आज का यूथ वेव, और हम कर रहे हैं हेल्थ एंड हाइजीन की बहुत सारी आपके और अपने फायदे की बातें।

और चलिए अब बात करते हैं और थोड़ा फोकस भी करते हैं प्रोटीन पर। जी हाँ, प्रोटीन की जब बात होती है तो हमेशा थोड़ा सा स्मार्ट प्रोटीन यूज़ करने और शामिल करने की अपनी डाइट में कोशिश कीजिए। स्मार्ट प्रोटीन से क्या मतलब है? स्मार्ट प्रोटीन से मतलब है प्रोटीन जो एक्चुअल में होता है ना कि मांसपेशियों की मजबूती के लिए और बहुत तेज़ और अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खाने के बाद की संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी प्रोटीन जो है एक जैसे नहीं होते, इसलिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम पौधे पर आधारित जो प्रोटीन है और पशु प्रोटीन है उनको अगर आप अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो सेहत को सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब आजमा किसको सकते हैं पौधे आधारित जो प्रोटीन्स हैं, उसमें आप दालें हैं, चना है, बीन्स है, टोफू है, सोया है, मेवों के थ्रू आप प्रोटीन ले सकते हैं। इसके अलावा इनको प्राथमिकता देना जरूरी है। इसके अलावा आप अपने शरीर के वजन के अकॉर्डिंग प्रति किलोग्राम लगभग 0.6 यानी कि 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम प्रोटीन जो है वो आप पर डे ले सकते हैं, पर केजी के अकॉर्डिंग, जितने किलो भी आपका वजन है उसके हिसाब से। इसके अलावा नॉनवेज अगर आप खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर आप इनसे भी प्रोटीन अच्छा स्रोत है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं, तो पनीर से भी बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है।

कोशिश कीजिए कि चीनी जो है उस पर थोड़ी सी निर्भरता आपकी कम ही रहे। जी हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा नमक जितना नुकसानदेह है, ये वाइट चीनी भी उतनी ही ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। चीनी के जो सेहतमंद विकल्प हैं उनको चुनना बेहतर होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद है, किशमिश है, खजूर है, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करिए। जहाँ हो सके आप इन चीज़ों को कन्वर्ट करते चलिए। और बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करे, आप केक और मफिन वगैरह की जगह कोशिश कीजिए फल और मेवे के थ्रू अपनी इस मिठास को बरकरार रखिए। अपनी सेहत को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा केक, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो पैकेज्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनके इस्तेमाल से बचिए। छिपी हुई जो चीनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। करेंगे अभी और भी बातें, स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, क्योंकि अभी यूथ वेव में चल रही है और भी बहुत सारी हेल्थ एंड हाइजीन की बातें जो हमारे और आपके लिए होंगी बहुत ज़्यादा फायदेमंद।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
2: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: You know what they're saying? Life is like a roller coaster ride. What do you say? पर तुम तो यहाँ हो ही नहीं।

सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज यूथ वेव में हेल्थ एंड हाइजीन की, और बहुत सारी बातें तो शेयर कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन अभी फिलहाल बात करें अगर डाइजेशन की, तो ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी और बुरी हेल्थ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। ज़्यादा खुश, ज़्यादा दुखी या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में रहने पर, जब सामान से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ज़्यादा खाना खाने से जो पाचन तंत्र है उस पर जो प्रेशर पड़ता है और वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में सोच समझ कर जो खाना है उसे ज़रूर लेना चाहिए। यानी कि डाइट जो है वो बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको जब लगे कि हाँ नहीं ज़्यादा हो रहा है तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव है उनको आज़मा लेना चाहिए। खाने को अच्छी तरह से आप च्यू कर खाएँ, चबा कर खाएँ। खाना खाते वक्त कॉन्सेंट्रेशन आपके अपनी भोजन की थाली पर ज़रूर होना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि लोग उस वक्त मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, उसे देखते हुए आप खाना खाते हैं, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो आपके खाने से, आपकी थाली से हट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि ये इन चीज़ों से दूर रहिए। और होता है अक्सर ऐसा है कि इस दौरान आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, पता नहीं चलता है आपको, और ओवर ईटिंग की वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पैकेट से सीधे खाने के बजाय प्लेट, या आप कोशिश कीजिए कि आप सर्व करके प्लेट में, थाली में अच्छे से खाइए, क्योंकि खाने को खाने के तरीके से खाया जाएगा तभी वो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएगा।

सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम तो हो चला है, लेकिन चलते चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी आपकी हेल्थ से जुड़ी है, और वो है आपके खाने की प्लानिंग। जी हाँ, पूरे वीक का एक मेन्यू तैयार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेन्यू तैयार करके अगर आप रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप खाना बनाने से घर में और आपको कहीं बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों में आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा, और आपको प्लान पहले से रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे बचने में भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी ये प्री प्लानिंग होगी, आपका जो मेन्यू है वो पूरे वीक का तैयार होगा। जैसे कि और बैलेंस जो है, एक बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए पूरे वीक भर के लिए अपने भोजन की एक प्लानिंग बना लीजिए। घर पर और आपका जो ऑफिस है, अगर आप वर्किंग है तो वहाँ पर छुट्टी पर पैकेट बंद स्नैक्स खाने के बजाय आप ड्राई फ्रूट्स को चूज़ कर लीजिए, सीड्स हैं उन्हें चूज़ कर लीजिए, भुने हुए चने हैं, मूँगफली हैं, बेल है, स्प्राउट्स हैं, मखाने हैं, उबला हुआ मक्का है। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं जो कि आपकी सेहत के लिए समझिए सोने चांदी का काम कर सकती है, हीरे का काम कर सकती है, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं और हम प्रोसेस्ड फूड को उठा लेते हैं, हम पैकेट्स को खोलते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि स्नैक्स की जगह, जो हम बाहर का पैक्ड स्नैक खा रहे हैं, उस स्नैक्स की जगह आप इन सारी चीज़ों को अपने स्नैक्स में शामिल कीजिए, ताकि हेल्थ भी आपके साथ साथ आपका साथ निभाती रहे और आप जिंदगी को फुल्ली इंजॉय करते चलें। फिलहाल इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स लेकर आने वाली हूं, इस प्रोग्राम को यूथ वेव को यहीं पर वाइंड अप करती है आपकी रेडियो साथी अलका। खूबसूरत ट्रैक एंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। केंद्रीय रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर दोहरीघाट औड़िहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार और मऊ दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल मऊ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मऊ रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि इन गाड़ियों के चलने से पूर्वांचल के विकास को और अधिक गति मिलने के साथ ही किसानों व्यवसायियों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को काफी सुविधा होगी तथा क्षेत्र के कृषि एवं अन्य उत्पादों को बाजार मिलने से क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को

भी गति मिलेगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रुदौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मां कामाख्या धाम में वीरांगना छलकारी बाई की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ की लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की अमर वीरांगना को, जिसने 1857 के स्वातंत्र्य समर में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी छलकारी बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना के तहत किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर निर्यातोन्मुखी सब्जी उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में विशेष रूप से मिर्च के निर्यात, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सुरक्षित कृषि पद्धतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेती पर जोर दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉ राजेश कुमार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सो माय डियर लिसनर, 5 o'clock, जी हाँ, 5:04 और 5:35 भी हो चुके हैं और अलका एक बार फिर से आप सभी के साथ है 100.7 FM रेनबो पर। और इस वक्त पूरा घंटा आप इंजॉय करेंगे जिन 10 गानों को उन्हें टॉप 10 में शामिल किया है आज मैंने। अब वो कहाँ से हैं, किस एरा से हैं और किस डिकेट के हैं, ये तो बस आपको बताना बाकी है। वैसे ये वादा है कि आज इन 10 गानों को आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। और आज बात करेंगे 1980 के दशक की, यानी कि 1980 के दशक की। तो 1980 का जो दशक था, अगर उस दौर की हम बात करें या उस दौर के जो भी लोग हैं, उन गानों को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उन गानों को जब आप सुनते हैं तो मुझे लगता है वो सब पर भारी पड़ जाते हैं। वो जो दशक था बॉलीवुड संगीत के लिए एक बेहद अनोखा दौर था। इस दौर में एक तरफ जहां आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोनों ने जादू कर रखा था लोगों के दिलों पर, तो दूसरी तरफ जगजीत सिंह की जो गजलें थी वो भी छाई हुई थी। बप्पी लहरी का डिस्को और रोमांटिक शुरुआत। तो ये था 1980 का वो दशक। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उसी दौर में खूबसूरत मेलोडियस ट्रैक्स की तरफ और शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर था उस वक्त ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।

0: आंगन लखनऊ की।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
3: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो अभी आपने एंजॉय किया था नंबर 10 और अब बारी आ गई है नंबर 9 की। दोस्तों ये वो दौर था जब हर गाने के शब्द सीधे दिल को छू जाते थे। अगर आप इनमें से किसी भी गानों को सुनेंगे ना तो लगेगा कि वही सबसे बेहतर है। तो देखिए ना नंबर 9 पर इस ट्रैक को सुनने के बाद आपको खुद ये एहसास हो जाएगा।

एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि नंबर 10 और 9 तो आपने फुल्ली इंजॉय कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं नंबर 8 की। जी हाँ, नंबर 8 पर उस वक्त एक ऐसा ट्रैक था जो टूटे दिलों का सहारा बन गया था और वो फिल्म थी हीरो। आई थिंक आपने वो सॉन्ग गेस कर लिया होगा। 1983 से लेकर अब तक ये गाना सबके दिलों पर अब भी राज कर रहा है, क्योंकि ये ट्रैक था ही कुछ ऐसा।

और अब बारी आ गई है नंबर 7 की। 5:23:05 हो चुके हैं दोस्तों और इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आज का टॉप 10 अलका के साथ 100.7 FM रेनबो पर। नंबर 8 के बाद नंबर 7 पर था गायक किशोर कुमार और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का वो गाना जो उस दौर में रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट में काफी आगे था। ये तो आप इस गाने को सुनकर ही बता सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: इस दिन को भला कौन नहीं पहचानता है। उस दौर के जितने भी लोग हैं इस ट्रैक को बेहद पसंद करते थे, और इसका यही रीजन था कि इस ट्रैक ने जाकर नंबर 6 पर अपने पैरों को जमा लिया था। 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के हर सॉन्ग ने उस वक्त धूम मचा रखी थी। फिल्म अपनी जगह सुपर डुपर हिट थी और गाने अपनी जगह हिट थे, और नंबर 6 पर था ये खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। yeah!

वैसे 1980 का वो जो दशक था वो दौर ऐसा दौर था जब हर तरह के गानों ने और फिल्मों ने अपनी धूम मचा रखी थी। एक तरफ कुछ और ही तरह के ट्रैक्स थे, अभी आपने एक बेहतरीन गाने को एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक, लेकिन अगला गाना जो आप नंबर 5 पर एंजॉय करने वाले हैं, आपको बता दें कि ये एक ऐसा ट्रैक है किशोर दा की, इस ट्रैक की अगर बात करें तो ये पायदान पर आ पहुंचा था नंबर 5 पर 1981 में आई थी फिल्म कुदरत, और इस गाने ने नंबर 5 पर अपनी जगह बनाई थी। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये गाना, तो आइए इसे भी एंजॉय करते हैं अपने इस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 5 पर।

और अब बारी आ गई है नंबर चार की। जी हाँ, 1980 के दशक में आई फिल्म अमराव जान लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक बन चुकी थी और इस गाने की तो बात ही अलग थी। तभी तो था ये नंबर चार पर। आशा जी की आवाज में आइए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि नंबर चार पर इसे पहुंचना ही था।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: ये है 100.7 FM रेनबो।

0: धड़कन लखनऊ की।
1: हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
0: और ये खूबसूरत गाना उस वक्त 1980 के दशक में बना हुआ था नंबर 3 पर। नंबर 4 के बाद अब बारी आ गई थी नंबर 3 की, जिस पर थी फिल्म मासूम और उसका ये दर्द भरा सुपर डुपर हिट ट्रैक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: और अब बारी थी नंबर दो की। जी हाँ, नंबर दो पर रही जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज, और गीतकार थे जावेद अख्तर। फिल्म थी साथ साथ। खूबसूरत ट्रैक रहा नंबर टू पर।

5:55 और 50 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और प्रोग्राम अब वाइंड अप करने का टाइम हो चला है। नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं और अब बाकी है बारी नंबर 1 की। 1981 में जब सिलसिला फिल्म आई तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज का ये ट्रैक पहुंच गया नंबर 1 पर, और पहुंचता भी क्यों ना। सॉन्ग सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये ट्रैक एक्चुअल में नंबर 1 के लिए ही था। तो इसे इंजॉय कीजिए और फिलहाल ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो। कुछ ही देर में आपके लिए सिटी अपडेट्स लेकर हाजिर हो जाऊंगी मैं आप सभी के लिए शामी अवध में। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सीय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक के 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने महान वीरांगना छलकारीबाई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कामों की समीक्षा एवं नए कामों की कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितिन राम मांझी शामिल हुए। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक भी शामिल हुए। ब्रिक्स बैठक की थीम चीनापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान निधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
7: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
8: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
11: छह बजकर 6 मिनट और 13 सेकंड हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से अलका आपके साथ है और इस पूरे घंटे बात करेंगे हम सिटी अपडेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, शहर में क्या कुछ हो रही है गतिविधियां, क्या कुछ हलचल है, कहाँ आपके लिए जाना और पहुंचना जरूरी है और कहाँ आप बिल्कुल भी ना जाएं, कहाँ का ट्रैफिक किस तरह का होगा और किस तरह आप अपने आप को उस जगह से बचा सकते हैं, कौन सा डायवर्जन आप रूट ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां होंगी आज आपके लिए शाम में। सो स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते चलते हैं कि क्या है अगली अपडेट आप सभी के लिए, यानी कि आज के प्रोग्राम की पहली अपडेट, और ये है प्रवक्ता के उत्तर कुंजी से जुड़ी हुई। जी, एजुकेशनल अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता, यानी पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि इसमें भर्ती 2025 के 13 विषयों के लिए 13 सब्जेक्ट्स और सामान्य अध्ययन की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसकी उत्तर कुंजी को गुरुवार को जारी कर दिया है। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें कोई आपत्ति दिखाना चाहते हैं तो 23 जून तक का समय आपको इसमें दिया गया है। 23 जून को 5 बजे तक आप आपत्ति दिखा सकते हैं, आपत्ति अपनी जता सकते हैं, और 23 जून इसकी लास्ट डेट है। तो फिलहाल अगली अपडेट तक के लिए इस ट्रैक एंजॉय करते रहिए, और उसके बाद वापस आते हैं आप सभी के पास। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और भाई अगली अपडेट जो है वो लखनऊ वासियों के लिए बहुत खास है, और वो इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल एक ऐसा रास्ता जो कि बंद कर दिया गया था और अब उसे खोल दिया गया है। जी हाँ, लखनऊ में ऐसा होता रहता है। इनफैक्ट शहरों में जब बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जहां पर मरम्मत का काम चल रहा है या कोई डायवर्जन है, तो उस तरह से आपको रूट आप पुनः डायवर्ट करना पड़ता है। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ गोमती बैराज पुल पर जो आवागमन था उसे जो रोक रखा गया था 8 मई से। ये जो वाहन थे इन वाहन सवारों के लिए वहां पर रुकावट रही थी, लेकिन अब समतामूलक से गोमती बैराज का रास्ता खुल गया है। 8 मई से वाहन सवारों के लिए समतामूलक और बैकुंठ धाम तिराहे से गोमती बैराज के बीच जो आवागमन है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन गोमती बैराज के गेटों के मरम्मत का कार्य हो रहा था और इसी की वजह से इसे बैन किया गया था। इसके खुलने से लोगों को अब काफी रिलैक्स हो गया है। तो अगर आपकी जानकारी में ये नहीं था तो आपको बता दें कि अब ये रास्ता खुल गया है, जिसका फायदा अब आपको बिल्कुल मिलेगा।

और फ्रेंड्स 6:23 और 21 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर आज का शामी अवध आप इंजॉय कर रहे हैं अलका के साथ। और बढ़ती तपती और चलती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। घर से बाहर निकलना हो तो भारी ही है और घर के अंदर भी लोग बेहद परेशान हैं। वो लेडीज जो किचन में जाकर काम कर रही हैं उनके लिए भी इस गर्मी के हाल बहुत बेहाल हैं। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो अभी इस इन चीज़ों से निकलना इतना आसान नहीं नज़र आ रहा है, इस गर्मी से निजात पाना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल अब तो ये तपिश जो है वो शुरू हुई है, अब बस इंतज़ार है तो झमाझम मेघों का, जी हाँ बारिश का, ताकि कुछ तो ठंडक का एहसास हो, थोड़ा सा तो ये गर्मी कम हो। फिलहाल अगर इस समस्या में एक समस्या और जुड़ जाती है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बिजली कटौती जो है, बिजली से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बेहद बढ़ जाती हैं ऑलमोस्ट हर एरिया में। तो ये लाजमी है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए हैं, आप किसी समस्या में हैं, तो आपको उसका रास्ता भी बता देते हैं। बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए आप जो है 1912 यानी कि 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। और आप बिजली कटौती से संबंधित, नया कनेक्शन है उससे भी संबंधित, अगर गलत बिल आपके पास पहुंच गया है या ख़राब मीटर आपका हो गया है, लोड आप बढ़वाना चाहते हैं या घटाने की शिकायत है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप एक समय सीमा के भीतर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका नंबर होगा 1912 और इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त जो है वो ये कह रहा है कि इसी तरह अपडेट्स का सिलसिला अभी चलता रहेगा, गाने आप एंजॉय करते रहेंगे अलका के साथ, बस आपको ट्यून रखना है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
7: Maazi ke lamhon mein piroi kuch dilkash daastane.
8: Wo bhooli daastane.
7: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

वेल फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो ट्रेन से संबंधित है, यानी कि आपको बता दें कि कटिहार अमृतसर ट्रेन जो है वो उसकी डेट अब चेंज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इनफैक्ट कटिहार अमृतसर कटिहार वाया गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन जो है उसके चलने की संचालन की जो अवधि है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। और वो क्या है, चलिए आपको बता दें कि अब ये ट्रेन तीन कुछ एक्स्ट्रा फेरों के साथ चलेंगे, यानी अप एंड डाउन के जो इसके वो है फेरे वो बढ़ा दिए गए हैं। और अब इसे 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से और 17, 24 और 31 जुलाई को अमृतसर से चलाया जाएंगे। दोनों ही फेरे बढ़ाए गए हैं, डेट्स बढ़ाई गई हैं। 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से चलेगी और 17, 24 और 31 जुलाई को ये अमृतसर से चलाई जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटिहार अमृतसर ट्रेन की, और 31 जुलाई तक इस ट्रेन की चलने के फेरों की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है।

सो फ्रेंड्स 6:41 और 50 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर आप आरजे अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध. और आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता दें कि सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम आ चुका है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इसे देख ले क्योंकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI ने मई 2024 में आयोजित हुए सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम थर्सडे यानी गुरुवार को घोषित कर दिया है. तो देख लिया है सो फार सो गुड. नहीं तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से इस परिणाम को देख ले भाई. मेहनत का जो नतीजा जब आता है तो वो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार होता है. फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि अगली जो अपडेट है उस तक इस ट्रैक को आप इंजॉय करते रहिए. वापस आएंगे आपके पास स्टे ट्यून्ड.

0: 7 FM Rainbow.
1: Hey, shaky, shaky.

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प

0: पुष्पांजलि, हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कहिए
1: सुनिए
2: सुनिए
0: कहिए कहिए ना
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
3: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: This is something

और इस खूबसूरत ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम शामी अवध को वाइंड अप करती हूँ मैं आपकी आरजे दोस्त हल्का, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ रही हूँ आपका एक और फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर। और करना कुछ नहीं है, करना है आपको डायल नंबर्स और अपनी पसंद के ट्रैक्स को करना है एंजॉय। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने महान वीरांगना झलकारीबाई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कामों की समीक्षा और नए कामों की कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ, स्वामी नारायण मंदिर से बस्ती के मखौड़ा धाम व अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट औड़िहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएससी कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। पीलीभीत जिले के गांधी स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मिलेट्स मेला और प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी कृषि शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मेले का शुभारंभ करके स्टॉलों का निरीक्षण किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना के तहत किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर निर्यातोन्मुख सब्जी उत्पादन की

संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में जनपद बिजनौर के इंदिरा पार्क में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

7:04 हो चुके हैं दोस्तों और प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम। जी हाँ, जल्दी से मिलाइए नंबर 2238852 और 2238845 और इन नंबर्स के थ्रू अपनी पसंद के फेवरेट गानों को एंजॉय कीजिए 100.7 एफएम रेनबो पर। आपके साथ है आपकी रेडियो साथी अलका।

0: फ्रेंड्स, बारी आ गई हमारे आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर की, तो चलिए उन्हें लाइन पर लेते हैं और करते हैं उनसे बात और क्या है उनकी पसंद और कहां से उन्होंने हमें किया है कॉल। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं राम केवल मौर्य बोल रहा हूँ, ग्राम मंगोली पोस्ट जगदीशपुर जिला मेठी से।
0: राम केवल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और बताइए कैसे हैं आप?
1: मैडम, बस मैडम ठीक हैं।
0: ठीक है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो बताइए आज कौन सा आप सुनना चाहेंगे ट्रैक अपनी पसंद का?
1: मैडम ये आया सपनों में कोई सजादा।
0: ओके, और किसे सुनवाना चाहते हैं?
1: मैडम सब जितने लोग सुने सभी को।
0: सभी को, मतलब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जिसे सुनवाना?
1: नहीं नहीं मैडम, कोई नहीं है।
0: ओके, और कुछ कहना चाहेंगे राम केवल जी?
1: नहीं मैडम, बस ठीक है मैडम।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके, थैंक यू।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
5: वेल फ्रेंड्स, 7:14:32 हो चुके हैं और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, तो करते हैं उनसे बात. हेलो
6: हेलो
5: हेलो. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं.
6: मैम, मेरा नाम है कृष्ण कुमार अवस्थी.
5: कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका. कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
6: मैम, मैं
5: हेलो. हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: हेलो.
5: हाँ हाँ, आपको हमारी आवाज आ रही है?
6: हाँ, आ रही है आवाज मैम.
5: हाँ बताएं, कहाँ से कॉल किया आपने कृष्ण कुमार जी?
6: मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई, ग्राम सेवा पोस्ट 56, जिला हरदोई से.
5: ओके, तो कृष्ण कुमार जी, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? अच्छा, ये ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, और किसे सुनवाना चाहते हैं?
6: अपने अपने गांव वासियों को, अपनी पत्नी को.
5: ओके.
6: अध्यापक पत्नी.
5: हाँ हाँ.
6: और अपने गांव वासियों को.
5: ओके, तो बहुत बढ़िया. ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए, और जिन्हें आपने डेडिकेट किया है उन सभी के लिए. थैंक यू सो मच.
6: मैम नाम ले लें एक बार?
5: अरे बिल्कुल, नाम लीजिए भाई.
6: नीलम अवस्थी. कनक, मेरी पत्नी कनक अवस्थी.
5: हाँ.
6: मेरी बेटी चेतना अवस्थी.
5: हाँ.
6: मेरी माँ और मेरे मामा सीतापुर से, विशेषकर मेरे मामा सीता हरिमंगल तिवारी.
5: ओके.
6: साकेत तिवारी, ऋचा मामी, ऋचा भाभी, सबको मैं सुनाना चाहता हूँ.
5: ओके, इन सभी के लिए प्यारा सा ट्रैक. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.
6: थैंक यू.

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास

0: परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
1: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
1: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओडिहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
2: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है।

0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और आइए बढ़ चलते हैं डेली अपडेट्स फीफा वर्ल्ड कप की तरफ।
4: Turkey are up against Paraguay in San Francisco in the other match in Group D. Elsewhere, on day 9 of the World Cup, 2022 semi-finalist Morocco face Scotland and Brazil take on Haiti, both in Group C. For more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.

0: सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, 7:42 हो चुके हैं और इस वक्त हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए हेलो एफएम में अपने नेक्स्ट कॉलर को ज्वाइन करते हैं और उनकी पसंद जानते हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: साहिबा अंसारी, महबागंज लखीमपुर खीरी से बोल रही
0: हूँ। लखीमपुर खीरी से साहिबा बोल रही हैं। साहिबा, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका। कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप बताइए। आपके
0: एकदम फर्स्ट क्लास। तो बताइए आज क्या है पसंद आपकी, क्या सुनेंगी?
1: आज की पसंद है मेरी, मेरा दिल परदेसी ले गया।
0: और किसे सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं।
0: थैंक यू।
1: मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, वकील अहमद भाई हैं, शमा परवीन अंसारी अच्छी हैं, गुलाब से देखी अच्छी हैं, महक अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति हैं, सत्यम कुमार हैं, राशिद अंसारी हैं और रूबी रोही हैं।
0: ओके, सभी को भाई, जितनी भी लिस्ट आपने शामिल की है सभी के लिए खूबसूरत सा गाना। थैंक यू सो मच साहिबा।
1: बहुत दिनों के बाद

0: हाँ जी, नहीं मैं तो आती हूँ, आपसे बात बहुत दिनों के बाद हो रही है
1: जी, हमारी बात बहुत दिनों के
0: बहुत दिनों के बाद जी हाँ
1: जी।
0: ओके थैंक यू सो मच।
1: आपको भुट्टा खिलाते हैं?
0: हाँ जी
1: आपको भुट्टा खिलाते हैं?
0: भुट्टा
1: जी।
0: ओके थैंक यू सो मच भुट्टा ऑफर करने के लिए। फिलहाल आपका ट्रैक मैंने प्ले कर दिया है, तो चलिए इसे हम और आप मिलकर इंजॉय करते हैं साहिबा। ओके
1: थैंक यू।
0: ओके बाय बाय।

0: सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलर के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं उनसे बात. कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पर? हेलो.
1: हेलो मैम जी, नमस्ते.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोनू सेन बोल रहा हूँ, काम खालिस बाहरपुर पोस्ट गांव जिला मीठी मीठी अमेठी से.
0: मीठी मीठी अमेठी से मोनू जी, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है मेरी.
1: जी कॉल नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत हाँ. बिजी रहते हैं, लेकिन अच्छा. मेरे क्रिया करते हैं हर पर.
0: ओके, मुझे लगा
1: हरदम जुड़े रहते हैं.
0: मुझे लगा कि मेरी ही बात आपसे बात मतलब काफी दिन बाद हो रही है, आपने कॉल ही नहीं लगाया. और आज क्या सुनना चाहेंगे
1: जी? फिल्म जिगर का है, प्यार की कागज पे दिल की कलम से.
0: और डेडिकेशन किसके लिए है?
1: सभी आरजेएस के लिए, और फहीम भैया बहुत दिन से प्रोग्राम में नहीं आए तो उनको भी लाया जाए.
0: ओके, बिल्कुल. तो ये खूबसूरत सा गाना सभी आरजेएस के लिए और खासतौर पर आपके लिए मोनू जी. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.

0: 7:42 हो चुके हैं दोस्तों, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमारे अगले कॉलर हैं। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग मैडम जी।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी जावेद अख्तर बोल रहे हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहे हैं।
0: ओके जावेद जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, और काफी दिनों बाद मेरी आपकी बात हो रही है।
1: जी हाँ जी हाँ जी।
0: बताएं कैसे हैं आप?
1: जी ठीक है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा हैं, बस वही है।
0: ये तो बात सही है। आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: वो जरा देख मेरा दीवानापन की तेरे बिना दिन ना लगे, ये गीत है।
0: ओके ओके, किसी खास को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर कटरा से हैं, और इरशाद अहमद आजमी साहब हैं, आजमगढ़ से हैं, और राजेंद्र यादव भारती जी हैं, वलीपुर मढ़ा से, राजेश कुमार वर्मा जी हैं, राज पैलेस मऊनाथ भंजन से हैं, रिंकी पिंकी जी हैं, और समा परवीन अंसारी जी हैं।
0: ओके तो ठीक है, ये सब सभी के लिए आपका ये ट्रैक जो आपने फरमाइश की, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स, 7:47 हो चुके हैं और ये देखिए कितनी जल्दी सेकेंड्स के बाद टाइम चेंज हो जाता है। 7:48 हो चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे अगले कॉलर से बात करने का, और देखते हैं कौन है इस वक्त लाइन पर। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं यास्मीन बानो बात कर रही हूँ।
0: यास्मीन, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका, और बताएं कैसी हैं आप यास्मीन?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका कार्यक्रम सुन रही थी।
0: ओके,
1: लग रहा था सुनते हुए।
0: ओके थैंक यू। सो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गाना?
1: गाना तो एक रिश्ता मूवी का सुनना चाहती हूँ।
0: कौन सा?
1: दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम।
0: ओके, और यास्मीन किसको सुनवाएं चाहिए?

0: ये किसको सुनवाना चाहेंगी ट्रैक?
1: ये ट्रैक जितने लोग सुने उन सभी को, और मेरे एक फ्रेंड है शबनम
0: ओके
1: और सनीला जी को, और
0: ओके, और कुछ कहना चाहेंगी यास्मीन?
1: क्या मैम, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पानी पीते रहें और मतलब तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें।
0: ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ओके बाय।
0: बाय बाय।

0: सो माय डियर लिसनर्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का हो गया है टाइम। 7:55 और 3 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन अपने लास्ट कॉलर को लेते हैं लाइन पर। उनकी पसंद क्या है जानते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो, अलका दीदी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। दीदी कैसी हो आप?
0: आपको भी प्रणाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बोल रही हैं?
1: थैंक यू, मैं नीलू बोल रही हूँ, रूपपुर चंदेला से। Okay. मेरी नवंबर में बात हुई थी, बहुत अंतराल के बाद मेरी कॉल लगी।
0: काफी तो अच्छा लंबा अंतराल हो गया है, मतलब नवंबर में मुझे तो लगता है कुछ महीनों बाद एक साल पूरा होने वाला था।
1: बिल्कुल। कैसे हो आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
1: बहुत अच्छी लगती है।
0: थैंक यू सो मच। और बताइए नीलू
1: जी। अच्छी हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट है मैम आपसे।
0: हाँ हाँ
1: मैम, आपको हम जीमेल में और रेमबो कैफे में सुनना चाहते हैं।
0: ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और चलिए, टाइम बहुत तेजी से नीलू आगे बढ़ रहा है, आप जल्दी से बता दें आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैम, एक गाना सुनना चाहूंगी, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। कुछ इजाजत हो तो फटाफट दो नाम दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, आप बोले। हाँ
1: मैम, सबसे पहले आप और मेरी प्रिय दोस्त पीहू मनु और रोशनी बबीता और गुलत्ता दीदी चंडीला से जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को, आप और आपके पूरे स्टाफ टीम को
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: बाय बाय
0: बाय। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को एंजॉय कीजिए और ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की अलका जा रही है। फिलहाल इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर होगी मुलाकात। टेक केयर एंड बाय बाय।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के 88वें जन्मोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि से जुड़े चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी जांच को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक धैर्य और संयम बनाए रखें तथा किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक प्रचार या षड्यंत्र का हिस्सा न बने। महाराजगंज में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन कल्याण शिविर और विकास प्रदर्शनी के तीसरे दिन आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गली मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

और आपने जो इंतजार का दरवाजा खोल कर रखा हुआ है, हौले से उसमें दस्तक हो रही है। मैं आया हूं ये कहने, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट ना हो दर पे मेरे और तू आए। 8:04:40 हो चुके हैं। वक्त की बेसुतानों और मोहब्बत में मचलते हुए अरमानों की दास्तान लेकर आपका दोस्त अनवारुल हसन मुखातिब है आपसे। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में बस खूबसूरत सी एक गजल पेश खिदमत है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

खेलने की आदत तुम्हारी आज तक नहीं गई। खिलौनों के वक्त बीतने के बाद अब तुम सुना है लोगों के दिल से खेलते हो। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ

में फिर ना जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियां, सब जमाने गुजर गए मुझ में। ये जो मैं हूं

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ये जो दिल है आपका, अगर किसी के दिल में भी उतरना है तो इसका रास्ता आपकी आंखों से होकर जाता है, और यही पहली सीढ़ी है जो सीधे पहुंचा देती है वहीं। और ये दिल बहुत सारी बातों का रास्तार भी होता है। कुछ बातें हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, कह देते हैं, और कुछ बातें छुपा ले जाते हैं। वो आया था हंसी की चमक लिए, आंखों में शरारतें छुपाए, और धीरे धीरे आपके मन में बस गया। लेकिन ये जो मोहब्बत की दास्तान है, कुछ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। कभी महसूस कीजिए तो आपको उनकी आंखों के, उनके पलकों के जो कोने हैं, वहां जुगनू जैसी कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ेगी, अगर आप महसूस कर पाए। यानी आंखें जो हर रास को आया कर देती है। चलता रहूंगा मैं, कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी, ये मुसाफिर भी कहता है। और रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी जो नागवार गुजरती हैं, उनको भी गुजर जाने दीजिए। बहुत ज्यादा अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी से सीने से लगाकर चलेंगे तो शायद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं साथ में। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं जो खुली आंखों से अपनी जिंदगी के ख्वाब देखते हैं, और वो ख्वाब कहीं ना कहीं हमसे वाबस्ता होते हैं। तो फिर सिर्फ गम नहीं है जिंदगी में, बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और उन्हीं को हम लेकर आगे बढ़ें तो शायद समझदारी इसी में है। ये थकन तो बस एक मोड़ है, आगे रोशनी बुला रही है। चल पड़ो, सफर ही जिंदगी है, रुको मत, बढ़ते जाओ। सफर की थकन कैसी भी हो, कहीं ठहरना नहीं है। तुम्हारी दीद की खातिर मेरी आंखें तरसती हैं कि जब बादल बरसते हैं आंखों से ही, और कभी कभी कुछ बादल आपकी आंखों से ऐसे ही बरसते हैं जो बहुत सारी चीजों को सुकून की तरह से सुकून पहुंचा देते हैं। तुम्हारे शहर का बादल अक्सर वैसे ही मेरी आंखों से बरस जाता है। 8:28 हो चुके हैं, 29 मिनट हो गए हैं। आप आबशार सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, अपने दोस्त अनवारुल हसन के साथ।

गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना, मुझसे कह देना और उससे कह देना जिसकी वो बात है। अक्सर मन में बहुत सारी बातें आती हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते सही वक्त पर, और फिर उम्र भर पछताते हैं। कभी कभी किसी को जाते हुए देखते हैं, आवाज नहीं दे पाते, मन तो करता है कि कह दें, बुला लें, रोक लें। शायद यही गलती हो जाती है हमसे उस वक्त सोचने की जब हम फौरन फैसला नहीं कर पाते। अगर कर लेते तो आज बहुत सारी परेशानियों से शायद हम महफूज रहते। इसीलिए कहता हूं कि गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना, बस मुझसे कहना। जो राज है दिल के कोने में छुपा, वो राज ना बांटना किसी और से, मेरे कंधे पर सर रखकर मुझे सुना देना। तुम्हारी आहें, तुम्हारी फरियादें, सब कुछ। जिंदगी की इस भागदौड़ में कई साए हैं जो बस सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। लेकिन मैं वो हूं जो तुम्हारी हर बात को दिल में समेट लूंगा बिना उसको जज किए। तो फिर जब वक्त मिले, थोड़ा सा वक्त मिले, तो बस जो भी बात है तुम्हारे जहन में मुझसे कह देना, गैरों से मत कहना।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
0: जी और रेनबो पर इस वक्त आबशार, और बस इजाजत देने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम थोड़ी देर में आपको समाचार के लिए दिल्ली ले चलेंगे और उसके बाद भी ये सफ़र जारी रहेगा मेरे साथ। जैसे ही बजेगा 9, पॉप टाइम की महफिल सजेगी और रात 10 बजे देर तक और दूर तक हम चलेंगे आपके साथ। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, लौटते हैं थोड़ी देर में।

0: औद्योगिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: plot.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का

0: 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है। और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया, और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
4: This is the country.
5: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
2: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार

जी ये म्यूजिक जो आप तक पहुंचा, आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा कुछ तेज वाला काम होने वाला है. और ये वक्त होता भी ऐसा है क्योंकि 9:50, 52, 53 एक बीच में उछल गया कहीं पर, इतने जो है सेकंड भी हो चुके हैं और आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि पॉप टाइम जो है वो बस आप सुनने वाले हैं. और मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं और आपके मेल बिल्कुल हम तक पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं. और यही वो मौका है जब हम आपसे भी कहते हैं कि अगर आपके साथ दिन भर कुछ बहुत बेहतरीन हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और थोड़ा सा आपका फिर कल का दिन अच्छा जाएगा क्योंकि आपकी रात भी अच्छी जाएगी, हंसते गाते मुस्कुराते हुए फिर आप सो जाएंगे. हालांकि आपको तो काफ़ी देर, अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, मैं तो बहुत देर तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, ये फैसला आपको करना है. आपके काम ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा. तो पहला मेल जिस जैसे जैसे हमारे पास पहुंचते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पढ़ना शुरू कर दूं क्योंकि उसके बाद इतनी मेल की बरसात होने लगती है. जब बस 15 मिनट का वक्त रह जाता है तो मेल बहुत ज़्यादा एकदम से कुछ लोग जागृत होते हैं, तो थोड़ा सा पहले से जागृत हो जाइए. सिर्फ जागिए नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि हम रेनबो सुनने वाले हैं, तो सिर्फ जागिए नहीं बल्कि जागृत रहिए हर वक्त आप. तो सुल्तान रजा साहब का मेल है जो पहला मेल है, लिखते हैं अनवारुल सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, आप उम्मीद है कि आप एक ही होंगे, वैसे आपने लिखा है आप अच्छे होंगे, आपने लिखा लिखना चाहते होंगे आप, वैसे हम अच्छे अच्छे हैं नहीं फूल है गुलाब का और नशा है पॉप टाइम का. आप तो पूछेंगे नहीं, हम भी पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है आपका. वाह वाह क्या बात है भाई, शेर शायरी आप अच्छा अच्छा कर लेते हैं आपका. और इसके ये कहाँ से लिखा है, कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, ज़ीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा और पूरा पूरा परिवार भी आपका साथ में सुन रहा है. और साथ में जो आपने तस्वीर भेजी ना, इसकी सचमुच बहुत ज़रूरत होती इस वक्त, है ना. चाय भेजी आपने और लिखा है कि हम शुद्ध मिडिल क्लास हैं. हाँ और क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर दर्द होने पर दवाई की जगह चाय पी जाती है. चलिए ऐसी बातें आप कीजिए, हल्की बोल की बातें अच्छी लगती है हमेशा. विजयपाल जी आपका भी आ चुका है मेल हमारे पास, विजयपाल यादव जी हैं ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है और आप हमारे साथ सुन रहे हैं. आपने ये भी बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है कि कार्यक्रम पॉप टाइम अनवारुल हसन भाई जी के साथ. चलिए और क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि सादर नमस्कार, चलिए आपको भी नमस्कार सलाम. दिल आपकी याद में उदास है, बस आपको मिलने की आस है. न जाने कितने लोग हमारे पास हैं लेकिन हमारे लिए आप ही खास हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे श्रोता हमारे लिए खास होते हैं. आबशार प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है और पॉप टाइम आप लिखते हैं कि अब ये तो झक्कास होना ही चाहिए क्योंकि आप हैं, आपकी बस हंसी ही काफ़ी है. क्या गज़ब की प्रस्तुति, अभी प्रस्तुति कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आके देखिए क्या होता है ना. तो कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहा हो पंखे की हवा के साथ. चलिए थोड़ा सा मौसम तो बेहतर हुआ ही होगा, हालांकि मौसम विभाग अभी जो है आगे आने वाले 3 दिन हैं वो कह रहे तो यही रहा है कि जो गर्मी है ये थोड़ा सा राहत देने वाली है नहीं, थोड़ी सी लू वगैरह और चलेगी तो और ज़्यादा मौसम थोड़ा सा सता सकता है, परेशान कर सकता है. तो बस आपको करना यही है कि थोड़ा सा पानी वानी ज़्यादा पीते रहिएगा. बिल्कुल वैसे ही मेरी भी बोतल बगल में रखी हुई है पानी की. जी रेनबो कैफे पेश करने वालों का हमारा आदाब. ये मेल किसने किया है हमको, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजी प्रधान. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने कह दिया बहुत दिन से आपने अपनी डीपी नहीं बदली है, ये सारा सब फोटो बदली है ना, वैसे इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. लेकिन मुझे पता है भाई आजकल तो हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में फोटो खींचते हैं, अभी हमारी एक फोटो खींची है थोड़ी देर पहले, अब देखिएगा कुछ दिन में हो सकता है कल ही आपको दिख जाए, है ना. सोशल मीडिया में आया करिए तो देखा करिए कि हम कर क्या रहे हैं वहाँ पे, है ना. कल भी एक डाली थी, रात में भी एक हम नई फोटो डालेंगे, तब आपको कुछ और पता चलेगा. ठीक, इंद्रपाल मिश्रा जी का भी मेल

देखिए हम तक आ चुका है ग्राम अमृता सीतापुर से इंद्रपाल जी ने हमें लिखा है, साथ में आशा अवनीश विनीश विनीश अक्षत गरिमा और रजनी भी हैं। लिखते हैं कि आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने का ढंग निराला है। चलिए अब हमारी तारीफ हो रही है तो पल दिया हमने। रामराज जी आपका भी मेल आया है, श्री गणेशाय नमो। पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु शंकर भैया बंटी यादव पप्पू पासी, हम इसको याद कर लेंगे। अब आप आता है आप बस आपका बस, क्योंकि आप बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं केवल नाम बदल देते हैं वहाँ पे। हाँ आगे सबके नाम ले लूँ, पप्पू पासी के बाद मनीष नीरज मधु बजरंगी काका। सबसे पहले हमारी तरफ से अनवारुल हसन को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, हाँ इसकी बहुत जरूरत है मुझे। धन्यवाद आपका, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है आपको, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। रामराज जी शुक्रिया कहते हैं कि आपकी ये जो भागीदारी हमारे साथ यूँ ही बनी रहे, बाकी लोगों के साथ ही बनी रहे। तालिब अंसारी साहब आपने रोमन में हिंदी में उर्दू में तीनों चीज़ें तीनों भाषाएं मिलाकर लिख दिया है, चलिए हम तीनों को पढ़ देते हैं। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन सर जी, कैसे हैं आप? ये आपने उर्दू में लिखा है, फिर आपने हिंदी में लिखा है, तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी, तो फिर आपने रोमन में लिखा यानी इंग्लिश वाला रोमन इस्तेमाल करते हुए कि प्रोग्राम तो झकास लग रहा है, आबशार हमको बहुत अच्छा लगा और शायद इस कड़क गर्मी में ठंडक का एहसास हो जाए पॉप टाइम में। नहीं गर्माहट आनी चाहिए हम तो कहते हैं प्रोग्राम में, है ना? ऐसे गाने बजेंगे थोड़ा सा, लेकिन गाना बस भैया खाली काफ़ी देर हो गई, कौन सा गाना बजाना था ये वाला, अब इसमें लिखा नहीं है कुछ, में कुछ लिखा रहता है इसमें खाली ट्रैक करके लिखा हुआ है, लेकिन हम सुन चुके हैं, हमको पता है। देखिए मज़ा आएगा आपको, मज़ा ना आए तो पैसे वापस।

जी लुटिया वाला गाना अब तक पहुंच गया, दिल लुटने की बात थी लेकिन मुझे लुटिया से मेरा दिमाग पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। वो मुझे एक आप अच्छी आप भी जानते हैं वो लुटिया कहलाते हैं ना, जिसमें जो लोटे का एक छोटा रूप है ना वो भी होती है लुटिया, है ना, पानी वानी के लिए जो काम आती है। 9:11:09 और पॉप टाइम सुन रहे हैं आप अनवारुल के साथ, और बहुत सारे मेल आपकी भागीदारी जैसे कि हमेशा की तरह से आज भी है, और इसके बाद जो मेल है यानी भैया मोनू सेठ जी आपका मेल है तो हम आपको पढ़ देते हैं। मोनू सेठ खालिसपुर ऊंच गांव शुकुल बाजार, मीठी मीठी अमेठी, वाह क्या बात है, ये अच्छा है, नवाबों का शहर लखनऊ, मीठी मीठी। अब मेरा हाथ लग गया इसमें, देखिए आवाज़ आई, ये ऐसे अगर इसमें हाथ लग गया तो ऐसे आवाज़ आती है, कान फोड़ू इसी को कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि कान में क्या हुआ आपके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, अन्नू भैया जी इनको बड़ी पुरानी यादें हैं, वावस्थाएँ जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो इन्होंने वही मुझे लिख दिया है, एक प्रोग्राम हिट पेट एफएम स्टाइल कभी आया करता था जिसमें मेरा ये नाम था, डॉक्टर अन्नू भैया, PPMF है ना, वही है, प्राइमरी पास मिडिल फेल। अनु भैया जी नमस्ते, सलाम, कैसन है आप, उम्मीद आए बहुत नीक हुए हैं, आज बहुत बिजी थे लेकिन 2 घंटे क्रिकेट के लिए और आपको मेल करने के लिए समय निकाल लेते हैं, और पॉप टाइम बहुत उम्दा होगा ईमा कोनो शक नहीं, भाई कोशिश तो करेंगे हम, बाकी वक्त बताएगा और आप लोग बताएंगे जो आपके मेल हम तक पहुंचेंगे। चलिए शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और आप अपने काम से आपने समय निकाला और आप समय निकाल के हमको मेल भी करते रहते हैं, रेडियो भी तेज से बजाते रहते हैं, ना तो खुद सुनते हैं यानी खुद भी सुनते हैं और बहुत से लोगों को भी सुनवाते हैं, अभी उल्टा हो जाता मोहम्मद आसिफ साहब आपका भी मेल हम तक पहुंचा है, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, और आबशार आपको अच्छा लगा है आप, अच्छा पिछली बार हमने कहा नहीं था, हम टाल गए थे, इस बार हम आपको बता दें, इसको ठीक कीजिएगा आगे, देखिए आप उस प्रोग्राम का नाम है आबशार, है ना, आपने लिख दिया है अफसार, AFSAAR है ना, ये अफसर की तरह अफसार हो गया है, प्रोग्राम का नाम आबशार है, आबशार को आबशार का मतलब होता है झरना, तो गज़लें जो होती हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही आपके, अगर आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत ध्यान से उनके जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं उनको सुनते हैं तो वो हमारे मन में उतर जाती हैं, कहीं ना कहीं आप उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं, तो जैसे कि एक झरना कल कल कर बहता चला जाता है वैसे ही उनको उन गज़लों पर भी महसूस होता है, इसलिए उस प्रोग्राम का नाम आबशार है। आब को अगर अलग लिखा जाए तो आपका मतलब है पानी, लेकिन आबशार को अगर लिखा जाए तो उसका मतलब है झरना, तो आगे से आबशार लिखिएगा प्लीज़, और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात बुरी लगे, सिर्फ आप अपने इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ ठीक हो जाए, है ना। अच्छा लगा अनवारुल भाई, और सर मेरे साथ आज क्या हुआ मालूम है, नहीं हमें नहीं मालूम, आज हम क्रिकेट खेलने गए और मैं 2 बार आउट हुआ लेकिन हम आउट ही नहीं दिए, हमको आज फुल बैटिंग मिली, यानी आप आउट हो गए थे और आपको आउट दिया नहीं गया, अब कैसे ऐसा हुआ होगा भाई, ये तो हमें समझ में आया नहीं, हो सकता है कि ओम प्रकाश उजाला होते तो बता देते, है ना अभी आए थे मुझसे मिलने, वो सुबह आते हैं ना आपके प्रोग्राम में, आप सुनते हैं उनको सुगंध बाटी में अक्सर। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से ये मेल हम तक पहुंचा है, और जब भी मेरा हाथ फिर लग गया, इसको हम दूर सरका दें ज़रा, है ना, ये जो माइक है मेरे बहुत पास आ गया, अभी जब गाना बजाएंगे थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट करेंगे, हमारा हाथ लग रहा है इसमें। तो अस्सलाम वालेकुम डियर अनवर सर जी, कैसे हैं आप, प्रोग्राम हन हनवा लग रहा है ज़बरदस्त सुपर हिट, और मेरे रेडियो दोस्तों के नाम, चलिए आप ले लीजिए, आपने

लिखे हैं तो नाम शामिल कर लीजिएगा, कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी, महेंद्र दीपन, गौस मोहम्मद अंसारी, और साथ में जो आपने एक छोटा सा एक क्लिप भेजा हुआ है जिसमें डांस हो रहा है, आहा क्या डांस है, हम ही अकेले देख पा रहे हैं और मजा कर पा रहे हैं, क्या पैर चला है इन्होंने, मगर सबको दिखाइए ना आप, सबने अपनी मन की आंखों से देख लिया होगा। बाबू अंसारी के साथ ये खास बात है कि जब ये बेल करते हैं ना तो इस तरीके की भी चीज़ें हमको जो है जिप फाइल होती है वो भेज देते हैं, तो वो चलती हुई दिखाई पड़ती है, नाचती हुई, गाती हुई, गुनगुनाती हुई, तो कभी कभी मज़ा आ जाता है इनके मेल को पढ़कर। वकील अहमद साहब का भी मेल है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। और ये मेल हमारे पास आया है कटका हथौरी ज़िला सीतापुर से, रिंकी पिंकी लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी हम यहाँ, मैं समझ नहीं पाया इसको, रिंकी पिंकी लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी है यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए, और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, इन्होंने ये हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी, ये किसी को पता नहीं था। चलिए ऐसी जानकारी आपके पास भी हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। कमल पांडे आपको भी पढ़ने पर एक गाना हम पहुँचाएंगे। अनवार हसन सर जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे ग्राम मोहल्या कला चौराहा ज़िला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ, मैं कार्यक्रम पॉप टाइम में शामिल हो चुका हूँ और बजने वाले गीतों का पूरी तरह से आनंद ले रहा हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, अब हम भेज रहे हैं, थोड़ा सा सोलो आपको ज़रूर लगेगा लेकिन सोनू निगम जी की आवाज़ आय है कमाल कर देती है, दीवाना कर देती है।

जी, और अगर आपका भी हाल कभी कभी ऐसा ही हो जाए दीवानों जैसा, तो फिर आप रजनीगंधा जरूर सुना करिए, और मेरे साथ अगर रहिए तो फिर आप 11 बजे के बाद आ जाइए, आराम से 12 बजे तक आप ही की मन की बात करेंगे फिर हम। 9:22 हो चुके हैं, आप अनवारुल हसन के साथ हैं और पॉप टाइम सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। और इस वक्त जो मेल मेरे सामने खुला है बड़ा कलरफुल है, इसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, बड़ा आराम से दिख जाता है, चश्मा चश्मा भी नहीं ठीक करना पड़ता हमको, पता है ऐसा मेल जब सामने आता है तो। ये रोशनी रावत जी आपका मेल है, और चाय की प्याली भी है, चाय की जो है केटली भी है, और बड़े अच्छे फूल भी हैं, शायद रजनीगंधा वाले आपने भेज देखे हैं, और मुस्कुराते हुए कुछ इमोजीज भी हैं। नमस्ते रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी, आप कैसे हैं? प्रोग्राम आबशार आपको अच्छा लगा? 4 बजे से इंतज़ार कर रही थी। आपको 4 बजे पता चला, हमको 3:30 बजे पता चला। सर जी एक विनती है आपसे, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आइए, हम बता चुके हैं कि हम आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं, कोई और बैठा मिलता है यहाँ आने की सीरियस है ना। और अच्छा कुछ लोग कुछ नाम एक बड़ा ख़ास आपने लिख दिया है कि किसके साथ आइए किसके, देखिए अब जैसा हम लोगों से कहा जाता है ना बस वैसा ही करते हैं है ना। तो जब कहा जाएगा हम सुबह सुबह आ जाएंगे, उस दिन ज़रा सा जल्दी उठ जाएंगे, अलार्म लगाएंगे 4 बजे का सुबह का, और 5:15-16 पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर लिख रही हैं कि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा इंतज़ार कब ख़त्म होगा? सर जी पॉप टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, गर्दा उड़ाने वाला प्रोग्राम चल रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम वापोत बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आप सुन रही हैं, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं, अच्छा रहती हैं वहाँ पे, ये आप हर बार बता देती हैं। बबीता राव गुल्फशा से दीदी

शर्मा दीदी, साहिब अंसारी, शाजी अंसारी को भी राधे राधे बोल दीजिए, उन्होंने सुन लिया राधे राधे, आप सबको जिनको आप कहना चाहती हैं। और ये जब बार बार बताएंगे ना कि आप वहाँ नहीं रहती हैं यहाँ रहती हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ घर का अपना ख्याल रखिएगा, है ना। वैसे ईश्वर करे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन बताया नहीं जाता जब कहीं बाहर जाते हैं तो, है ना। अजय कुमार जी, आपका भी मेल हम तक पहुंचा है। प्रिय आर जी, मेरे अजीज अनवारुल हसन सर जी को प्यारा सा गुड इवनिंग। सर आप कैसे, उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। सर पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, गजलें बहुत अच्छी लगी। सर आप यूं ही आते रहिए, बहुत उम्मीद रहती है आपको प्रोग्राम में आने की। चलिए आप कह रहे हैं तो हम कल फिर आ जाएंगे, है ना, झूठ नहीं बोल रहे हम। आपको प्रोग्राम में आने की जैसी ही सोशल मीडिया पे जानकारी होती है कि आज आप आ रहे हैं, सर बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत बहुत आभार आपका। और किसी और को भी आपने गुड इवनिंग बोलने के लिए कहा है तो चलिए उनको भी गुड इवनिंग, जिनको आपने कहा है, हम अलग से कल जो है मैसेज कर देंगे धीरे मैसेज, जब कोई नहीं देख रहा होगा घर में हमारे, है ना। ऐसे मैसेज चोरी किए जाते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, अपने तक ही रखिएगा इस बात को। सर आप रजनीगंधा सर आप रजनीगंधा स्पेशलिस्ट 12 बजे तक साथ हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे मेरे भी हिम्मत बंधी रहती है कि चलो कोई है तो जो हमारे साथ सुन रहा है तो डर नहीं लगता है, अकेले नहीं है ये लगता रहता है। मैं अजय कुमार सिंह फतेहनगर सीतापुर से मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका कि आपने हमें लिखा। फिर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, मोहम्मद आसिफ साहब आपका मेल। काफ़ी देर से आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, आप 16 मिनट से इंतज़ार करें, 9:10 पर आपका मेल अब तक पहुँचा था, 9:26 हो रहे। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद, ये तो कि हम पढ़ चुके हैं आपका एक मेल, आपने दोबारा लिख दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हैदराबाद से, और हैदराबाद अच्छा है, मैं तेलुगु में लिखूं तो आप पढ़ देंगे। अब हम देखिए, हम अब इम्तहान नहीं देंगे। हाँ अगर हमें पढ़ने से कुछ हासिल हो, कोई डिग्री मिले तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ तो इसलिए मेरा इम्तहान मत लीजिएगा, हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं। तालिब अंसारी साहब का मेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो मेरा ख्याल आपका मेल मैं पढ़ चुका हूँ और आपने फिर से हमें शायद एक मेल कर दिया है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि सभी को मौका मिल जाए। वारिस अली ख़ान साहब आपका भी मेल आ चुका है। अनवारुल भाई को आदाब अर्ज है। तुम खुद उलझ जाओगे मुझे गम देने की चाहत में, मुझ में हौसला बहुत है, मुस्कुरा के निकल जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप कार्यक्रम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस शो में आप कमर को थिरकवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन रजनीगंधा में सॉन्ग सुनकर दिल ज़रूर झूमेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। एडवोकेट वारिस अली ख़ान साहब संजय नगर ऐशबाग से आपने हमें ये मेल किया है, और आप बढ़िया गाड़ी वाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, ये फ़ोटो हमें दिखाई पड़ रही है आपकी। कृष्ण खास सिंह जी, आपका भी मेल आया जी। डियर आर जी अनवारुल जी नमस्कार, बड़ा खूबसूरत सा मेल आप भी भेजते हैं, कुछ बोल्ड कर देते हैं, कुछ ऐसे ही रनिंग मैटर लिखा रहता है, कुछ बहुत सारे प्यारे प्यारे इमोजीज भी हैं, कुछ गिटार भी हैं, और एक सितार भी भेज दीजिएगा और एक तानपुरा भी, रात में रजनीगंधा में हमारे काम आएगा, है ना। पॉप टाइम प्रोग्राम जब भी आप होस्ट करते हैं तो सुनकर आनंद आ जाता है। आप 8 बजे शाम की न्यूज़ पढ़ते हैं तो वैसे पता चल जाता है। अच्छा, ये भी नई खबर है कि आज 12 बजे रात्रि तक एफएम रेनबो लखनऊ प्रसारण सेवा पर सुपर हिट गानों की झड़ी लगने वाली है। सुनते सुनते बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, जिससे सुबह हम बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं। ये है हमारे स्वीट एफएम रेनबो लखनऊ के आरजेएस का मैजिक। बिल्कुल अनवारुल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराइच से जहाँ मिठाई मिलती है वहाँ से हमें ये मेल किया है। अब मुझे लगता है मुझे गाना बजा देना चाहिए, कुछ ज़्यादा लंबा हो रही बातें, और ये वाला बजाएंगे, ये डूबा डूबा डूबा डूबा, और आप भी इस गाने में डूब जाइए। देखिए किससे बजेगा, हम यही भूल गए किससे बजा रहे थे। आ गया गाना, हाँ सही बजाएगा।

जी, लाल लाल लाल ले आओ आप भी कुछ। 9:32 हमारी जो घड़ी है सामने लगी है, ये भी लाल लाल ही है, तो इसीलिए मुझे इस गाना जो है अच्छा लगा। आराधना मिश्रा जी, आपका मेल आ चुका है काफ़ी लंबा, थोड़े से मेल छोटे लिखा कीजिए, क्योंकि मेल काफ़ी सारे भी हैं, और अगर मेल सारे हम पूरे पूरे पढ़ेंगे तो फिर गाने बहुत कम बजेंगे, ये भी अच्छा नहीं होगा। आराधना मिश्रा पांडे जी ने हमें सृष्टि अपार्टमेंट लखनऊ से ही मेल किया है, और आप बहुत बचपन से, चाइल्डहुड से आप हमें सुन रहे हैं, यानी आप रेनबो को सुन रहे हैं, और विद भारती भी आप लगातार सुनते रही हैं, आपने लिखा है, और आपने कुछ अपनी बातें याद दिलाई हैं कि किस तरीके से लगातार आपका जो संबंध है बहुत पुराना रेडियो के साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है, फिलहाल ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए गाना तो कोई ना कोई पहुँचेगा, तो आप मान लीजिएगा कि वही गाना आपके हस्बैंड के लिए हो गया। जितेन नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ये मेल हमारे पास ग्राम व पोस्ट खरौदी जिला शहडोल से आया है, यानी मध्य प्रदेश से आया है, और तबीयत आपकी बड़ी खुश हो गई है प्रोग्राम सुन के, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका हम मेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए सॉरी, हम इस मेल को हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बबीता जी, आपका मेल भी बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा कलरफुल, वैसा ही जैसा कि अभी रोशनी रावत जी का था, वैसे ही आपने भी लिखा है, और एड्रेस लिखा है बेली कला गोसाईगंज लखनऊ से। आपको 8 बजे से सुन रही हूँ, गज़लों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और पॉप टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद इंतज़ार है रजनी गंधर प्रोग्राम का, वो भी बहुत अच्छा, चलिए अब कैसा होगा वो फिर आपने, चलिए शुक्रिया आपको अगर ऐसा लगता है। आपका प्रोग्राम मम्मी पापा, विनीता दी, रजनीश भाई, महन भाई, रोशनी रावत जी, नीलू जी।

बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि देखने की चीज़ है हमारी दिलरुबा, बार बार देखो हज़ार बार देखो। तो अगर आप इस तरीके से मेकअप करके इतनी खूबसूरती के साथ आएंगे तो फिर लोग देखेंगे भी, फिर आप कहेंगे मैं शर्माऊंगी। नीलू शर्मा जी का मेल रूपो चंदेला से हम तक पहुंचा। अनवारुल सर को मेरा सलाम आदाब कबूल हो। आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यासिर भैया मियांगंज से, गुलफशा दीदी संडीला से, पीहू कानपुर से, वंदना रोशनी बबीता, संदीप भैया, राजेश भैया, ओम भैया, सभी को नमस्कार बोल दीजिएगा। चलिए सभी लोग जो भी सुन रहे हैं सभी को नमस्कार, मैंने भेज दिया है। विकास यादव जी आपका भी मेल हम तक है, और दो मेल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, 10 मिनट पहले आपने जो भेजा है हम इसको पढ़ते हैं जो नीचे आपने। अच्छा, आपने दो बार भेज दिया, आपको लगा कि शामिल नहीं होगा, बिल्कुल शामिल होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो बिल्कुल ये गारंटी के साथ यकीन रखिए कि आपके सारे मेल पढ़े जाएंगे। नमस्कार, हम विकास यादव आपका प्रोग्राम यूपी के सुल्तानपुर से सुन रहे हैं। हमें भोजपुरी गाने सुनने में मज़ा आता है, तो कल भोजपुरी हम सुना देंगे आपको, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग का इंतजार कब निकल जाता है यानी ये पता आपको नहीं चलता, बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। बस हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग मेल जो है थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो जल्दी शामिल हो जाएगा और आसानी के साथ हम उसको पढ़ भी पाएंगे। राज कमल यादव जी ने हमें मेल किया है, बरैया शायद जगह का नाम है, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी। राधे राधे सर जी, कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, हमारे फेवरेट सर जी आए हैं। सर जी आपको भुट्टा भुट्टा क्या कि ये रुक गए, ये भुट्टा उट्टा खिलाने की बात कर रहे हैं लगता है हमको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक मेल और पढ़ देते हैं। पॉप टाइम आज अनवारुल हसन सर जी के साथ, हम सबके अनमोल रतन अनवारुल सर जी को मेरा प्यार भरा सलाम नमस्ते। और कैसी हैं आप, ये हर बार लिखते हैं पता है, हम कुछ कहते हैं नहीं उनको, क्योंकि हम कहते हैं हमें कुछ भी कह लो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा खाल मोटी हो गई अब। पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत बहुत झनझनुआ चल रहा है, अब हमें बड़ा सीखने को मिलता है आप लोगों से, हनहनुआ सीखा, झनझनुआ सीखा, हपक के सीखा, तो ये आप ही लोगों से हम सीखते हैं। हम आपके साथ पूरे एक दिन यानी अगली तारीख तक रात 12:03 तक रहेंगे, आप अकेले नहीं रहोगे, हम बीच बीच में मेल करते रहेंगे। देखिए मेल तो हम उस वक्त नहीं पढ़ते क्योंकि वो मेल का प्रोग्राम नहीं है, आपको अकेलापन महसूस ना हो। तेज बहादुर यादव, ममता यादव जी ने ये मेल किया है, गाँव मऊ शर्की ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, पर अभी गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। चलिए गाना हम आप तक पहुंचाते हैं बढ़िया सा, और ये आ गया।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी, और अभी नहीं चलेंगे फिलहाल इस प्रोग्राम से, तो चलेंगे 10 मिनट बाद। मुनेश कुमार राज जी, आपका भी मेल आ चुका है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से आपने, और अनवारुल हसन सर जी को राम राम, राम राम आपको भी। कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम आप सुन रहे हैं और एफएम के दीवाने हैं, और आपकी आवाज़ से हमें हर कोई जाने है। क्या बात है, थिरकने से पहले ही पसीना पसीना हो रहे हैं, कैसे थिरके। या तो कोई बढ़िया सा भोजपुरी गाना बजा दीजिए, भोजपुरी गाना बजता है आप जब रेनबो कैफे सुनते हैं तो, क्योंकि आज इस वक्त आप पॉप टाइम सुन रहे हैं तो भोजपुरी गाना आपको कल सुनने को ज़रूर मिलेगा। कल रहिएगा मेरे साथ, नहीं तो बिल्कुल आपको हम सुनवा देंगे। गुलफशा सिद्दीकी, आपका भी मेल आ चुका है, और संडीला से आपने लिखा है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ इसलिए कभी कभी एफएम सुन पाते हैं। और साथ में आपने जिशान खान, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, परवीन साहिबा और हम सब सुन रहे हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही रेनबो के साथ बने रहिए। अरविंद कुमार जी, आपका भी मेल है, आपने शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद कहा, और एक से एक बढ़कर हिट गाने आपकी, आपका जो मूड है वो डांस और मस्ती वाला हो गया है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अच्छा, मेरा मेल शामिल कर लीजिए भाई, कर लिया आपका मेल हमने। तन्वी तिवारी, प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, दीपा गोविंद, अरविंद दुबे, ग्राम धर्मदेव, जिला मिर्ज़ापुर से आपने हमें ये मेल किया है।

चलिए टाइम कम है तो जल्दी से हम कुछ और मेल पढ़ देते हैं और एक गाना भी आप तक बजा देते हैं क्योंकि फिर लौट कर आना भी है। अरविंद कुमार दुबे जी का मेल हम तक पहुंच चुका है और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें ये मेल किया है, इसके लिए शुक्रिया। राजकमल यादव जी आपका भी मेल, संगीता यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से आपने लिखा है। नमस्कार सर जी, प्रणाम, कैसे हैं? आपकी नियमित श्रोता हूँ सर जी, आम खाने के लिए आपको बुला रहे हैं, आप आइए। अच्छा, तो इस पते से पहुँच जाएंगे हम। हमारे साथ राजकमल यादव जी भी हैं, चलिए शुक्रिया। राजकमल जी भी अगर रहेंगे तो हम आम ज़रूर खाएंगे। जावेद अख्तर साहब आपका भी मेल हम तक पहुंचा और आपने हमें ये मेल रेशमी नगरी मुबारकपुर आज़मगढ़ से लिखा है। शमशुर कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा और गानों का इंतखाब कमाल का है, बस इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि वक्त कम है तो अगर अभी आपने मेल नहीं लिखा है तो अब मत लिखिएगा क्योंकि फिर बेकार जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे कि भई हमारा मेल नहीं पढ़ा जाता है। तो बस मेल ज़रूर पढ़ा जाता है। रजनीगंधा की खुशबू बहकाने के लिए 10 बजे हम फिर वापस लौटेंगे समाचारों के बाद, और फिलहाल हम पॉप टाइम से आपसे हम इजाज़त मांगते हैं तो बढ़िया सा एक गाना आप तक पहुँचा देते हैं और फिर वापस लौटेंगे। तो बस बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वे आज जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, राजस्व तथा मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना, गोल्डन कार्ड, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं का जायजा लिया गया। जनपद बदायूं के डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उनके सुखद व सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। विभिन्न जल कल्याणकारी व लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्रों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने रीति रिवाज को पूरे हर्ष के साथ मनाना चाहिए। गोरखपुर एयरपोर्ट पर आज उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर सुनीत जाधव के आगमन पर उनका भव्य और यादगार स्वागत किया गया। JJID कोड के डायरेक्टर एवं फिटनेस गुरु ई मास खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फिटनेस प्रेमियों, युवाओं और समर्थकों ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। सुनील जाधव के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लादकर और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और जोश का माहौल बना रहा। बलरामपुर में मुहर्रम सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि सभी त्योहारों को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं शांति के साथ मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जवां हो उठा है मोहब्बत का जुनून, और मोहब्बत में भीग कर कहीं ना कहीं फिर से धरती पर उतर रही है एक और जानी पहचानी रात। रजनीगंधा के आंगन में जज्बात की शमा रोशन करने का वक्त और ये जिम्मेदारी आज आपके दोस्त अनवारुल हसन के पास है। तो बस स्वागत करते हैं हम आप सबका इस सफर में। नमस्कार।

है आबाद लाखों जहां मेरे दिल में, है आबाद लाखों जहां मेरे दिल में, रहो तो रहो जाविदा मेरे दिल में। उतरती है धीरे से रातों की चुप में, तेरे रूप की कहकशां मेरे दिल में।

जागते भी हैं और दिल भी धड़कता है अक्सर, जोर जोर से, बार बार, घड़ी घड़ी, क्योंकि ये दिल बेकरार हो जाता है जब भी वो नजर आते हैं। मोहब्बत का एक नया एहसास जैसे जाग उठता है, तुम्हारा नाम महसूस होता है हर बार, हर धड़कन में, हर धड़कन जैसे एक नई दास्तान बुन रही हो। ये इश्क, ये बेइंतहा तमन्ना, सब कुछ बस तुम्हारे लिए है। मेरे दिल की ये धड़कन, ये रवानी बस तुम्हारी यादों की महफिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, गुजर जाती है चुपके से। और मोहब्बत में दिल धड़कता है बार बार, क्योंकि आप नहीं कर पाते हैं मोहब्बत का इजहार। तो क्यों नहीं कह देते मन की ये बात उनके सामने है?

मोहब्बत तो इतनी शिद्दत से है तुमने जो हमसे की, लेकिन कभी कभी लगता है ये सच में है या बस कुछ ख्वाब की तरह तो नहीं होगा, या यह हकीकत है या ख्वाब। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ, क्योंकि किसी की मुस्कुराहट में कभी कभी कई राज भी होते हैं। हर सन्नाटे में कोई आवाज गूंजती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा होना मुझे और भी तन्हा कर देता है। तुम्हारी आंखों में उतर कर देखता हूं तो लगता है दुनिया है यहां, लेकिन कभी हाथ बढ़ाऊं तो लगता है कि पानी की बुलबुली की तरह टूट तो नहीं जाएगी। कहां से शुरू होता है ये इम्तिहान, ये चाहते हैं, ये ख्वाहिशें, किस मोड़ पर ये हकीकतें बदल जाती हैं पता नहीं चलता। और इसीलिए मैं हर रोज तुम्हारे नाम की दुआ करता हूं, मगर दुआ कहीं कोई दास्तान ना बन जाए, कोई जज्बात टूट कर फिर खामोश ना हो जाए। ये भी डर लगता है, शायद तुम किसी सुबह की किरण की तरह हो मेरे ख्वाबों में उतरते उतरते, कुछ सच्चाई की तरह, एक रोशन ख्याल की तरह, या फिर वो साए की तरह जो मेरे साथ हमेशा चलता है। तुम्हें पहचानना चाहता हूं दिल की गहराई से रूह के सुकून तक, और हर बार जब नजरें उठाता हूं तो कभी कभी लगता है तुम कहीं गुम हो जाती हो, और फिर मुझे यही लगता है कि जैसे मैं अभी भी जान नहीं पाया कि ये ख्वाब है या सच में कोई हकीकत।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जा

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: भर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब

0: हर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो।
1: छुप के तकते हो क्यों सामने आओ जी, छुप के तकते हो क्यों सामने आओ जी, हम तुम्हारे हैं हमसे ना शर्माओ जी। ये ना समझो कि हमको खबर कुछ नहीं, सब उधर ही उधर है इधर कुछ नहीं। कहते भी है कि मोहब्बत में आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है।

कोई भी हो, आपको बाहर ही दिखाई पड़ती है, हर तरफ फूलों की रंगत जैसे बिखर गई हो, तो बस हर पत्ता पत्ता सरसराहट करता है और आपको लगता है कि बस वो आ गए जिसका इंतजार था। ये सब बताता है कि इश्क की उम्र भी जवान है, तरोताजा है, नशीली भी है। तो देखिए ना, वो गुलाब की कली जो कल तक झुकी हुई थी आज सर उठाए खड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे मोहब्बत का घूंघट हटते ही चेहरा चमक उठता है, ये दिल की धड़कनें या आंखों की नमी सब कुछ कह रही है, और ये कह रही है कि शायद आपको इश्क हो गया है और इसीलिए आपका दिल पुकार रहा है पिया पिया। 10:35:37 मोहब्बत की इसी झंकार को आप महसूस कर रहे हैं रजनीगंधा में आज अनवारुल हसन के साथ।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

देखकर तुमको किसी रात की याद आती है, देखकर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है, जहन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई फिर रात की याद आती है।

ऐसी ही खामोशी होती है कभी कभी, और ऐसी खामोशी में अपनी धड़कनें अक्सर साफ साफ सुनाई देती हैं। ये धड़कनें क्यों गिनने लगते हैं हम अकेले में? शायद तब जब कांच की तरह बिखर कर रह गए हों किसी के ख्वाब। फिर याद आते हैं वादे भी, और बहुत सी यादें भी, और वादों को अगर वक्त रहते नहीं सहेजा जाता तो फिर उनकी मियाद खत्म हो जाती है और उम्र भर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और फिर क्या होता है? समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:56 हो चुके हैं रात के। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा आपके दोस्त अनवारुल हसन के साथ अभी एक घंटा और।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के सफल क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में आज वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि वितरित की। जनपद रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाई जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद फर्रुखाबाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कुसुम कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी भूमि के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर रसायन मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चंदौली में 5 जून से 21 जून 2026 तक संचालित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ITI परिसर रेवसा में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा LED वैन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

अपना अपना सुख। कोई डर है शायद, कोई ऐसा डर, कोई ऐसा एहसास जो दिल की अंधेरी कोठरी में आकर बैठ जाता है और फिर दिल के अंदर पहले जैसी रोशनी नहीं रहती। डर का ये एहसास हर ख्वाहिश को डस लेना चाहता है किसी जहरीले नाक की तरह। रजनीगंधा के इस हिस्से में वक्त के ऐसे ही अंधेरे सायों से अपना सर टकरा रहा है आपका दर्दमंद दोस्त, जी हां, अनवारुल हसन। और कौन,

कुछ मुसाफिर जिंदगी के सफर में ऐसे होते हैं जिनका साथ सिर्फ एक मोड़ तक ही तय होता है। अब हमारी दास्तान मोहब्बत भी उसी मुकाम पर पहुंच चुकी है शायद, जहां हर लफ्ज बेमानी है और हर खामोशी सजा बन चुकी है। वो जो एक रिश्ता था हमारे दरमियान, अब वो एक बोझ बन गया है। इस बेरुखी और कश्मकश से तो यही बेहतर है कि हम खुद को इस उलझन से आजाद कर लें। चलो आज इस मोहब्बत के फसाने को यही मुकम्मल मान लें और अपनी अपनी राहें जुदा कर लें। माना कि ये जुदाई का फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तलब और सच्चाई से, इस रुसवाई से अनजान हो जाना है बेहतर है। तो चलो इस खूबसूरत वहम को यहीं छोड़ देते हैं, एक दूसरे की यादों को अलविदा कह देते हैं, इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं और बेहतर यही है कि हम दोनों फिर से भूल जाते हैं एक दूसरे को, अजनबी मत जाते हैं एक बार फिर अजनबी।

0: प्यार का
1: और ये इंतजार की हद खत नहीं होती, जरा सी आहट होती है तो लगता है कि तुम बहुत करीब हो, जमाने से बचकर तुम आ रही हो। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है, इसी में इश्क का शोला जवान होता है। बिछाए शौक के सजते वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। तो तुम आना, जरूर आना, 30 की हद निकालने आना, जख्म मेरे खंगालने आना, आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर मुझको टालने आना, मुझको गिरने दो पहले चलने से, शौक से फिर संभालने आना, मेरी आंखों में फैले सहरा से थोड़े आंसू निकालने आना, रंग चेहरे का उड़ गया है मेरे, रंग चाहत का डालने आना,

मैंने इज्जत बहुत कमा ली है, मेरी पगड़ी उछाल ले आना। खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक पे खाक डाल ले आना। तुम आओगे, तुम्हारा ही इंतजार है।

इतनी जद्दोजहद और इतना सफर तय कर लेने के बाद भी उम्मीद की डोर का आखिरी सिरा अक्सर नहीं मिलता। वही सिरा जो मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो गया है या कहीं बंधा हुआ है किसी मजबूरी के साथ। हर जद्दोजहद, हर रुकावट, हर परेशानी के बावजूद एक बात बिल्कुल उतनी ही सच्ची है जितनी कि जिंदगी और मौत, कि जीवन के यही संघर्ष इंसान को पारस कर देते हैं। और जब खुली आंखों से चीजें धुंधली नजर आए तो आंखें बंद करके देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ नहीं मिल जाता, बहुत कुछ ऐसा भी है जो छूट जाता है कहीं। कभी कभी होता है नजरों के बहुत करीब, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम जानबूझकर उन चीजों से अनजाने बनते हैं या आंखें बंद करनी पड़ती हैं हमें। कुछ बातें ना कही जाएं तो ज्यादा बेहतर, बिना कहे समझ ली जाएं तो और बेहतर। 11:29 हो चुके हैं। रजनीगंधा के इस हिस्से में

बहुत सारे ऐसे राज हैं जिन्हें दफन करने की कोशिश कर रहा है आपका दर्दमंद दोस्त। जी हाँ, अनवारुल हसन। और कौन?

जाए और इसीलिए हम भी तुम्हें अब भूल जाना चाहते हैं। तुम्हारे लफ्जों की वो बातें, वो अंदाज, वो ख्याल, सब कुछ, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ एक जख्म बन जाता है, हर सांस सताती है, और इसीलिए अब हम भी चाहते हैं कि भूल जाए तुम्हें। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत थे, ना ये कि हम सही थे, बस ये रास्ता अब शायद हमारे लिए नहीं है। कभी कभी फासले बनते हैं, कोई नई चीज बनती है, बस एक खामोश इरादा होता है कि अब शायद आगे ना बढ़ पाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो याद हैं तुम्हें, वो धरोहर की तरह रखना इस नाम को भी।

लगता तो है कि तुम लौट आओगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि लौटने के बाद भी क्या जिंदगी में वैसे ही वापस आओगे। बहुत सारे सवाल जब पैदा होते हैं तो यह भी लगता है कि बेहतर यही हो कि कुछ बातें बिल्कुल से भुला